0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपनी करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चले, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे।
1: नमस्कार, अपने के तहत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब खुशी की बात करते हैं तो खुशी का इंडेक्स भी बना लिया हमने। जी हाँ, हमने देखा कि हर रोज हमारी खुशी का जो लेवल है वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। तब इस पूरी श्रृंखला में हमने कोशिश की है कि ये बातें देखें जो हमारी जिस पर हमारी खुशी निर्भर कर रही थी।

0: हमने देखा सिचुएशंस थे, लोग थे, लेकिन एक बात जो सामने आई वो ये कि ना तो वो लोग या वो सिचुएशंस मुझे खुशी दे रही थी, ना चीजें मुझे खुशी दे पा रही थी, बल्कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है। और अगर आपको पिछली कड़ी याद हो, हमने बात की थी कि मेरा जो थॉट है, मेरा जो संकल्प है, मेरी जो सोच है, वही बहुत सारी चीजें तय करती है। हमने पूरा की पूरी साइकिल देखी थी, उसी साइकिल को थोड़ा और आज आगे बढ़ाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अगर मेरी जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो अगर अपनी मेरी ओन क्रिएशन है, तो वो कैसे संभव है कि मैं अपने उस इंडेक्स को स्टेबल रख पाऊं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछले कड़ी को देखते हैं तो थॉट जो था वो एक डेस्टिनी तक लेके जा रहा था। अगर हम इस पर पहले भी कई बार बात की है कि हमारे जो एक सोच है या हमारा संकल्प है वो हमारी डेस्टिनी तय करता है। कई पड़ाव हमने बीच में से गुजरे थे, उसमें से डेस्टिनी तक अभी समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे मेरा भाग्य तय कर सकता है। एक छोटा सा रिकैप हम चाहेंगे कि आपसे ले लें कि किस तरह से मेरी थॉट की जो पूरी प्रोसीजर है वो चल रहा होता है।
1: जबकि सिचुएशंस हमारे सामने आते या लोगों का व्यवहार हमारे सामने आता या हमारे जीवन में कहीं उतार चढ़ाव आता, तो हम उसका जिम्मेवार किसी न किसी और को ठहरा देते और फिर हम कहते मेरे भाग्य में ही ये है। जैसे ही मैंने ब्लेम किसी और पर रखा, सिचुएशन पर, व्यक्ति पर, अपने भाग्य पर या फिर परमात्मा पर, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। ये मेरे साथ हो रहा है लेकिन इसका जिम्मेवार कोई और है, जब वो कोई और ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। सो समवेयर वट एवर वॉज हैपनिंग इन माई लाइफ, गुड और बैड, इट वॉज समवन एल्स दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो जब हम उस थॉट के साथ जीवन जी रहे थे तो कहीं ना कहीं फिर मेरे कंट्रोल में तो मेरा जीवन नहीं है, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय सिचुएशंस एंड पीपल आउटसाइड। तो अगर मेरा जॉब बहुत अच्छा चल रहा है, प्रमोशन सब कुछ अच्छा, पैकेज अच्छा, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। घर पे सारा चीजें टाइम टू टाइम आ रही थी, फैमिली वॉज वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस वर फेवरेबल। जैसे ही सिचुएशंस में परिवर्तन आया तो मेरा वो इंडेक्स गिर गया। जैसे आज हम फाइनेंशियल इंडेक्स को भी देखें, वो डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन है। ग्लोबल लेवल पर अगर पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल कुछ भी ऊपर नीचे होता है, वो इंडेक्स चेंज होता है। तो सारा दिन चेक क्या किया जाता है कि सिचुएशन सिनारियो में क्या हो रहा है, बिकॉज वी नो कि इसका हमारे फाइनेंशियल इंडेक्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने खुशी के इंडेक्स पर भी उसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल दिया और हमने समझा ये तो ठीक है, ये तो नेचुरल ही है कि जब बाहर सिचुएशन फेवरेबल
0: तभी मैं खुश,
1: बाहर सिचुएशन ऊपर नीचे तो मैं अंदर डिस्टर्ब।
0: सिस्टर शिवानी, तभी तो ये सब कुछ हो रहा था जब मुझे पता ही नहीं था कुछ और बात, जब मैं एक ही तरीके से जीना सीख रहा था कि सिचुएशन ठीक है, लोग ठीक हैं या कोई भी चीजें मेरे पास हैं तो मुझे खुशी मिल रही है, तो मैं उन्हीं को तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी।
1: एब्सोल्युटली। तो एक है उनको कंट्रोल करना, उनका ध्यान रखना, और एक अपना ध्यान रखना। तो मैं रखना तो अपना ध्यान चाहती हूँ, मैं खुशी चाहती हूँ। आज आस्क एनीवन एंड दे वांट वन थिंग, यू टेल देम वन थिंग जो आपको चाहिए, दे विल नॉट से गाड़ी बंगला, दे विल से हैप्पीनेस। लेकिन वो हैप्पीनेस लाने के लिए इतनी सारी चीजें चाहिए। लेकिन हमने क्या सोचा कि मेरी हैप्पीनेस इन सारी चीजों पर डिपेंडेंट है, तो मैंने यहाँ ध्यान रखने की बजाय जहां वो क्रिएट होती है, मैंने वहां ध्यान रखना शुरू कर दिया जिनकी वजह से मैंने सोचा ये क्रिएट होती है। आप मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे तो मैं खुश होंगे, ये मैंने अपने अंदर प्रोग्रामिंग कर दी। तो मेरा सारा एम ऑब्जेक्टिव क्या होने लगा, आप किस तरह से मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे, तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ जिससे आप मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे। इट डजंट मीन कि मैं आपके लिए अच्छा नहीं करूं, बट उसके पीछे का इंटेंशन क्या था।
0: इंटेंशन
1: ये है मैं आपसे अच्छी तरह से बात करूंगी, भले मैं कंफर्टेबल हूं अंदर वो करने से नहीं, पर मुझे वो करना है जो आपको ठीक लगेगा, क्योंकि आपको ठीक लगेगा तो आप खुश होंगे, आप खुश होंगे तो मैं खुश होंगे। सो एवरीथिंग वॉज बींग डन फॉर हैप्पीनेस, विच वॉज ओके फॉर सम टाइम, इट सीम्ड टू बी गोइंग ओके। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशंस और लोगों में परिवर्तन की गति फास्ट होती गई, तो समवेयर आई थॉट के दिस इज गोइंग टू फास्ट।
0: हाँ, वो मेरे बस में नहीं रहने लग गया,
1: तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहने लग गया। एंड आई सॉ के माई इंडेक्स वॉज क्रैशिंग एवरी डे, पर मैंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे क्या करे, सिचुएशन ही ऐसी है तो खुशी तो कम होनी ही है। तब हमने स्वीकार कर लिया जीवन दर्द में जीना। आज मेजोरिटी, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, हमने अपने दर्द को, दर्द इन एनी फॉर्म, दर्द कुड बी चिंता, इट कुड बी फियर, इट कुड बी एंग्जाइटी, इट कुड बी स्ट्रेस, एंगर, व्हाटएवर, हम उसको स्वीकार करके उसको नेचुरल समझ के जीवन जीने लगे और हमने अपने आप को कहा ये नेचुरल है। क्यों? क्योंकि बाहर सिचुएशन ठीक नहीं है। तो फिर क्या होगा? क्योंकि मेरे मन की स्थिति इन सब पर डिपेंडेंट है, ये सब ठीक नहीं है तो ये ठीक कैसे हो सकता है? तो हमने उसको स्वीकार करके अपना जीवन व्यतीत करने तक, चाहिए थी खुशी, स्वीकार कर लिया दर्द को और फिर दर्द में ही जीवन जीने लगे और फिर सारा दिन अपने आप से कहते रहे खुशी चाहिए, खुशी चाहिए। जो चाहिए उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा ना।
0: इनफैक्ट यहाँ एक बात अगर हम देखें, सब लोगों का जो पूरा व्यवहार है, जो जो जो कुछ भी हो रहा है, जब उन्होंने ये सोचा या हमने ये सोचा हुआ था कि इन पर डिपेंड कर रही है मेरी खुशी, तो मैं उन पे काम कर रही थी। See, I kept on working, and I'm still working.
1: Which is absolutely fine. No, but who kept on working?
0: I.
1: But I in pain.
0: Because I was looking for happiness.
1: Yes. So once I am in pain and I keep on working, whatever work I do, uska net result
0: pain will be.
1: तो ये जब हमने स्पिरिचुअलिटी ने सिर्फ इतना ही फोकस शिफ्ट किया, स्पिरिचुअलिटी हमारी थिंकिंग के प्रोसेस को एक नई दिशा देती है, मेडिटेशन फिर उसको एम्पावर करता है कि उसको कैसे करना है। तो जब स्पिरिचुअलिटी हमें ये नॉलेज दिया कि थॉट आपकी क्रिएशन है, फिर थॉट से फीलिंग, फीलिंग से एटीट्यूड, ओके दैट इज आफ्टर दैट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, थॉट्स मेरी क्रिएशन है। बिफोर दिस तो आई वॉज नॉट इवन लिविंग इन दैट अवेयरनेस, आई थॉट आपकी वजह से थॉट क्रिएट हो रहा है, तो थॉट मेरी क्रिएशन है या थॉट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो आप पर डिपेंडेंट है। तो समवेयर माय थॉट्स वर नॉट इन माय कंट्रोल, माय थॉट्स वर इन द कंट्रोल ऑफ,
0: इनफैक्ट अभी भी अगर हम देखें, अगर हम केयरफुल नहीं रहते हैं तो कुछ भी होते ही वो थॉट क्रिएट हो जाता है।
1: तो हम ध्यान
0: अवेयर नहीं है,
1: क्योंकि हम अवेयर नहीं है उस चीज के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा माइंडसेट को चेंज किया, वेरी बिग माइंड सेट, कि आज दिन तक आई वॉज इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन एंड नाउ आई टेक द कंट्रोल इन माई हैंड। अब ये हुआ कि हाँ मुझे सब कुछ करना है, सिचुएशन आज फेवरेबल है, कल हो सकता है सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन माई स्टेट ऑफ माइंड इज स्टिल इन माई कंट्रोल। दिस वन थिंग जस्ट चेंजेस everything.
0: This actually feels very good. Again, I've come back to feeling. This thought creates very good feeling, you know, very strong feeling. But अभी भी हो नहीं पा रही है चीज़।
1: वो ऐसे, it's not magic, you know, जब आप एक mindset से सालों से चलते आ रहे हैं, this is the process which has to begin. हमें आज से ही सिर्फ एक ध्यान रखना है, situations आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, व्यवहार, सब कुछ करते करते करते जैसे सब चीज का ध्यान रख रहे हैं, सिर्फ साथ साथ ध्यान रखते जाएं कि यहाँ जो थॉट क्रिएट कर रहा है वो कौन क्रिएट। जस्ट ऑब्जर्व वन डे, जस्ट डोंट डू एनीथिंग, उसको चेंज भी नहीं करने की कोशिश करो, वो नेगेटिव है तो कोई बात नहीं नेगेटिव है, लेकिन पहली चीज तो ये अवेयरनेस चाहिए कि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्रिएट कौन कर रहा है। क्रिएट, आई एम क्रिएटिंग द थॉट, जस्ट नाउ my job is in, you know, at stake, yeah, my salary packages, yeah, my boss is shouting at me, everything is happening around me, lekin jo main thoughts create kar rahi hu, I just have to watch, ye fir bhi main hi create kar rahi
0: hu. Wohi main keh rahi hu ki jab feeling itni strong ho chuki hai, jaise suppose mere boss ne shout kiya mujhe, mujh pe shout kiya, bahut strongly shout kiya, matlab jo bhi sabke samne, the feeling of, you know, betrayal, feeling of being hurt, feeling of feel, you know, कि सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई, सब कुछ, वो जो वो फीलिंग है उससे वो थॉट क्रिएट होता गया।
1: नहीं नहीं नहीं, वो जो थॉट क्रिएट की कि सबके सामने उन्होंने मुझे इंसल्ट, सी द थॉट, सबके सामने मुझे इंसल्ट की, मैंने इतना सिंसियरली काम किया था फिर भी मुझे इस तरह से डांटा, दीज आर थॉट्स विच आई, अब सिनारियो, बॉस ने मुझे डांटा, सबके सामने डांटा, वन थॉट इज इतना सिंसियरली मैंने काम किया था, सबके सामने मुझे डांट दिया, यही बात तो अलग से भी की जा सकती थी, पहली बात मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी फिर भी इस तरह से, यहाँ तो मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है, कितनी भी मेहनत कर लो ना इन्होंने तो कभी खुश होना ही नहीं, दिस इज माई थॉट्स विच आर गेटिंग क्रिएटेड, आई एम क्रिएटिंग इट, बॉस अभी वही है, ही हैज डन व्हाट ही हैड टू डू, उन्होंने अपना रोल प्ले कर लिया, उस सीन को देखकर मैंने जो क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट की वो ये, और जैसे ये वाली थॉट क्रिएट की तो हाउ विल आई फील,
0: बट एक
1: ऑब्वियसली वेरी लो. जो आपने भी सारी बातें बोली ना, बिट्रेयल, ये दीज आर नॉट फीलिंग्स, दीज आर थॉट्स. ये थॉट क्रिएट, फीलिंग इज ओनली फीलिंग लो, वेरी डिप्रेस्ड, उमंग उत्साह नहीं है, या फीलिंग वेरी एनर्जाइज्ड. फीलिंग कैटेगोरिकल नहीं होती है. ये आपने कैटेगराइज किया था अभी, बिट्रे किया, इंसल्ट किया, मैं हर्ट हो गई, यू नो, ये फील, ये सारा कुछ थॉट्स है. वी काइंड ऑफ टेन टू मिक्स अप बिटवीन द टू ऑफ देम, कि ये थॉट है या फीलिंग है. थॉट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, और जिस तरह की, जिस क्वालिटी की आप थॉट क्रिएट करोगे, फिर यू विल ईदर फील गुड और यू विल फील बैड. फीलिंग्स आर नॉट स्ट्रक्चर्ड, थॉट्स आर स्ट्रक्चर्ड. फीलिंग्स में बहुत सारे ऐसे
0: fluid, actually, हाँ, feelings are
1: आपको ऐसे फीलिंग्स अलग अलग नहीं आएगी. ये इंसल्ट की फीलिंग है, ये बिट्रेयल की फीलिंग है, ये हर्ट, ना, इट्स ओनली फीलिंग लो और इट्स फीलिंग गुड. एंड दिस लो एंड हाई विल डिपेंड ऑन ये जो स्ट्रक्चर्ड थॉट्स आपने क्रिएट किया. अब उसी सिनारियो में आप कोई और क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट करो, कि मैंने जो किया, फर्स्ट आई चेक माई वर्क कि वो सिंसियर था या नहीं. हो सकता है उन्होंने ठीक से नहीं परसीव किया, या हो सकता है उनका मूड ठीक नहीं है. जब उनका मूड ठीक हो सके, हो जाएगा, मैं जाकर बात कर लूंगी. हाँ, उन्होंने सबके सामने मेरे को डांट दिया, लेकिन अब मैं कैसे स्टेबल रहूं. सी, वन थिंग व्हाट हैपेंस इज, उन्होंने डांट दिया, देन आई फील लो, उसके बाद मैं उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती हूँ. एंड जस्ट वो जो पूरे चार लोग साथ में बैठे होंगे, उनके सामने अपना इमेज वो करने के लिए मैं उनके बारे में जाकर उन सारे लोगों, तो एक्चुअली इंसल्ट वो नहीं करते हैं मेरी. जब एक सिनारियो में आप आपको देखो कि किसी ने मुझे डांटा, मेरी कोई इंसल्ट नहीं होती है उस समय. आई थिंक कि मेरी बहुत इंसल्ट हो गई है उस समय. जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो देख रहे हैं उस सीन को, उनको भी पता है हु इज द वन हु इज इन कंट्रोल एंड हु इज द वन हु हैज गॉन आउट ऑफ कंट्रोल. तो वो किसके बारे में क्या इमेज क्रिएट करते हैं, वो उनकी अपनी परसेप्शन पे डिपेंड होगा. आई फील इंसल्टेड माई सेल्फ, आई फील लो कि मुझे वॉट दे फील, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. मैं सोचती हूँ कि सबके सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. सब लोग मेरे बारे में वही सोचेंगे जो पहले मैं अपने बारे में सोचूंगी. और अगर मैं स्टेबल रही, माई फेस डजेंट शो एनी डिस्टर्बेंस, आई डोंट क्रिटिसाइज हिम, माई बॉडी लैंग्वेज इज एब्सोल्यूटली स्मूथ, यू विल सी एवरी वन देयर इज स्मूथ. लेकिन मैं ऊपर नीचे हो गई, डिस्टर्ब हो गई, मैं उनके बारे में गलत बोलने लगी, फिर वो मेरे बारे में अब सोचेंगे. तो ये मेरी जो सोच बहुत फास्ट चलती है उस टाइम जब ये सिनारियो क्रिएट होता है, उन्होंने डांटा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है टोटली, लेकिन अब क्या क्या होना है उसके बाद, वो सारा किसके कंट्रोल में है? वो सारा मेरे कंट्रोल में.
0: फीलिंग लाइक आपने बोला कि क्रिएट थॉट्स, जब उन्होंने डांटा, ठीक है, तो उसमें लो फील नहीं करके आप ये कह रहे हैं कि अगर स्टेबल रह पाते हैं तो बाकी लोग जो, क्योंकि मेरे लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग क्या सोचेंगे, यू नो,
1: पूरे मेरे लिए एक्चुअली ज्यादा पहले ये होना चाहिए मैं क्या सोचूंगी. लोग क्या सोचेंगे इज रियली सेकेंडरी. एक्चुअली आज हम बहुत सारी चीजें इसलिए करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, एंड वी कुड प्रॉब्ली मेस अप विद आवर लाइफ
0: बिकॉज ऑफ वी बीन डूइंग दैट,
1: कि लोग क्या सोचेंगे. कई बार कोई दो लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो कहेंगे गुस्सा तो करना ही है, अगर चुप रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे. लोग सोचेंगे ये तो बिल्कुल, इसके अंदर तो कोई ताकत ही नहीं है, इसको तो, लोग क्या सोचेंगे इज नॉट इम्पोर्टेंट. मैं किस चीज से गुजरता हूँ वो मेरी सोच पर डिपेंड करता है. अगर इफ आई एम फीलिंग लो टूडे, आप मेरे बारे में कितना भी अच्छा सोचो, कैन यू मेक मी फील गुड? नो, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ. हमारे बहुत सारे बिहेवियर्स इस बात पर डिपेंडेंट है लोग क्या सोचेंगे. लोग क्या सोचेंगे, आई डोंट नो हाउ मच दैट मैटर्स. मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ,
0: लोग एक्चुअली वही सोचने लगेंगे.
1: एक्चुअली इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि आप जो सोचेंगे आप वो एनर्जी क्रिएट करेंगे. जो एनर्जी आप क्रिएट करेंगे वो आपके एनवायरमेंट में फैल जाएगी, एंड वो एनर्जी दूसरे की सोच को क्रिएट करेगी. पहले मैं तो अपने बारे में अच्छा सोचूं ना. आप मेरे बारे में अच्छा सोचे या नहीं सोचे, How does that matter? That doesn't build my self-esteem. लेकिन मेरे लिए क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि मेरी खुशी लोगों की सोच पर डिपेंडेंट है. That is what I thought. कि अगर आप मेरे बारे में अच्छा सोचोगे तो फिर आप मेरे से अच्छा बात करोगे, तो मुझे खुशी होगी। तो मैंने ज्यादा ये सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। जब मुझे ये समझ में आया कि मैं क्या सोचूंगी उस पर मेरी खुशी डिपेंडेंट है, तो सारा फोकस किस पर चला जाएगा कि मैं क्या सोच रही हूँ, डेस्टिनी कैसे क्रिएट हो रही है। बॉस ने मुझे डांटा, ठीक है, डांटा इसलिए क्योंकि कोई गलती हो गई है। अब मेरी थॉट्स कैसी वाली चलनी शुरू होती है, कितनी भी मेहनत करो ये तो डांट देते हैं, मैं आगे से कुछ नया नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि नया भी करो तो भी यहाँ से तो कोई क्रेडिट मिलता ही नहीं है, इन्होंने तो फिर भी डांटना, माइट एज वेल मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, बिना बात के इतनी मेहनत करूं, फिर लोगों के सामने कुछ मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं है ना। दिस इज द क्वालिटी ऑफ थॉट। अब गए अपने डेस्क पे और काम करने बैठे, कैसा काम होगा,
0: फीलिंग इतनी लो हो चुकी है। यू नो, हम ये बात कर रहे थे ना कि हमारी जो थॉट है,
1: नाउ व्हाट विल बी माय डेस्टिनी, बिकॉज नाउ विद दैट लो क्वालिटी ऑफ थॉट एंड दैट लो फीलिंग, आई एम सिटिंग एंड वर्किंग ऑन माय कंप्यूटर और ऑन माय फाइल और व्हाट एवर विद दीज थॉट्स, कि यहाँ तो ऐसा ही होता है, ये तो कुछ भी करो और काम कर रहे हैं, वो काम कैसा होगा, वो एनर्जी कैसी होगी जो रहे। अब जरूर गलती निकलेगी, पहले नहीं भी थी तो, क्योंकि इतनी लो स्टेट में अगर काम करेंगे तो वो वर्क एफिशिएंसी पे तो मेरा इफेक्ट पड़ने ही वाला है।
0: वही कहा जाता है कि जब डांट पिट रही हो तो हाथ हिलने लगते हैं ना। नहीं,
1: अब वो लो एफिशिएंसी में मैंने काम किया तो पहले वाले काम में गलती नहीं भी होगी ना, तो इस वाले काम में तो गलती जरूर निकल आएगी। अब मैं हर्ट फील हुई हूँ, अब मैं वो काम लेकर फिर से बॉस के पास जाती हूँ। व्हेन आई एम हर्ट कैन आई लाइक द बॉस, आई हेट द बॉस फॉर व्हाट द बॉस हैज डन। तो जैसे ही मैं बॉस के सामने गई, मेरी वाइब्रेशंस कैसी गई, आई डोंट लाइक यू, ये एनर्जी आई ट्रांसमिट। काम भी मैंने वो सबमिट किया, उस काम में भी हो सकता है अब तो डांट जरूर पड़नी पड़ेगी,
0: लेकिन मेरे मन में ये आएगा कि नाउ ही इज गोइंग टू डू इट अगेन।
1: यस, सो आई क्रिएट द थॉट व्हिच दिस क्रिएट्स फॉर मी। द सेम थिंग व्हाट आई कुड डू इज कि डांट पड़ी है, whatever reason जिसके लिए उन्होंने डांटा, I have to still go back to my work. It may not be very easy that time, क्योंकि जब डांट पड़ती है तो I have got into the habit of वो dejected thoughts को feel करना। If I can, it's not ego, but if I can go back to my desk and say, okay, let me get back to the work all over again. पहले अगर गलती हुई थी तब तो और भी important कि I go back with focus. And अगर गलती नहीं थी फिर भी डांटा गया था, आई स्टिल गो बैक, चलो मैं फिर से इनको यही करके देता हूँ, लेट्स सी अब इस बार वो ठीक लगता है कि नहीं। बट आई हैव टू पुट अ फुल स्टॉप टू दोज नेगेटिव थॉट्स उस टाइम, और फिर उस स्टेबिलिटी से अगर मैं काम करूँ, अगर मैं हर्ट नहीं हूँ तो मैं वो सीनियर के प्रति भी बहुत गलत क्वालिटी के थॉट्स नहीं क्रिएट करूंगी। आई कैन से आई कैन अंडरस्टैंड ये उनके अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं या अपना आज वो डिस्टर्ब्ड होंगे या जो भी, आई कैन जस्ट वेव इट ऑफ। तो जो हम कहते हैं कि औरों के प्रति गुड विशेस रखना, तो वो औरों के प्रति गुड विशेस कब रख सकेंगे, जब हमारा माइंड डिस्टर्ब्ड नहीं है।
0: अपनी स्टेबिलिटी तो फिर भी रख पाऊं कि ठीक है उनकी कोई वजह होगी कि मैंने किया, लेकिन उनके प्रति शुभ भावनाएं,
1: शुभ भावना क्रिएट नहीं करनी होती है। यू डोंट हैव टू से सिट एंड से उनके साथ बहुत अच्छा हो जाए, दिस इज नॉट शुभ भावना। शुभ भावना सिर्फ ये है कि आप स्टेबल हैं, एटलीस्ट आपसे कोई नेगेटिव क्वालिटी ऑफ थॉट दूसरे के प्रति नहीं जा रही है, दैट इटसेल्फ इज मोर देन इनफ। जैसे कि परिस्थिति आई और परिस्थिति गई और परिस्थिति ने मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, दैट विल बी स्टेबिलिटी ना। मौसम बदला फिर बदला, लेकिन मैं उस मौसम को क्रॉस कर सकी, दैट इज स्टेबल, कि वो बदला लेकिन आई वॉज स्ट्रांग इनफ चेंज करने की। इसी तरह वो बदले, उनका व्यवहार बदला, लेकिन उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा। इट इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, आई कैन ट्राई इट आउट,
0: कि मैं उनके साथ उसी एनर्जी के साथ दोबारा बात करूं।
1: इट्स ओनली वन थॉट अवे, इट्स जितना ये हमें मुश्किल लग रहा है करना, एक्चुअली ये एक थॉट अवे है। अगर हम उनसे ठीक से बात नहीं करना चाहें, हम सालों साल नहीं कर सकते हैं, वो भी ठीक है, क्यों मैं बात करूं। बात करना डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन है मैं क्यों बात करूं आपसे, जब आपने मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं की तो मैं आपसे क्यों अच्छी, दैट इज द क्वेश्चन।
0: दैट्स व्हाट आई से ना, व्हेन वी से आई रिमेन अनअफेक्टेड, इज इट आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड,
1: दैट इज नॉट अनअफेक्टेड, दैट इज डीप हर्ट, दैट इज डीप हर्ट, दैट इज नॉट अनअफेक्टेड। जो आप कह रहे हैं कि कैन आई, मेनी पीपल हैव ट्राइड दिस, कि कैन आई गो बैक एंड टॉक टू दैट पर्सन नॉर्मली, इट इज वेरी वेरी वेरी इजी. कितने दिन के बाद करना है?
0: वेरी इजी यू सेड.
1: यस, वेरी इजी. आई
0: वाज गोइंग टू से वेरी डिफिकल्ट.
1: बात करना बहुत इजी है. वो जो पीरियड बीच में है, जब तक के लिए आप अपने आप को कन्विंस कर सको कि इट इज ओके, आई कैन गो बैक. सी, इफ यू हैव सेड समथिंग टू मी जिससे आई एम लाइक टोटली वेरी वेरी लो, एंड आई कैन कीप सेइंग टू माई सेल्फ, इनसे तो अब मैं फिर से कभी बात नहीं करूंगी, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो आई गिव दोज थॉट्स टू माई सेल्फ. इट्स नॉट कि मैं इनसे बात कर नहीं सकती, इट्स जस्ट दैट मैं नहीं करूंगी.
0: आई डोंट फील लाइक,
1: यस, मैं नहीं करूंगी क्योंकि इन्होंने इतना गलत किया कि मैं नहीं करूंगी. तो करना मुश्किल नहीं है, लेकिन डिसीशन लेना कि मुझे करना है या नहीं. तो नॉर्मली क्या होता है, हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें नहीं करना. मैं बॉस से बात नहीं करूंगी, मैं हस्बैंड से बात नहीं करूंगी, मैं बच्चों से भी ठीक से बात नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गलत किया. विच इज ओके, दे आर ओके विद देयर नॉर्मल लाइफ. मैं जितनी देर नहीं करती, तो इट इज दैट क्वालिटी ऑफ थॉट जो मेरे अंदर फिर चलती जाती है. जिस दिन आपने डिसीशन लिया, हमारे पास एक भाई आया, उसने कहा मैंने कई सालों से अपनी मदर से बात नहीं की है. क्यों नहीं की? क्योंकि वो मदर ने पता नहीं मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसे ऊपर नीचे कर दिया. आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन, माई मदर इज इन अ लॉट ऑफ पेन, ही सेड, माई वाइफ इज इन अ लॉट ऑफ पेन. आई सेड, आज प्रोग्राम के बाद वाई डोंट यू ट्राई, आप जाके अपनी मदर से बात कर लो. ही सेइंग नो, आउट ऑफ द क्वेश्चन, मैं नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा गलत मेरे साथ किया. ऐसे दो ही तो चॉइस है, या तो फिर इसी तरह हम दर्द में चलते रहे, या फिर आप जाओ, आप बात कर लो. एंड ही वेंट आफ्टर द प्रोग्राम एंड ही स्पोक टू हिज मदर. हाउ डिफिकल्ट कुड दैट हैव बीन? हाउ डिफिकल्ट?
0: लेकिन अगेन आई विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड, यू नो.
1: सी दैट अगेन,
0: दैट्स अ फियर
1: कि आप मुझे फिर से,
0: मैं अपने आप को ओपन कर रहा हूँ, वल्नरेबल कर रहा हूँ एक बार फिर.
1: दैट इज द प्रॉब्लम, कि जब हम इस तरह से कोई स्टेप लेते हैं, हम सोचते हैं हम वल्नरेबल हो रहे हैं. एक्चुअली ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है. किसी ने मेरे साथ कुछ किया ऊपर नीचे, और मैं फिर भी उनके साथ स्टेबिलिटी से बात कर सकूं, ये स्ट्रेंथ है या वीकनेस है?
0: दिस इज माई स्ट्रेंथ,
1: दैट्स ऑल. What the nobody can exploit strength. My strength and my weaknesses are my property. आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं. हमें ये लगता है कि हमें exploit किया जाएगा, कोई हमें exploit नहीं कर सकता. If my life, my state of mind is in my control, मैं अगर जाकर बात करती हूँ उस senior से या जिसे से भी, तो वो अगर मुझे अच्छा लगता है, that's just more than enough. That's more than enough. उसका गलत क्या हो सकता है रिजल्ट? आज दिन तक मैं दर्द में चल रही थी. अगेन डिफरेंट डेस्टिनी नो. सी दिस ब्रदर, इतने साल से अपनी मदर से बात नहीं की, या इतने टाइम से आप अपने बॉस के अगेंस्ट होकर रोज वही ऑफिस में जा रहे हैं, उधर ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति इस तरह की थॉट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके जीवन की क्वालिटी क्या है? और फिर इतना दर्द जो अपने अंदर भरा, इतनी बिटरनेस उस सीनियर के प्रति, वो सिर्फ उधर तक तो नहीं रहेगी, घर जाएंगे, वाइफ पर निकलेगा, वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकलेगा. आप अपनी जीवन की क्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं. इट इज ओनली स्टार्टिंग विद योर थॉट्स. आज आप जाएं, वाइप आउट करें अगर अपने आप को, और कहें आई एम जस्ट गोइंग टू बी नॉर्मल, इनको जैसे बात करना है इनको बात करने दो, तो आप फॉरगिव किसको कर रहे हैं? अपने आप को दर्द से आप मुक्त कर रहे हैं. उनको नहीं कर सकते, उन्होंने गुस्सा करना है तो गुस्सा करना है, लेकिन अगर मैंने ये अपने आप को कह दिया कि मैंने फिर भी नॉर्मल रहना, तो किसको बचाया?
0: अपने आप को.
1: अपने आप को बचाया, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन से बचाया, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से बचाया. जब घर जाओगे आज शाम को तो कैसे होगे? जस्ट बिकॉज यू डिसाइडेड टुडे कि आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट एनीबडी, आई एम गोइंग टू बी नॉर्मल. लेकिन फिर वो और डांटेंगे, डांटने दो ना, फिर और डांटेंगे तो क्या होगा? हम सोचते हैं हम नाराजगी शो करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, और अगर हम ठीक से बात करेंगे तो उनका तो व्यवहार, तो हम सारा दिन क्या कर रहे हैं? मैं नाराजगी शो करूंगी ताकि आप चेंज हो जाओ. लेट्स स्टॉप ट्राइंग टू चेंज.
0: यस, पीपल डोंट चेंज
1: पीपल, एंड पीपल विल चेंज अकॉर्डिंग टू देयर ओन जर्नी. इसी में ये बात आई कि अपने ऊपर ध्यान रखना. इसलिए हमने कहा अपने ऊपर ध्यान रखना. डेस्टिनी डजंट नेसेसरीली मीन जॉब एंड मैरिज एंड प्रॉप. डेस्टिनी मीन्स हाउ आई फील द होल डे इज माई डेस्टिनी. वेदर आई एम हैप्पी और वेदर आई एम सफरिंग, दिस इज माई डेस्टिनी द होल डे.
0: शिवानी, आज जो हमने बातचीत की है, हम चाहेंगे कि कुछ क्षण बैठकर उस पर रिफ्लेक्ट करें, ताकि वो जो डिसीजन हमने लेना है जिस भी डायरेक्शन में जाने का, उसकी स्ट्रेंथ हमें मिल पाए.
1: श्योर. आई थिंक हर मॉर्निंग जैसे हम तैयार होते घर से बाहर जाने के लिए, तो जैसे कि हम शरीर की तैयारी करते, गाड़ी की तैयारी करते, सब चीजों की तैयारी करते, इस तरह से मन को तैयार

0: करके निकले आज के दिन के लिए। और अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते और इसको अगर सभी लोग हर रोज करें, 2 मिनट 3 मिनट भी निकाल कर अपने मन की तैयारी करें, रेडी फॉर द डे, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। लेट्स जस्ट सिट बैक कंफर्टेबली एंड अपने थॉट्स को देखने का प्रयास करें। मैं वो शक्ति जो सारा दिन घर का, ऑफिस का, लोगों का ध्यान रखती हूँ, मैं वो शक्ति जो इतने सारे कार्य करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल हो, मेरी क्वालिटी क्या है, अपने आप को याद दिलाएं, आई एम दैट पावरफुल बीइंग, मास्टर ऑफ द सिचुएशन, मास्टर ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड। मेरे आसपास चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कैसा भी व्यवहार करे, मेरी सोच फिर भी मेरी क्रिएशन है। टुडे एज आई सेट आउट फॉर द डे, लेट मी जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ, आई एम दैट पावरफुल बींग, क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स। सिचुएशन इरिस्पेक्टिव, I will still create powerful, positive thoughts. Mera har sankalp shaktishali, shuddh aur positive hoga. Om Shanti.
1: Om Shanti. And thank you so much, Sister Shivani. Ab aapse se bhi vida lena chahenge, lekin yahi kahenge ki happiness index ki jo baat karte hain, to wo hamare apne hi haath mein hai. फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट, देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अमचह रेडियो पुणेरी। अहो ऐकलत का हो आमचा रेडियो पुणेरी, हो आमचा रेडियो पुणेरी।
1: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक, पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी। जिंदगी में हमने बहुत कुछ पाया, कई रास्तों से हम गुजरे हैं और इस पूरे सफर में हमने हंसते खेलते बहुत कुछ देख भी लिया, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अंदर एक खालीपन है, एक एम्प्टीनेस है, कुछ कमी रह गई है। और उसी कमी को तलाशने की कोशिश हमारी श्रृंखला में है कि वो खालीपन क्या है, क्या हमारी लो सेल्फ एस्टीम है, कहीं लगता है कि हम कम रह गए हैं। यही सारी बातें हैं जिन्हें आज हम तलाशेंगे अपनी इस कड़ी में। और इसमें बातचीत के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति सिस्टर शिवानी। बहुत कुछ हम बातें कर चुके हैं, ईगो को भी पहचान लिया था, सेल्फ अवेयरनेस की भी बात हमने कर ली थी, लेकिन अगर हम देखें तो कई बार लगता है कि कुछ नहीं है, खाली है, हम बहुत कहीं कुछ नजर नहीं आता है, लो सेल्फ एस्टीम होती है, लगता है कि मुझ में ही शायद अच्छा नहीं है। क्यों होता है ऐसा सब
1: एक
0: कुछ?
1: एम्प्टीनेस सा भी आ जाता है, जिसको हॉलोनेस कहते हैं, कि बहुत खालीपन है। बाहर रीति से देखा जाए तो सब कुछ है, एक अच्छा परिवार, एक अच्छी जॉब, सैलरी, शरीर ठीक ठाक है, सब कुछ होते हुए भी वो जो इनर कंटेंटमेंट कहें या भरपूरता कहें, उसकी शायद कभी कभी कमी महसूस होती
0: उसे
1: है।
0: कई बार एक्चुअली, क्योंकि ये कई एक पूरा जो सफर है ये एक एज तक हमें कवर करते हैं, उसके बाद जब हम पहुंचते हैं इस पे कि एम्प्टीनेस का एहसास हो, तो उसे हम मिड लाइफ क्राइसिस भी कह देते हैं, बहुत बार ये नाम दिया जाता है, कई सारी और बातें की
1: वो
0: जाती हैं।
1: इसलिए एक्चुअली ये नहीं है कि उस टाइम पे जाकर वो हुआ, लेकिन उस टाइम पर रुके उसको देखने के लिए।
0: हाँ
1: अभी तक बहुत फास्ट थे, हमने रुक कर, एम्प्टीनेस था लेकिन एम्प्टी को भी चला रहे थे। जैसे शरीर थोड़ा बीमार होता है तो चला रहे होते हैं उसको, फिर भी चला रहे, लेकिन कहीं जाके फिर वो थोड़ा सा रुकने लगता है, काम नहीं कर पाता, तब जाके लगता है नाउ आई नीड समथिंग, नाउ आई नीड टू स्टॉप एंड चेक एंड सी वट आई कैन डू फॉर माई सेल्फ। तो इसलिए वो 35-40 के बाद जाकर कहीं टाइम मिलता है रुक करके चेक करने के लिए। बट देन इट्स रियली नथिंग टू डू विद एज।
0: इट्स
1: एज
0: अ प्रोसेस,
1: कोई,
0: होल प्रोसेस।
1: हाँ, कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। और एक होता है ना, धीरे धीरे धीरे वो बिल्डअप होता गया, तो जब एक वो लेवल पर पहुंच जाता है तब जाके भी एक रियलाइजेशन होती है। बचपन में पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो वो सेल्फ एस्टीम को डेवलप करते हैं।
0: एक्चुअली वो जो खालीपन की हम बात करते हैं, उसे भरने के लिए हम कई तरीके करते रहते हैं, भागते रहते हैं, कभी हम फिल्म देखने चले जाएंगे, कई हम कभी हम शॉपिंग, अगर वुमेन की बात करते हैं तो वो शॉपिंग पे चले जाएंगे, लेकिन समवेयर डीप वो जो खालीपन था, एक वक्त ऐसा आता है कि कोई भी चीज मायने नहीं रखती, तब फिर
1: बिल्कुल।
0: तलाश शुरू होती है।
1: सेल्फ एस्टीम अगर हम देखें तो सेल्फ एस्टीम आखिर क्या है, बिकॉज इट्स अ वर्ड विच इज कैचिंग ऑन, यू नो, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। आपके पास बहुत सारी आज किताबें हैं इस टाइटल को लेके, सेल्फ एस्टीम, लेकिन सही मायने में, और उसकी एक बहुत हाई डेफिनेशंस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसकी एक्सप्लेनेशंस, लेकिन बहुत सिंपल रूप में अगर हम उसको एकदम सिंप्लीफाइड रूप में लें तो सेल्फ एस्टीम क्या है? इट्स सिंपली पुट हाउ आई एम फीलिंग अबाउट माई सेल्फ एट एनी पर्टिकुलर टाइम।
0: इस वक्त मैं अपने बारे में क्या महसूस
1: क्या
0: कर रही
1: महसूस कर रहे हो, दैट सेल्फ एस्टीम, और कुछ भी नहीं है। अपने बारे में मैं क्या फील करती हूँ, डू आई द फील गुड फैक्टर,
0: एक्चुअली मैं
1: द
0: कितनी
1: फील
0: बार
1: गुड
0: ऐसे होते हैं बैठे
1: फैक्टर
0: बैठे आप लो फील करने लगते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी ये कहते हैं कि आई एम फीलिंग वेरी लो। तो मतलब कोई वजह नहीं है कि वो लो
1: बिल्कुल
0: फील क्यों हो रहा है,
1: बिल्कुल।
0: तो बट इट्स अ प्रोसेस एक्चुअली।
1: इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आज हम लो ही फील कर रहे हैं, और जितना लो फील कर रहे हैं उतना उसको बाहर से फिर कुछ ना कुछ करके, मतलब हम अंदर भरने की जगह उसको बाहर फिर एक प्रोजेक्शन के रूप में
0: और
1: दिखाते हैं।
0: सबसे बड़ी बात जो छोटे बच्चों में जो आ रही है, बच्चों इन द सेंस की टीनेजर्स की अगर हम बात करते हैं, इनफैक्ट हमारे पास एक मेल है, इसको पहले हम ले लेते हैं कि ये हमें आया है नागपुर से, और ये एक मदर हैं जो कहना चाह रही हैं कि उनकी बेटी 14 साल की है, शी इज बिकॉज वो प्यूबर्टी में है, उनको शी इज प्लम्प, और वो इतनी लो सेल्फ एस्टीम उसकी हो गई है कि वो ना बाहर निकलना चाहती है, वो अच्छी खेलती, ये लिख रही है कि वो अच्छी भली थी, खेलती थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ग्रेजुअली क्योंकि उसने वेट इतना पुट ऑन कर लिया है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया है, तो वो अब ना बाहर जाती है, ना किसी पार्टी में जाती है, ना किसी फैमिली फंक्शन में जाती है, किसी में पार्टिसिपेट ही नहीं करती, चुप हो गई है। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा इतनी बात करने के बावजूद भी कि वो कैसे निकलेगी। इट्स अगेन
1: अ
0: लाइक
1: वेरी
0: सो,
1: कॉमन थिंग।
0: हाँ, लो सेल्फ एस्टीम और
1: सही
0: कहीं ना
1: बात
0: कहीं
1: है।
0: पीयर प्रेशर।

0: प्रेशर पड़ता है चारों तरफ.
1: बिकॉज एक बहुत बड़ा कारण जो हमारे ये लो फीलिंग का है, इस तरह से खालीपन का है, क्योंकि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं इसको हमने बहुत ज्यादा इस चीज पर डिपेंड कर दिया है कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं. हाउ आई फील अबाउट माई सेल्फ टूडे इज बेस्ड अ लॉट ऑन हाउ आई लुक. माई लुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूडे इन जनरल.
0: लेकिन वो तो जनरली है, मतलब जनरली जो सब लोग हैं वो यही सोच रहे हैं कि मैं कैसी दिख रही हूँ. इनफैक्ट आज के दौर में अगर हम देखें तो एज नो बार हो गया है. यू नो लाइक पहले ये होता था कि चलिए 40-45 तक आते आते लोग जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है अब तो हम मोटे भी हो जाएंगे या ठीक है हम बूढ़े लगने लगते हैं.
1: अब तो लेकिन वो भी नहीं है.
0: अब तो दे हैव बिकम सो कॉन्शियस, मतलब हेल्थ को लेके हेल्थ क्लब्स चल रहे हैं, वेट लॉस का पूरा, ब्यूटी कॉस्मेटिक सर्जरी, इतना कुछ हो गया है. अब तो और ज्यादा अवेयरनेस हो गई.
1: तो हेल्थ कॉन्शियस इज ओके, दैट्स वन पार्ट, क्योंकि वो आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है. लेकिन जहां तक एक मतलब नीट एंड क्लीन दिखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. नॉट बिकॉज हाउ आई लुक बट हाउ आई फील. आई शुड बी नीट क्लीन एंड टाइडी बट हाउ आई फील, मैं अपने बारे में कैसा महसूस करती हूँ, कैन नॉट बी बेस्ड ऑन हाउ आई लुक. क्योंकि लुक्स जो है, आज शरीर कैसा है दिखने में, वो एक टेम्पररी चीज है ना. आज अभी है, कल नहीं. अभी बिल्कुल ठीक है, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, पांव कट गया, तो क्या करेंगे? आई विल बी एब्सोल्युटली शैटर्ड, क्योंकि इट वॉज बेस्ड ऑन हाउ आई लुक. आज ठीक है, 40-45 के बाद क्या? इट विल बी बेस्ड ऑन हाउ आई लुक. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी ब्यूटिफुल एंड विच इज गुड. यू नो, किसी से भी आप पूछिए आप इतना सब क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं अपने आप को, आई वॉन्ट टू लुक ब्यूटिफुल. लेकिन जब वो आए समझ में आ जाएगा, तो वो लुक ब्यूटिफुल, सुंदर लगने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, शरीर को क्या से क्या बनाने की कोशिश कर देते हैं. कई बार तो असली चेहरा बिल्कुल छुप जाता है उसके पीछे. आज मतलब शरीर के एक एक अंग की हम सर्जरी करवा सकते हैं सो दैट इट इज परफेक्ट. वी वॉन्ट टू लुक ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट. ये एक मतलब एक हमने एक मान्यता, एक बिलीफ बना लिया है कि व्हेन आई एम ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट आई विल फील गुड. बट देन व्हेन आई अंडरस्टैंड द आई के हु एम आई, इज दैट आई ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट. अभी जो हम कर रहे हैं वो हम अपने शरीर को ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट बना रहे हैं,
0: क्योंकि अभी तक हम ये मान रहे थे कि आई इज दिस बॉडी,
1: दिस बॉडी. बट नाउ इट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि नहीं कि ये शरीर ब्यूटिफुल और परफेक्ट, बट इट इज आई, मैं जो हूँ मैं ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट हूँ कि नहीं.
0: पर सोल तो इज लाइक वी ऑलवेज से इज ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट.
1: सो नाउ वी नो दैट इट्स ऑलवेज ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट. सो तो जब ये समझ में आ गया, जैसे आपने कहा कि लेकिन मैं तो हूँ ऐसी, अभी राइट नाउ इट्स अ रियलाइजेशन कि मैं तो ऑलरेडी ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट हूँ, तो फिर इतनी मेहनत किस लिए, क्या करना है? नाउ इट्स इम्पोर्टेंट आई अंडरस्टैंड कि आई एम ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट, आई द सोल एम ब्यूटिफुल एम परफेक्ट. तो फिर ये सारी मेहनत किस लिए हो रही है कि नाक को इधर से इधर करना?
0: अच्छा, ये हम ब्यूटी की बात के साथ साथ एक और आई वुड लाइक टू टेक अ मेल एक्चुअली जो एक मदर का है. एंड अगेन मदर्स एक्चुअली,
1: बट फॉर दैट गर्ल आल्सो जिसका हमारे पास वो आया, इट्स इन हर केस शी हैज विथड्रॉन हरसेल्फ फ्रॉम पीपल, इट्स बिकॉज शी फील्स के आई एम नॉट लुकिंग गुड. तो वो उन्हें अपने आप को रियलाइज करना पड़ेगा कि ठीक है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से शी नीड्स टू वर्क ऑन हर बॉडी, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट नॉट कि वो दिखने में कैसे, लेकिन वो एक किस तरह की एक कॉन्शियस जो एनर्जी है उसकी क्वालिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. शी कैन बी नाइस, शी कैन बी हैप्पी, शी कैन बी यू नो लवली विद पीपल, शी कैन गिव लव एंड पीस टू एवरीबडी. तो इट्स नॉट अबाउट फैट और थिन.
0: Here I want to ask you something, SSH Shivani, कि देखा ये गया है कि जो apparently खूबसूरत नहीं है, जो गोरा नहीं है, खासकर अगर हम भारत में देखते हैं, या जो यू नो स्मार्ट नहीं है,
1: पतला नहीं है,
0: पतला नहीं है,
1: हमने ये जो बिलीफ बना दिया
0: है, उन्हें ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, ज्यादा अच्छा बन के रहना है. आपने भी तो यही कहा अभी कि आप लोगों के साथ अच्छे रहिए, आप लोगों के साथ ठीक व्यवहार कीजिए, आप अपने अंदर कोई और टैलेंट, इसका मतलब कोई और इन द सेंस, क्योंकि पीयर प्रेशर या पूरा समाज में ये एक्सेप्टेड है कि अगर आप खूबसूरत हैं, अगर आप पतली हैं, अगर आप यू नो स्मार्ट हैं, तो ये तो आपका एक प्लस पॉइंट है.
1: नहीं, लेकिन ये हम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं. आप ये पहचानिए कि आपकी जो विशेषता है वो आंतरिक है, वो इंटरनल है, वो आपकी क्वालिटी है, वो आपकी वर्च्यू है.

0: कितना ज्यादा मायने रखता है उसके बाद. अब ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है
1: कि
0: वो है कैसा, वो बोलता कैसे, प्यार से बोलता है मेरे साथ, वो व्यवहार में वो मधुरता है. अब मैं क्या करूं वो सुंदर शरीर को, दैट वॉज जस्ट अ फर्स्ट अट्रैक्शन. लेकिन एक रिलेशनशिप या किसी का आपको स्वीकार करना, आपको रिस्पेक्ट देना, वो बहुत ज्यादा बाह्य लुक्स पर नहीं हो सकता है. इनफैक्ट इस चीज को हम बना लेते हैं बिलीफ, तो हम ये सोचते हैं कि दूसरे हमारी तरफ उसी चीज के लिए आएंगे, बट इट्स नॉट ट्रू एट ऑल. इफ यू हैव दैट ब्यूटी इनसाइड, द होल वर्ल्ड इज विद यू. डिफरेंट एस्पेक्ट, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि वो एक एनर्जी है और एनर्जी ही एनर्जी को आकर्षित करती है, क्योंकि दूसरा भी तो एक एनर्जी है, वो उस एनर्जी की तरफ ही आकर्षित करेगा. ये शरीर है क्या, इट्स जस्ट लाइक मैटर. जैसे हम एक सुंदर पीस ऑफ फर्नीचर को देखते हैं, एक बार जब पहली बार देखते हैं वी से वाओ इट लुक्स गुड, बट दैट्स ऑल. उसके बाद हम देखते हैं कि वो कितना कंफर्टेबल है. अगर वो लुक गुड बहुत अच्छा है लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है, तो शायद वो मेरे कोई काम की चीज नहीं है.
1: एंड देन वी स्टार्ट क्रिबिंग, यू नो, इफ वी बाय दैट एंड इवन इफ इट्स ब्यूटीफुल वी डोंट लाइक.
0: सो दैट फर्स्ट लुक इज जस्ट अ टेम्पररी थिंग, मोर इम्पोर्टेंट इज कम्फर्ट. तो दैट कम्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एनर्जी टू एनर्जी, नॉट विद द लुक्स. आपकी लुक्स सिर्फ एक फर्स्ट लुक देख कर कहेंगे हाँ लुक्स गुड, और डजेंट लुक गुड, बट दैट डजेंट मैटर. और उसमें भी आपका अपना सेल्फ एस्टीम बहुत मैटर करेगा. ज्यादातर दूसरे का इम्पोर्टेंट नहीं है, इट्स बिकॉज हम अपने ऊपर हम फील करते हैं नहीं, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं तो दिखने में अच्छी नहीं हूं. तो वो एनर्जी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं. अगर आप फील करेंगे कि आप जैसे हैं बिल्कुल ठीक है, इट इज फर्स्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ. लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं, इट इज फर्स्ट एक्सेप्टिंग माई सेल्फ. अगर यू आर नॉट कॉन्शियस, हम कॉन्शियस होते हैं नहीं मैं तो बहुत पतली हूँ, मैं तो बहुत मोटी हूँ, तो दूसरे का भी उस तरह का विचार चलना शुरू होगा. एक्सेप्ट योर सेल्फ, वॉच मैजिक, पीपल विल एक्सेप्ट यू.
1: डेफिनेटली,
0: नॉट एक्सेप्ट यू, दे विल लव यू.
1: बिकॉज वी जस्ट सेड दैट एक्चुअली, अगर हम पहले देखें अपनी बात को कि हमारा जो भी थॉट है, जो संकल्प है, जो पॉजिटिविटी है,
0: एनर्जी
1: वही
0: वाइब्रेट. तो अगर मैं आपको ये एनर्जी ट्रांसमिट करती रहूं कि आप मुझे नहीं लाइक करेंगे, आप मुझे नहीं लाइक करेंगे, आप मुझे नहीं लाइक करेंगे,
1: आप मुझे नहीं लाइक,
0: मैं तो हूं ही ऐसी, आप तो मेरे से दूर जाएंगे, आप तो मेरे से दूर जाएंगे, आप दूर जाएंगे. अगर मैं ये एनर्जी ट्रांसमिट करूं कि मैं जो हूं जैसी हूं बिल्कुल ठीक हूं, अभी अंदर पुरुषार्थ चल रहा है, आउटसाइड आई एम फाइन, दिस इज द वे आई एम, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, पीपल एक्सेप्ट मी.
1: फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, यू नो, अपने आप को एक्सेप्ट करें.
0: तो फिजिकल जो लुक्स पर हम अपनी सेल्फ एस्टीम को बेस करते हैं, ये बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है लो सेल्फ एस्टीम का. और उसी के कारण आज हम छोटे छोटे बच्चे अगर हम देखें तो ब्यूटी पार्लर जाते हैं.
1: बिल्कुल,
0: वो अपनी इनोसेंस को इतनी जल्दी खो देते हैं, इतनी जल्दी वो कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं,
1: इतनी कॉन्शियसनेस में घुस जाते हैं,
0: बॉडी कॉन्शियसनेस. तो वो अपने असली स्वरूप से बहुत जल्दी
1: दूर होते
0: जा रहे हैं. एंड वो ये समझने लग गए कि दूसरों की अप्रिसिएशन हमें, ये बिलीफ सिस्टम है कि दूसरों की अप्रिसिएशन तब हमें मिलेगी जब हम दिखने में बहुत सुंदर होंगे, जब हमने बहुत महंगे और बहुत अच्छे कपड़े और ज्वेलरी पहनी होगी. सो द होल इंडस्ट्री, और इसको मैन्युपुलेट सारा कौन कर रहा है, द इंडस्ट्री. वो बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम के ऊपर और ज्यादा.
1: अगर हम फैशन देखें, कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री देखें,
0: कॉस्मेटिक सर्जरी ऑल्सो,
1: यस. अच्छा, ये एक हमने ये बात तो की कि हमारा जो फिजिकल बॉडी है दैट या फिजिकल ब्यूटी है वो हमारी सेल्फ एस्टीम को गवर्न करने का एक जो मुद्दा नहीं होनी चाहिए,
0: और उसके लिए हमें यही याद रखना पड़ेगा, आई डोंट हैव टू लुक ब्यूटिफुल, आई एम ऑलरेडी
1: beautiful soul.
0: I am beautiful. I can take care of my body.
1: Yes, and I'm a beautiful being basically.
0: Being, yes, absolutely.
1: There is this email जो एक अगेन मदर का है, और इसमें एक्चुअली मैं ही देख पा रही हूँ उनकी, क्योंकि वो कहती हैं कि मेरी दो बेटियां हैं, एक 12 साल की है, एक 7 साल की है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. एक बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, पूरे हर स्कूल में हमेशा कुछ ना कुछ जीतती रहती है, और दूसरी जो है वो उतना ही चुप रहती है. मैं इतनी कोशिश करती हूँ, मैं इतनी बार कहती हूँ कि बड़ी बहन को देखो वो क्या कर रही है, तो वो कुछ करती ही नहीं है. क्या करूं मैं कि वो जो है उस तक पहुंचे.

0: आई फील एक्चुअली मैं को ये दिख रहा है कि ये कंपैरिजन इज अगेन मे बी वन कॉज कि वो छोटा बच्चा जो है छोटी बेटी नहीं कर रही होगी
1: हाँ, ये बहुत बड़ा रीजन है, ये भी एक लो सेल्फ
0: अनोइंगली
1: है, पता
0: एक्चुअली.
1: भी नहीं चल रहा. और एक्चुअली अभी जो मदर कर रही होगी वो मोटिवेट करने की कोशिश कर रही
0: दिस इज
1: है.
0: व्हाट शी इज ट्राइंग टू से कि मैं मोटिवेट
1: यस,
0: कैसे करूं, दिस इज हर
1: राइट.
0: क्वेश्चन,
1: लेकिन
0: हाउ डू आई
1: वो
0: मोटिवेट माई डॉटर, यंगर
1: एब्सोल्युटली,
0: डॉटर.
1: लेकिन हमने एक्सेप्ट कहाँ किया कि दोनों अलग हैं.
0: हाँ
1: हमने एक तरफ कहा कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, मतलब दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं. फिर हम एक को दूसरे की तरह बनाने की कोशिश क्यों कर रहे
0: क्योंकि
1: हैं?
0: आई एम नॉट लाइकिंग शी, आई थिंक शी इज नॉट लाइकिंग कि जमीन आसमान का फर्क क्यों है.
1: सो यू आर ट्राइंग टू मेक बोथ ऑफ देम द सेम.
0: दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज.
1: कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, एंड ये रियलाइज भी नहीं कर रही है कि ये कितना डैमेज कर रहे होंगे वो छोटे बच्चे को.
0: एक्चुअली ये हम जिंदगी में अगर देखें तो ये अनजाने अनचाहे कितनी बार
1: बहुत ज्यादा,
0: पेरेंट्स करते आ
1: और
0: रहे हैं.
1: बहुत ज्यादा डीप फैक्टर है. आज मेजोरिटी हम लोग जो लो, ये जो लो फीलिंग से गुजरते हैं जिसमें हमारा अंदर का ये जो है बहुत खाली है, इट्स बिकॉज ऑफ द वे वी वर ब्रॉट अप. हमारे को बचपन से या पीयर प्रेशर में जो कुछ बोला गया था वो कहीं ना कहीं फिट हो जाता है. और ये इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कंपैरिजन. या तो पेरेंट्स हमें किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, या खुद ही हम अपने आप को
0: करने
1: किसी
0: लगते
1: और के
0: हैं.
1: साथ कंपेयर करते हैं. सेल्फ एस्टीम, हाउ आई फील अबाउट माई सेल्फ एट एनी पॉइंट. तो नाउ अगर ये दो बहनों में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो अगर वो बहन अपने बारे में तभी अच्छा फील करेगी जब वो उस जैसी बन जाएगी. तब तक वो फील करेगी नहीं, मैं अच्छी नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं. मैं ठीक तब फील करूंगी जब मैं उस जैसा बन जाऊंगी, विच विल नेवर हैपन.
0: बिकॉज शी इज डिफरेंट, शी मस्ट बी डिफरेंट.
1: द मोस्ट फंडामेंटल थिंग जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ईच वन इज यूनिक. इफ ईच वन इज ब्यूटिफुल बट ईच वन इज यूनिक, ईच वन इज डिफरेंट. इस दुनिया की सुंदरता ये है कि हम सब अलग हैं, और हम उस सुंदरता जो भिन्नता में है हम उसको खत्म करने की कोशिश कर देते हैं, हम अपने एक दूसरे को अपने जैसा बनाने के लिए.
0: सिस्टर शिवानी, यहाँ डैमेज की बात आप कर रहे हैं. ये हमने कहा कि ये एक्सेप्ट, पेरेंट्स को भी ये मानना कि दोनों अलग हैं, लेकिन वो उसको प्रोसेस पे तो लेके जा रहे हैं कि आप जैसे बनो उस जैसे बनो, वो है नहीं बेसिकली वैसे. लेकिन एक स्टेज, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं ऐसे, कि एक स्टेज ऐसा आता है कि जो इंस्पिरेशन बनाई गई है उस तरह वो बन जाते हैं कुछ कुछ हद तक, लेकिन उनका बेसिक डैमेज कहाँ हुआ
1: हाँ, लेकिन वो
0: वो मैं जानना चाहती हूँ.
1: बाह्य रूप से, जैसे पेरेंट्स कई बार बच्चों को फोर्स करके कुछ वो बना देते हैं जो वो पेरेंट्स बनाना चाहते हैं. लेकिन आप बच्चे से जाके बात कीजिए, आज नहीं तो 10 साल के बाद, एंड फिर वो लाइफ लॉन्ग वो बच्चा कहेगा मैं ये नहीं बनना चाहता था, एज अ रोल, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इवन एज अ पर्सन. एंड यू नो, एक कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटी वो बन जाएगा कि वो बनना चाहता था कुछ और, या वो था ही कुछ और, लेकिन हमने उसको फोर्सफुली कुछ और बनाने की कोशिश की. सबसे डैमेजिंग होता है ये कंपैरिजन और इमिटेशन. मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे इनकी तरह बोलना है, मुझे इनकी तरह चलना है, आई हैव टू कैरी माई सेल्फ लाइक दिस पर्सन. दिस इज वेरी डैमेजिंग. एक्सेप्ट कि हर एक हम यूनिक है, वो डिफरेंट है. अब अगर मैं आपके जैसे बनने की कोशिश करूंगी, ना मैं आपकी तरह बन जाऊंगी और ना मैं जो थी वो रह जाऊंगी. आई एम मिडवे.
0: फिनिश, यस.
1: तो वो मिडवे प्रोसेस होने के कारण पर्सनालिटी इज एब्सोल्युटली डैमेज्ड. मैं ना वो बनी ना वो रही जो मैं एक्चुअली थी.
0: तो आई थिंक समवेयर पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट, गिव देम.
1: कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा है, वो ऐसा है. वो उसकी विशेषता है, क्योंकि दोनों बच्चों के अंदर विशेषता होगी. अब ये हो सकता है कि मुझे जैसे एक एक्सट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है, लेकिन दोनों के अंदर एक विशेषता है. अब अगर वो पेरेंट को वो एक्सट्रोवर्ट वाली पर्सनालिटी ज्यादा पसंद आ रही है, आई विल ट्राई टू पुश द चाइल्ड टू बिकमिंग लाइक दैट. लेकिन मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल,
0: यस, द वे शी इज, शी इज
1: वेरी
0: ब्यूटिफुल.
1: ब्यूटिफुल. एंड उसके उसकी नेचर को देखते हुए उसके अंदर जो विशेषताएं डेवलप हो सकती हैं, कोई स्किल्स. वो इंट्रोवर्ट है तो शायद वो पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट, या जो भी पार्टीज, इस तरह की चीज में हिस्सा नहीं ले सकती. वो कोई और चीज में
0: वो
1: हिस्सा
0: पेंटिंग
1: लेगी,
0: कर सकती है, वो कुछ और परफॉर्म कर सकती है, राइट कर
1: सिंगिंग में
0: सकती
1: जा
0: है,
1: सकती है, राइटिंग में
0: लिख
1: जा
0: सकती
1: सकती
0: है,
1: है,
0: वो कुछ
1: बहुत
0: भी कर
1: कुछ,
0: सकती
1: बहुत
0: है.
1: कुछ. लेकिन क्योंकि हम उसको उस तरह बनाने की कोशिश करते हैं, वो तो बन नहीं सकेगी, दैट्स फॉर श्योर.
0: बिल्कुल.
1: लेकिन हम उसके भी टैलेंट को और उसकी भी विशेषता को
0: और
1: सप्रेस
0: कहीं ना
1: कर
0: कहीं
1: देते
0: अगर
1: हैं.
0: ये जब जब मैं सोच पा रही हूँ ये, कि ये देखा बहुत गया कि अगर ये एक ही स्कूल में हुई और अगर तो टीचर्स जो हैं
1: हाँ बिल्कुल
0: वो भी कंपेयर करते होंगे
1: एवरीबडी,
0: पक्का कि
1: क्योंकि
0: आपकी बड़ी
1: एक
0: बहन
1: क्लास
0: तो
1: से
0: देखो
1: गुजरेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे.
0: कि अपनी बड़ी बहन को देखो वो कितना अच्छा करती है.
1: एब्सोल्युटली
0: तो ये पूरा जो पूरा क्योंकि अगली
1: बिल्कुल
0: मेल जो है वो मैं यही ले रही हूँ पीयर प्रेशर की. एक निशांत है दिल्ली से ही है और 9th क्लास के स्टूडेंट है. वो ये कह रहे हैं कि मेरी मम्मी ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं कभी चैट नहीं करूंगा और इंटरनेट पे मैं काम करता हूँ बहुत ज्यादा. मैं गूगल में सर्च करता हूँ. मेरे को बहुत आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय कहा जाता है मुझे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता भी हूँ. लेकिन मेरे क्लास के सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो ऑर्कुट पे चैट करते हैं. मेरा बहुत मन करता है लेकिन एक तरफ मम्मी मुझे लगता है कि मम्मी ने मुझे जो है मुझसे प्रॉमिस लिया हुआ है तो कैसे मैं मम्मी का प्रॉमिस तोड़ूं. और दूसरी बात ये कि अगर मैं नहीं जाता हूँ चैट पे तो मुझे सारे लोग हंसते हैं. सारे क्लासमेट्स जो हैं वो
1: हाँ
0: ऐसा करते हैं कि आई फील वेरी लो. आई
1: राइट
0: फील वेरी लो मतलब मुझे लगता है कि क्या मैं मम्मी का प्रॉमिस तोड़ दूं लेकिन मन नहीं करता. तो इट्स लाइक अगेन अ पीयर प्रेशर एक्चुअली.
1: सही बात है. पीयर प्रेशर और पब्लिक ओपिनियन,
0: हाँ कि मैं जो है वो लो हूँ लो सेल्फ एस्टीम में चला गया
1: राइट,
0: हूँ.
1: जो लो सेल्फ इस हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा, बहुत मतलब ये फंडामेंटल होगा, बहुत ज्यादा इस बात पर आधारित है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं.
0: इमिटेशन भी करते हैं नकल करते हैं.
1: इमिटेशन तो एक हो गया, जैसे हमने कहा कंपटीशन, इमिटेशन, कंपैरिजन, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, ये फिर भी माइल्ड है. लेकिन सारी जीवन हम इस में जरूर चलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो लोग अप्रूव करते हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद है, तो अगर लोगों को पसंद है,
0: तो मैं
1: लोग
0: ठीक हूँ.
1: मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं ठीक हूँ. इट डजेंट मैटर इफ इट्स ऑल रॉन्ग, यू नो. इट्स लाइक आजकल तो देर इज सो मच ऑफ अ
0: एक्चुअली
1: कॉन्फ्लिक्ट,
0: बिकॉज दिस चाइल्ड ऑल्सो इज सेइंग कि मुझे पता है कि गलत है.
1: क्योंकि मेजोरिटी वो कर रहे हैं तो मुझे भी वो करना चाहिए टू फॉर टू गेट देयर रिस्पेक्ट. यू सी इट्स लाइक सपोज ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, एक टाइम पे वी वुड से इट्स नॉट अ वेरी राइट थिंग टू डू, लेकिन आज क्योंकि मेजोरिटी कर रहे
0: वी
1: हैं,
0: से सोशल ड्रिंकिंग तो करनी ही पड़ेगी. आप
1: करना
0: सोशल ड्रिंकिंग
1: चाहिए,
0: नहीं करते
1: और
0: हैं
1: अगर नहीं करते हो आप
0: तो यू आर
1: तो यू
0: ऑड
1: आर नॉट
0: पर्सन.
1: नॉर्मल. तो इसलिए मेजोरिटी में हम में से वो करना शुरू कर देते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे. अगर मैंने नहीं किया तो लोग कहेंगे अच्छा तुम तो बहुत संत बन गए हो. ये जो रिमार्क हमें दूसरे से मिलेगा, मतलब नहीं ड्रिंक करना मेरी विशेषता थी लेकिन दूसरे के कमेंट के कारण मैं अपनी विशेषता छोड़ने के लिए रेडी हूँ. अच्छा आप तो बहुत सीधे हो, ये तो बहुत ढोंग है, आप संत हो, क्या बनने की कोशिश कर रहे हो, यू नो वट एवर काइंड ऑफ कमेंट्स दैट कम फ्रॉम पीपल. सिर्फ उस चीज को नहीं सुनने के लिए और वो उनके जैसा उनकी अप्रूवल लेने के लिए हम करना शुरू कर देंगे. सो
0: बट
1: सेम
0: हाउ
1: थिंग
0: टू
1: इज विथ
0: एक्चुअली हैंडल दिस, यू नो.
1: इवेल्युएट कि आपके लिए, नॉट इवन इन अ ब्रॉड सेंस कि सही क्या है गलत क्या है, बिकॉज वी आर नोबडी टू डिसाइड कि सही क्या है गलत क्या है. मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है
0: इंडिविजुअल लेवल पे जाके
1: इंडिविजुअल.
0: मैं
1: जैसे इस बच्चे के लिए अगर उसने मम्मी को प्रॉमिस किया है कि चैट नहीं करूं, फ्रेंड्स चाहते हैं कि करूं, लीव बोथ असाइड फॉर 1 मिनट, ठीक है. तो नॉट दिस एंड नॉट दिस, जस्ट लीव बोथ असाइड. आस्क योर सेल्फ वॉट इज गुड फॉर मी. क्या मैं सिर्फ चैट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स कर रहे हैं और सब कर रहे हैं? क्या मैं इसलिए नहीं कर रहा सिर्फ क्योंकि मम्मी ने कहा है? तो दोनों वेज आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी, यू नो.
0: क्योंकि दोनों में ही मैं गवान किसी और से हो रहा
1: हो रहा हूँ एंड वी डोंट लाइक दैट. तो
0: हूँ.
1: मुझे अपने आप से दोनों चीजों को समझना पड़ेगा. मेरी मम्मी मेरे लिए अच्छा ही सोच रही होंगी तो वो किस लिए कह रही है? थिंक अबाउट इट. बहुत सारा मेरा टाइम वेस्ट है. मैं कुछ और कर सकता था उतनी देर में. कोई बहुत मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन नहीं निकल रही है. मुझे ये भी नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूँ. इससे अच्छा ये ना होता मैं कोई जाकर एक्चुअली लोगों से बात करूं. तो मैं एनर्जी से बात करने की बजाय
0: एक मशीन
1: एक
0: से
1: मशीन से बात कर रहा हूँ. क्यों? व्हाई एम आई मूविंग अवे फ्रॉम एनर्जी? इट विल अफेक्ट माई पर्सनैलिटी. तो ये सब चीजें अगर मैं एनालाइज करूं देन आई टेक अ डिसीजन. आई विल नॉट चैट. एंड फिर जब वो मेरा अपना डिसीजन होगा सोच के रियली, फिर मुझे ये नहीं फर्क पड़ेगा. अगर द होल वर्ल्ड, फॉरगेट जस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स, अगर सारी दुनिया एक तरफ है और कहती है कि चैट करना चाहिए लेकिन मैंने फील किया मेरे लिए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट.
0: So finally, actually, if we look at it, we come down to this solution, this you know, this result that self-esteem actually majorly depends upon our again inner stability.
1: राइट
0: मैं
1: एब्सोल्युटली
0: डिसीजन लेने की जो पावर है मुझ में,
1: सेल्फ एस्टीम इज कैन नॉट बी बेस्ड ऑन एनीथिंग एक्सटर्नल. अभी जो हमने दो तीन बातें ली, हमारी हाउ आई फील इट्स बेस्ड ऑन हाउ आई लुक, तो वो भी टेम्पररी है, मोटे पतले वट एवर, काले गोरे वट एवर. सेल्फ एस्टीम सेकेंड वॉज बेस्ड ऑन हाउ आई वॉन्ट टू बी, कि दूसरे की तरह हम बनना चाहते हैं, देन आई विल फील गुड. एंड थर्ड सेल्फ एस्टीम वॉज बेस्ड ऑन लोग मेरे बारे में क्या
0: पब्लिक
1: सोचते
0: ओपिनियन.
1: हैं. मतलब सोचने की बात है कि सारा दिन में या एक जीवन में हम कम से कम 1,000 लोगों से मिलते होंगे, कम से कम. अब 1,000 लोगों का ओपिनियन तो मेरे बारे में अलग अलग होगा ना. अच्छा, हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों को भी ले लें, लेकिन उनका उनकी सोच के अनुसार, उनकी परसेप्शन के अनुसार उनका मेरे बारे में ओपिनियन होगा. और वो एक्चुअली ओपिनियन क्या है, मैं उनके माइंड में घुस के चेक भी नहीं कर सकता. और आपका ओपिनियन मेरे बारे में क्या है, यू आर अलाउड टू हैव दैट ओपिनियन.
0: एक्चुअली
1: आई ऑल्सो के नॉट से आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते
0: अच्छा,
1: हैं.
0: और सबसे बड़ी बात है वो मेरी पर्सनालिटी का ट्रेट है,
1: राइट.
0: वो मेरे अपने इनर सेल्फ
1: सी,
0: का एक पोर्ट्रेयल है.
1: आई कुड बी वेयरिंग अ व्हाइट साड़ी, लेकिन अगर आपने काला रंग का चश्मा पहना है तो आपको ये व्हाइट नहीं दिखने
0: काला
1: वाली है. और
0: दिखेगा.
1: अगर अब आप मुझे आकर कहो कि आपने काले रंग की साड़ी पहनी हुई है, एंड आई बिलीव यू,
0: देन आई एम रॉन्ग एक्चुअली,
1: एब्सोल्युटली.
0: बिकॉज आई
1: तो
0: हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम द व्हाइट.
1: मुझे तो याद रहना चाहिए ना, मुझे तो पता होना चाहिए कि आई एम वेयरिंग अ व्हाइट साड़ी.
0: अगेन यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है.
1: अपने आप की अगर पहचान होगी, अपनी रिस्पेक्ट होगी, तो फिर दूसरे का राय आप सुनेंगे, लेकिन हमेशा दूसरों के ओपिनियन की तरह बनने की कोशिश नहीं करते रहेंगे.
0: बहुत सुंदर सिस्टर शिवानी की, कहीं ना कहीं ये तीन बातें जो सामने आई कि हमारी जो लो फीलिंग जो है, कहीं ना कहीं यू नो लाइक वी फील की पिट में ना, स्टमक के पिट में ना, कि वी गोइंग डाउन. सो दैट ऑल डिपेंड्स, बिकॉज हमने उन्हें एक्सटर्नलाइज कर दिया है सभी
1: ट्रू
0: फैक्टर्स को. तो कहीं ना कहीं सेल्फ अवेयरनेस अगेन कम्स प्लेज अ वेरी
1: ट्रू
0: इंपॉर्टेंट रोल, और सेल्फ एस्टीम उस पर बहुत डिपेंड करती है. थैंक यू सो
1: थैंक
0: मच. देखा कितनी आसानी से हमारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट वापस लौट सकती है, जो हम अकेलेपन का, खालीपन का, हॉलोनेस की फीलिंग के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं. थोड़ा सा अगर खुद को जाने, खुद को पहचाने, सेल्फ अवेयरनेस की बात करें, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी ये हॉलोनेस डिपेंड करती है, उन्हें छोड़ दें, खुद से बात कर लें, तो शायद हम हंसते खेलते जिंदगी को गुजार पाएंगे. आपके पास भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही. अगली कड़ी में अपने बारे में कुछ और जानने का प्रयास करेंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: दोस्तों, जीवन का एक बहुत सुंदर जो स्वरूप है वो हम देखते हैं एक बीज के अंदर। कभी आपने सोचा है कि अगर बीज नहीं होते तो क्या पेड़ पौधे हो पाते? कभी आपने सोचा है कि बीज का महत्व हमारे जीवन में, पशु पक्षियों के जीवन में, या कहीं पूरे विश्व के लिए कितना हो सकता है? कभी सोच के देखिएगा, बगैर बीज के उत्पत्ति नहीं हो सकती, सृजन नहीं हो सकता, जीवन नहीं हो सकता। आज यशस्वी भारत कार्यक्रम के इस एपिसोड में मैं आरजे शांतनु आपके बीच में लेकर के आया हूँ एक खास मेहमान को, जिन्होंने बीज को लेकर के इतना सुंदर काम किया है, जिन्होंने बीज के इतने नए नए प्रकार हमें और हमारे किसानों को दिए हैं, जिनकी वजह से भारत सरकार ने, महामहिम राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उन्हें 2 कृषि सम्मान से पुरस्कृत किया हुआ है। आज हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में है श्री जयप्रकाश जी, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक छोटे से गांव टोडिया से बिलोंग करते हैं। आइए हम स्वागत करते हैं जयप्रकाश जी का। जयप्रकाश जी, रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
4: नमस्कार,
3: कैसे हैं आप?
4: ठीक है, अच्छे हैं।
3: जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो जो बीज को लेकर के आप इतना सुंदर काम कर रहे हैं और इतने नए नए प्रकार के बीजों को आप तैयार करते हैं, तैयार करके आप किसानों तक पहुंचाते हैं, इसके लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो।
4: धन्यवाद आपको, जो आप हमारी प्रशंसा के लिए कार्य करके, तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता।
3: तो जयप्रकाश जी, हमारे श्रोता साथियों को आज सुनना है आपकी कहानी आपकी जुबानी। जरा हमें बताएं कि आपका जीवन कैसे आज जहां पर है वहां तक पहुंचने का यात्रा क्या सफर रहा, कैसे आप बीजों के प्रति इतने प्रभावित हुए कि आपने अपने जीवन को बीज के संशोधन में, बीज के संवर्धन में ही लगा दिया, तो जरा उसके बारे में बताएं हमें।
4: सर, मेन चीज है कि मैं पहले तो एक किसान का बेटा, और हमारे यहाँ किसानिया होता था, किसान। पहले तो मैं एक किसान के घर जन्म लिया हूँ और किसान का बेटा हूँ। और क्या हुआ कि मैं पढ़ाई कर नहीं पाया, मैं 8 पास किया, उसके बाद पढ़ नहीं पाया, और एक राजपूत के घर जन्म लेने के नाते और कोई छोटी मोटी नौकरी काम, छबका फरसा गिलावा कोई जैसे कि है, वो सब काम करेंगे तो समाज मुझे, कुछ लोग कहते कि भाई देखा आगे ये ऐसा काम कर रहे हैं, घर के लोग भी कहते, तो मैं अपने आप को कुछ मेरे सोच में हमेशा यह था कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे कि मेरा नाम और मेरा मैं देश में मेरी एक अलग से पहचान। मैं हमेशा बच्चेपन से ही सोचता था, हमेशा कोई गांव में लड़ाई झगड़ा किसी में कुछ होता था मैं उस जगह पर पहुंच जाता था और सबकी बात सुनते सुनते मैं उस समाधान मिला जुला कर घुमा फिरा कर लोगों को हंसा देते थे, झगड़ा खत्म करा देते थे। मेरे अंदर एक ये सब तजुर्बा था भाईचारा का, प्रेम का। तो इस सब से मेरी परवाही होती थी, पर गांव में इज्जत करते थे बच्चेपन से। वही इज्जत पाने के लिए मैं कुछ बड़ा करने का मेरे अंदर शौक था कि मैं कौन सा काम ऐसा करूं कि मेरा नाम हो, हर लोग जाने, इज्जत करें। तो करूं क्या, पढ़ाई नहीं कर पाया था कोई, न बड़ी नौकरी न कोई कोनो ऐसा काम। तो घुमा फिरा कर मुझे खेती में आना था, खेती करना था कि इसलिए कि किसान के बेटे थे, किसान ये जानते थे। तो खेती में करते करते एक हमारे गांव के बगल में एक रामूरत सिंह होते थे, वो खेती करके उनका बहुत नाम होता था। कभी कभी वो आकाशवाणी रेडियो में आते थे उनका प्रोग्राम। उनको गवर्नर साहब ने, उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहब ने उनको एक बार आलू की खेती पर उनको पुरस्कार दिए थे और उनका रेडियो में कार्यक्रम आता था। और उससे खेती से उन्होंने वो जमाने में जहां उनके पास 2-1 बीघा केवल जमीन था, धीरे धीरे उन्होंने 200 बीघा जमीन बनाया, घर बनाया, ट्रैक्टर खरीदा, यानी कि उससे बहुत तरक्की किए वो जमाने में और नाम भी कमाए रामग्रह सिंह। जो घर का पैदा करते थे उनका सारा आलू बिक जाता था बीज में, गन्ना बिक जाता था, गेहूं धान जो पैदा करते थे सब बीज में बिक जाता था। माने उनको हर तरह से पढ़ने का चांस मिला नाम गांव से। तो मेरे अंदर भी शौक था कि मैं भी उनके की तरह कुछ ऐसा करूं कि मेरा भी कोई रेडियो में कार्यक्रम आवे, मेरा भी बीज बिके और मेरा बीज अलग हो, हटके सबसे बढ़िया हो, सबसे बढ़िया हमारा हो। हमें एक जो आ गया। तो मैं भी खेती करता था लेकिन वही बीज वो लगाए हैं, वही बीज हम, तो हमारा अलग कैसे होगा, बात तो ये समस्या बजी। तो मैं सोचता था कि मेरा बीज सबसे हटकर अलग रहे, जैसे गेहूं लगाया तो गेहूं मेरा सबसे हटकर अलग रहे, धान लगाया हो तो धान मेरा अलग रहे। तो अलग कैसे हो, तो एक डॉक्टर महातिम सिंह होते थे, BHU के वैज्ञानिक थे, वो कभी काल हम लोगों के यहाँ आते थे। यहाँ तो हमारे यहाँ आते थे तो पिताजी उस समय उनको बहुत इज्जत सम्मान देते थे कि वैज्ञानिक साहब हैं, खेत को भी दिखाओ, घुमाओ दिखाओ। तो हम डॉक्टर साहब से थोड़ा मुंह लग्गू हो गए थे क्योंकि उनको कुर्सी देना, पानी पिलाना, ये सब मैं घर का सेवक था तो ये सब करते थे। तो उनसे पूछे कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप लोग बीज कैसे बनाते हैं, जो नया नया बीया बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। क्या भाई, इसके लिए बनाने के लिए वो बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाकर वो क्रॉस करते हैं तब बीज जाकर बनता है, उसके लिए सीखना पड़ता है, यहाँ बताएंगे तो कैसे जानोगे। हम कहे तब कहाँ बताएंगे आप, कहे आइए हमारे यहाँ BHU में आपको बताएंगे। तो मैं जानने के लिए मैंने BHU साइकिल से गांव से जाता था। एक बार गया तो डॉक्टर साहब नहीं थे, फिर चला आया, माने 25-30 किलोमीटर जाना। इसी तरह से हम 3-4 बार वहां गए तो डॉक्टर साहब से एक बार पता लगा कि वो फील्ड में है, बच्चों को लेकर वहां पर कुछ कर रहे हैं फील्ड में, उनके ऑफिस में जब गया तो मैं फील्ड में गया तो बच्चों को वही सिखा रहे थे कि कैंची से बालियां निकला था उसको काटना, फूल झाड़ कर फिर दूसरे का परागण डालकर फिर उसको बंद करना, ये सब। तो मैं वहां खड़ा था, कहे क्यों जी कैसे, पूछे नहीं। हम कहे डॉक्टर साहब मैं जयप्रकाश, आप बुलाए थे ना, मैं इसीलिए आया हूँ। अच्छा अच्छा, तुम कटिया से आए हो, क्या डॉक्टर साहब तब बताइए हालचाल। हमके पास डॉक्टर साहब वही हालचाल है जो आप बताने के थे ना, कैसे बीज बनता है। तो कहा देखो ये बच्चे लोग बना रहे हैं ऐसा। तो वो तरीका कुछ 1 घंटा उनका हमने फील्ड में देखा, उसके बाद हमने उनका भी तरीका बनाया, कुछ अपनों तरीके से अपना तरीका अपनाया, कुछ सिलेक्शन करने का। मुझे एक शौक लग गया खेतों में घूमने का, हमेशा उसमें मिक्सचर है तो उसको गंदा है दिखने में तो तोड़ कर फेंक देना, कोई अच्छा दिखने में अलग लग रहा है तो उसको तोड़ कर उसको मल उल कर बीज को रख लेना। ये तरह से मैंने प्रक्रिया चालू किया। और एक बार मैं मेरे यहाँ सरबती लगा था गेहूं का, वो आपका मध्य प्रदेश में लगता है सरबती गेहूं, देसी वैरायटी है, तो उसी में से एक गेहूं का पौधा मुझे मिल गया सिलेक्शन, अलग से बड़ा थोड़ा बाल था उसका, वो अलग दिखने में लगा और उसको मैंने तोड़ कर अलग रख लिया और मिस कर रखा। दूसरे साल हुआ तो सारा बाल उसी तरह का होगा, ये क्यारी मैंने एक बीज करके एक बीते पर लगाया था, तो वो तरीका मुझे बीज बनाने का मिल गया। और इसी सब तरह से मैंने बीज बनाने का काम मैंने सीखा, सिलेक्शन करने का अपने आप अनुभव हो गया जब छटने का। लेकिन मेहनत बहुत किया मैंने, मेहनत का मतलब है खेतों में छटना, फिर दूसरे बोना, फिर और जगह जा जाकर बीज, जैसे भारत के अब धान का जैसे है कि देसी बीज हमारे यहाँ पहले होता था, उस बीजों का संरक्षण करना, वो लुप्त होता गया और नई नई वैरायटी आने लगी लेकिन खाने में बढ़िया नहीं है, तो याद करेगी अरे वो हमारा जो है पुराना वाला जड़हनी धान, बक्की धान, ये लोग पहले के हमारे यहाँ के लोग बक्की जड़हनी ये तरह से लोग करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे लुप्त हो गया, इक्का दुक्का था। तो हमारे दिमाग में आया उसको संरक्षण करने का, तो बिहार में कौन धान होता था पुराना, तो उसको कैसे पाऊं, तो वहां जाकर इसी तरह से मैं बंगाल जाना, कर्नाटका जाना, केरला गया, महाराष्ट्र, यानी भारत का कोई कोना मैंने नहीं छोड़ा। और वहां के जिला अधिकारियों से मिलना, उनसे पूछते थे कि आप बताइए कि यहाँ कौन गांव ऐसा है कि जहाँ खेती किसानी अच्छी होती हो, कोई किसान का नाम बताइए, वहां से नाम लेते थे और गांव में जाते थे। कभी कभी मैंने 10-10 किलो पैदल गया हूँ, कोई साधन नहीं है, पैसा का कमी था मेरे पास, किसी तरह से चालू ट्रेन में गया हूँ तो चालू में बैठकर रिजर्वेशन के लिए पैसा नहीं है, तो ये सब संघर्ष था। इतने भीड़ में मुर्कनिया बैठकर मैंने 3-3 दिन मैंने बिताया हूँ, तब मैंने बंगलोर कर्नाटक का बंगलोर पहुंचा, कहीं केरला ऐसे गया, तो वहां पर जाकर किसानों से बीज मांगा हूँ कि आपके यहाँ जो है पुरानी वैरायटी जो आप लोग के दादा परवाजा लगाते थे वो वैरायटी, हाँ भैया लुप्त तो हो गया, कुछ वैरायटी हम लोग खाने के लिए लगाते हैं उसको, तो जैसे कि उनके यहाँ 50 वैरायटी या 100 वैरायटी, तो उसमें से 2-3 वैरायटी उनके यहाँ बचा है, तो वो वैरायटी हम कहें 100 ग्राम हो, 50 ग्राम हो, 1 पाव हो, जो दे सकते हैं तो आप दीजिए, हम इसको संरक्षण करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ी में दिन में ये वैरायटी लुप्त न हो, इसलिए मैं आपके पास बनारस चल कर आया हूँ। तो बहुत खुश होते थे, बहुत अच्छी काम कर रहे हैं आप, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं, तो एक तरह से मुझे लोग की साबसी भी देते थे, खिलाते भी थे और मुझे बीज देते थे। एक तरह से मैंने हजारों वैरायटी धान का मैंने लिया कर संरक्षण किया, तो कई सालों से मैं 2-2 लाइन 4 लाइन सही लेकिन लगाता हूँ कि वो जिंदा रहे, बचाने के लिए बहुत मेहनत पड़ता है, हर वैरायटी का नर्सरी अलग अलग डालना, फिर अलग अलग लाइन में लगाना, फिर तैयार हो गया तो फिर अलग अलग काटना, अलग अलग मिसना, अलग अलग कैदी में भर कर लगाना, अब सोचिए हजारों वैरायटी में कितना मेहनत लगता है। धीरे धीरे काफी वैरायटी हमारी छूट गई, उसी में से मैंने सिलेक्शन बल्कि वैरायटी करके जो हमारी देसी वैरायटियां था जो संरक्षण किए थे उनसे मैंने उन्नत प्रजाति काफी बनाया, 480 वैरायटी मेरे पास है, करीब 60 वैरायटी मेरे पास धान का काला वैरायटी है, सेंटेड वैरायटी, एक वैरायटी मेरे पास जीरा की तरह एकदम छोटा पौधे में है, जीरा की तरह पैदावार 1 एकड़ में 20 क्विंटल दे रहा है, एकदम जीरा की तरह सेंटेड वैरायटी, उसका धान रख देंगे तो आपको इतना दूर बैठे रहेंगे आपको इतना अच्छा सुगंध लगेगा कि आप क्या बताओ, वो मैं धान तैयार किया, वो चावल फैल जाए पहुंच जाए लोगों तक तो पैदा का पैदा पाऊं, खाने में भी मजा आ जाए, और तो ये तरह से मैंने सिलेक्शन कर करके ऐसे बीजों को मैंने उन्नत बीज वही देसी वैरायटियों से, न कोई क्रास, न कोई हाइब्रिड, न कोई कुछ, केवल लगाना उसमें से अपने आप कोई वैरायटी बदल गया, उसको मैंने अलग तोड़कर मिस कर अलग रख लिया, फिर दूसरे साल लगाया तो उसी तरह का हुआ, तीसरे साल लगाया तो एकदम उसी तरह से हुआ। तो मैं मान गया कि 3 साल लगाते लगाते वो एक रंग का आ रहा है, तो एक वैरायटी मेरा अच्छी व उन्नत प्रजाति बन गई। तो उस वैरायटी को मैं बढ़ाता हूँ। आज जो मैं वैरायटी बढ़ाता हूँ, हमारे यहाँ आज वही दिन है कि मैं गेहूं करीब इस साल मैंने 9 गांव का गोद लिया हूँ। 9 गांव नवरत्न योजना मैंने बनाकर 9 गांव में मैंने पद यात्रा, हर गांव में एक दिवस मनाकर, जैसे कि राजा तलाव हमारा है, जीटी रोड है और रेलवे लाइन है, अब बड़ी मार्केट है, तो वहां पर विपणन दिवस मनाया कि एक कसल प्लाजा यहाँ बनाए कि कोई बाहर के लोग आवे, एग्रो मार्ट, एग्रो स्मार्ट, जो कि 9 गांव में जो चीज हम तैयार करेंगे तो वहां से फसल प्लाजा से एक जगह से लोगों को मिल जाए, कहीं भेजना है, एक्सपोर्ट भी करना है तो वहां से जा सके। दूसरा गांव को जैविक दिवस मनाया, तीसरे गांव को पशु दिवस मनाया, किसी गांव को उद्यान दिवस मनाया, एक तरह से किसी गांव को बीज दिवस मनाया। 8 जून को मैंने कृषि बीज दिवस, माने 8 दिन 9 दिन का 9 गांव में हर दिन का एक प्रोग्राम, और हर गांव में 1500 लोगों से शुरुआत पहले हुआ मेरे गांव में, एक गांव से जैसे राजा तलाव से विपणन दिवस मनाया तो कचहरिया गांव में पहुंचते पहुंचते मेरे पास 1000 लोग चले, माने इस गांव के भी वहां पहुंचने लगे। तीसरे गांव में गए तो 1500-2000 जुटने लगे। एक तरह से मैंने 9 गांव में पहुंचकर 9 गांव तक प्रोग्राम जो किया, हमारे जो कृषि विश्व दिवस 8 जून को मैंने रखा, तो आप समझ लीजिए कि 5000 लोगों का भीड़ लगा, बहुत बड़ा मेला कृषि विश्व दिवस मैंने मनाया 2005 आठ दिन का, कि ये बीज हर गांव में 20-20 लोगों का बीज समूह बनाया, हर ग्राम सभा में 20 लोगों का एक बीज समूह बनाया कि वो किसान को मैं बीज दूं, वो बीज तैयार करे, फिर उनकी खरीद हो और वो खरीद हो तब पूरे प्रदेश में फैलाए पहुंचाया जाए, फिर प्रदेश को मैं 6 जगह 9 गांव ले ले, पूरे उत्तर प्रदेश में 9 गांव को 6 जगह ले ले, तो पूरे उत्तर प्रदेश में मिलाकर 9 गांव हो गया, तो यहाँ से भारी बीज हो गया, तो हम दूसरों राज्य में पहुंचाने का काम चालू कर देंगे। तो एक तरह से पहले एक राज्य में एक जिला में एक ब्लॉक में 9, तो पहले मैंने यहाँ चालू किया, एक मध्य प्रदेश में लिया हरदा जिला, वहां पर 9 गांव को मैंने गोद लिया और 9 गांव में वहां के लोग किसान हमारे बीज को लगाते हैं, लेकिन मैंने मॉडल तो बहुत अच्छा बनाया लेकिन उसका पूरा काम नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अकेला पड़ जाता हूँ, कम थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, पूंजी की कमी है, और मैं एनजीओ तो बनाया हूँ अपनी, हैबिटेट जेपी कृषि शोध संस्था एक बनाया हूँ, हमारा रजिस्टर है, लेकिन कोई दान अनुदान मैंने कहीं से लिया नहीं अभी तक। मैंने सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में शोध समिति में भी हूँ, जैसे कि हर यूनिवर्सिटी के लोग अपनी वैरायटी जो निकालते हैं तो सरकार को लोग उस समिति में बैठक होती है, उसमें हम भी बैठते हैं, सारे लोग अपनी अपनी वैरायटी देते हैं, मैं भी सरकार को अपनी वैरायटी देता हूँ। तो उत्तर प्रदेश सरकार का 10 फार्म है, शोध केंद्र है उत्तर प्रदेश भर में, 200 शोध केंद्र में जैसे गेहूं है एक वैरायटी का, तो 10 किलो, 1-1 किलो का थैली मुझे देना होता है, 200 फार्म पर जाता है लगता है। 3 साल सरकार जब लगाती है, 3 साल जिसकी वैरायटी टॉप आता है उसी की वैरायटी रिलीज में आती है। तो हमारा गेहूं का एक वैरायटी रिलीज हो गया है यूपी गवर्नमेंट में, कई वैरायटी ये तरह से चल रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को बहुत अखर रहा है, वहां पर जब बैठक होती है अध्यक्ष आते हैं, जैसे अरहर मेरी 2 वैरायटी रिलीज हो गई, तो वो बैठते हैं तो पूछते हैं वैज्ञानिकों से कि सरकार आप लोगों को इतना पैसा देती है, करोड़ों अरबों रुपया देती है रिसर्च के लिए, आप लोगों की एक भी वैरायटी रिलीज नहीं हो रही है, देखिए जयप्रकाश सिंह है किसान है और 8 पास है और ये वैरायटी जो बना रहे हैं आप लोगों से हटकर भी अलग है, देखने में भी इनकी सब कुछ अच्छे है, पैदा भी ज्यादा दे रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि ये लोगों की बेइज्जती होती है। तो हमारा 2 साल से ये लोगों ने दबाव डालकर क्यों मेरा नाम कटवा दिया गया है जो शोध समिति में था। 2007 से मैं उत्तर प्रदेश सरकार के शोध सलाहकार समिति में, 2 साल से मेरा नाम नहीं बुलाया जा रहा है इसमें। तो कुछ लोगों से मैंने आइडिया लिया तो पता लगा कि यही बात है कि आप के नाते ये लोग बेइज्जत हो रहे हैं। ये लोग अपनी वैरायटी नहीं आता है तो शोध केंद्रों पर घूस देकर ये लोग अपनी वैरायटी को रिलीज करा लेते हैं। और हमारे यहाँ बनारस के जो शोध केंद्र है वहां जो ट्रायल में लगाते हैं वहां के कर्मचारी अधिकारी भी फार्मा के, वो हमसे बताए कि 30-40 हजार रुपया देते हैं कि हमारा 1-2 पॉइंट को बढ़ा दीजिए। मैं शर्मिंदा हो गया, बताइए देश कैसे आगे बढ़ेगा। देश के लिए आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, इसमें क्या है, कौन सी बड़कपन है? हम बड़कपन ये मानते हैं कि देश आगे बढ़े, हमारे किसान आगे बढ़े, हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, कोई भूख मरी देश से खत्म हो जाएगी, ये सोच होना चाहिए। वैज्ञानिकों को तो और खुशी होना चाहिए, बिना पढ़ा लिखा गांव में बेचारा खेतियों कर रहा है, कम से कम बीजों बना रहा है, तो हमारा तो सहयोग कर रहा है, हम तो उनके सहयोग कर रहे हैं, उनको तो तनख्वाह भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उनको इतना VIP सारी व्यवस्थाएं दिया गया है, हमें क्या है, हम तो खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कहीं जाना है तो मौके पर पैसा भी नहीं रहता है कि कहीं जाना है तो मौके पर पैसा नहीं, चालू है बोगी में, जैसे लोग जगह नहीं है, सीट नहीं मिलता तो मुल्तनिया में बैठ कर चला जाता है, लेकिन देश के लिए कुछ करने का शौक है, ये सोचना चाहिए। तब ये यहाँ ये समाज से यहाँ धर्म वो में लोग लपटे हुए हैं, यहाँ निस्वार्थ प्रभु को चाहे राम कहकर पुकारिए, चाहे अल्लाह कहकर पुकारिए, ये अपनी अपनी मर्जियां हैं, चाहे कुछ भी कहकर बुलाइए, भगवान तो एक ही है, अपनी विश्वास जिनके तरफ हो जिस रूप में आप देखते हो वही सही है, लेकिन हम आप एक हैं, ये संसार हमारा एक है, यहां अच्छी कर्म करो, भाईचारा करो, ये मेरी सोच होता है, ऐसे मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए, हमारा देश बढ़ेगा। तो हम इसी सब में लगे हुए हैं, काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं और अभी बहुत शौक है, लेकिन काफी दिन 1997 में मुझे कामयाबी मिला, आज 2023 हो गया, और कोई यही जो मैं अपना चीज बनाता हूँ अपने खेत का और वही बिक जाता है, किसान भाई आते हैं हमारा बीज घर से, अब हमको ये सब 500 क्विंटल का मेरे पास गेहूँ का आर्डर है, मैं चाहे 100 रुपया किलो मांग लू, चाहे 50 रुपया किलो मांग लू, चाहे जो मांगू, ये कोई नहीं कहता कि आप मांग दे रहे हैं, अरे जेपी बाबू आप 10 रुपया और बढ़ा कर लीजिए, लेकिन आपका बीज मुझे चाहिए। कितना लोग मांग रहे हैं, अगले साल पत्थर पड़ गया, आंधी आ गई, बहुत नुकसानी हो गया, फसल गिर गए, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था इस वक्त गेहूँ देखने के लिए प्रदर्शन की, कम से कम ये केवल जिला तक रह जाता है, जिला वाले आज हैं बवाई करते हैं, तो उसे पता लगा कि वो बदल गए, चले गए, नया वाला आया तो जान ही नहीं रहा कि जयप्रकाश सिंह कौन है, क्या कर रहे हैं। तो मैंने प्रधान जी को पत्र लिखा कि एक बार अपना टीम वैज्ञानिकों का आप अपने निगरानी में भेजकर यहाँ दिखाइए कि ऐसा कोई भारत में कोई विश्वविद्यालय में ऐसा कोई कर रहा है जो मैं किया, जो यहाँ आता है वो सर पर हाथ रख कर गया, कहा मैं आज पहली बार मैं देश विदेश भी गया, ऐसा खेती कहीं नहीं देखा, इतनी वैरायटी नहीं देखा जब मेरे खेत में फसल लगते हैं गेहूं। तो एक
3: आपके इसी जज्बात के लिए ही भारत सरकार ने वर्ष 2002 में जहां पर महामहिम राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी ने आपको कृषि श्रेष्ठ कृषि कृषक के सम्मान से सम्मानित किया, और सिर्फ यही नहीं हर जगह हर जनपद हर गांव में कितने किसान ऐसे हैं जो दिल से जो आपको धन्यवाद करते हैं, वो मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन आपकी कहानी जब मैं सुन रहा था तब मुझे एक चीज ख्याल में आया कि कई लोग जो ये समझते हैं कि अगर आप नहीं पढ़ पाए तो इसका मतलब आप आगे कुछ नहीं कर सकते, या कई बार दिल में लोग ये बात बैठा लेते हैं कि सामने वाला तो मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो उसका तो ज्यादा ही दबदबा रहेगा, मेरे जो हुनर है उनका क्या होगा। तो ये जो आपका जीवन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि अगर व्यक्ति अपने दिल से ठान ले कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो चाहे वो शिक्षित हो, कम शिक्षित हो, नहीं शिक्षित हो, उसके दिल के जज्बात जो हैं, उसे सफलता जरूर दिलाते हैं। जेपी जी, मुझे आपसे क्षमा चाहूंगा अगर मैं आपको जयप्रकाश सिंह जी ना कहकर के जेपी जी बुलाऊं, क्योंकि आपको जेपी जी के नाम से ही लोग जानते हैं। तो जेपी जी, अगर मुझे आपसे एक सवाल पूछना हो कि जैसे आपने कहा कि आपने गेहूं के, चावल के, इतने प्रकार के जो वैरायटी जो आपने निकाले हैं, और इनमें से कई जो है, यूं समझ लीजिए कि इसमें सबसे बड़ा योगदान माँ प्रकृति का ही है, जो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव ले आती है, और वो बदलाव से फिर वो बीज जो है अपने आप में एक बहुत ही अनोखा बीज बन जाता है, एक नया वैरायटी बीज बन जाता है। तो क्या ये जो सेम प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, क्या ये आपने सब्जी भाजी या फलों के लिए, या जो अभी जो सबसे ज्यादा डिमांड में है, मिलेट्स या श्री धान या श्री अन्न या मोटे जो अनाज होते हैं, जिसे रागी, ज्वारी, और इनके लिए भी क्या आपने किया है, या केवल गेहूं और धान के लिए ही किया है?
4: हमने गेहूं धान में किया है, इसका संरक्षण मैंने किया है, जैसे कि रागी वगैरह का। हमने 2000

0: बर्रा है, बर्रा होता है उसको फूलकर और महुआ होता है, उसके साथ कमर उमर में दर्द हो, औरतों को बच्चा होता था तो उसको खिलाया जाता था, तो ये सब लुप्त हो गया। लेकिन आज भी मेरे पास अभी तक किसी ने रजिस्टर नहीं कराया है, वो लोग से बताए थे अरे यार आप हमारे यहाँ रजिस्टर कराओ, मेरे पास नहीं है तो आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ, नाम मैंने सुना हूँ लेकिन मैं खुद नहीं देखा हूँ कि बर्रा कैसा। तो हम ऐसे ऐसे चीजों का संरक्षण, लेकिन दूसरों से अब बीज में मैंने जो धान है उसका देसी बीज से सिलेक्शन मैंने सिलेक्शन करके 480 वैरायटी मैंने उन्नत प्रजाति जो कि मैं अपने खेत में लगाता हूँ और तमाम किसान जुड़े हैं हमारे बीज को लगा रहे हैं हर राज्य में, यही नहीं कि मैं केवल यूपी में, हमारा हरियाणा है, अभी गेहूँ ये साल हिमाचल में गया है, 200 किसान मंगाए थे मैंने भेजा हूँ हरियाणा।
1: तो ये जो बीज आप संरक्षण करते हैं या जिन बीजों पे आप शोध करके जिनका संवर्धन करके आप जिनको तैयार करते हैं, क्या वो बीज भारत के हर भूमि में उग सकते हैं या विशेष भूमिगत ही?
0: हर भूमि में। ये भी जैसे देख रहे हैं सर, ये मेरे खेत में इतने बड़ा बाली है, देख रहे हैं आप जी, इसमें 110 दाने हैं। कोई भी दुनिया का गेहूं मिलाएंगे, 3 गेहूं 2 गेहूं तो ये एक गेहूं होता है, इतना बड़ा दाना मोटा।
1: लेकिन इसमें मुझे एक चीज ये जानना था, जैसे आप आपके पास जो भी वैरायटी है ये सब आपने प्राकृतिक तरीके से ही उत्पादित किया, इसमें कुछ भी आपने रासायनिक मिश्रण नहीं किया है और कुछ भी आपने इसमें ऐसा नेगेटिव चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जो कि आगे चल करके व्यक्ति के स्वास्थ्य में हानि पहुंचा सकता है।
0: सर यही तो खासियत है इसमें कि अपने आप में हाई पोटेंसी है। लोग देखते हैं कहते हैं कि इसमें बहुत लागत आप डाले होंगे, बहुत केमिकल डाले होंगे, मैं कहता हूं कि आप बिना केमिकल का करिए आपको पैदा ज्यादा मिलेगा। ये बीजे में ऐसा है कि इसका पौधा जल्दी बेकर निकलेगा।
1: तो आपको क्या लगता है कि क्यों जो है आजकल समाज जो है ये स्पेशली जो फार्मर्स कम्युनिटी है, जो विशेष रूप से जो किसानों का जो वर्ग है, क्यों वो इस बात को नहीं समझना चाह रहा है कि प्रकृति में अपने आप में ही इतनी ताकत है कि वो बहुत अच्छा उत्पत्ति कर सकती है, अच्छा उत्पादन दे सकती है, लोग क्यों बार बार रसायनों की तरफ भागने लगते हैं? आपका इसके बारे में क्या मान्यता है?
0: हमारा देखिए बुरा ना लगे तो मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी, इसलिए कि अब के जो किसान है, अब किसान तो रह नहीं गए, अब के युवा कोई खेती करना है पहले तो करना नहीं चाह रहा है, 5,000 रुपया महीना मिले वो जाकर दूसरे का नौकरी करेगा, लेकिन घर पर रहकर कोई खेती करना नहीं चाह रहा है। गांव में आप एक लेबर खेती के लिए हिरेंगे तो खेती के काम के लिए लेबर नहीं मिलेगा, वो जाकर बिल्डिंग बनवाने वाला काम, अढ़िया झुग्गा ये सब कर लेगा। लेकिन आप कहेंगे कि यार हमारा आज बुआई है, एक मेड़ टारना है, एक करना है तो कौन खनना है, वो नहीं मिलेगा, वो नहीं आएगा, वो बाव
1: का है। क्या है इसका कारण? आपसे वही तो जानना है कि इसके पीछे जैसे एक कारण आपने गिनाया, युवा जो है वो खेती करना नहीं चाहता है, ये एक कारण हुआ, लेकिन इसके पीछे भी क्या कारण है कि क्यों खेती नहीं करना चाहता?
0: वो जाता इसलिए कि खेती में मेहनत बहुत है, वो सोचता है कि मेहनत बहुत है, मैं कहता हूँ कि मेहनत बहुत कम है, खेत है तो बहुत जुगाड़ है, जुगाड़ से आदमी करे तो कोई मेहनत नहीं है, लेकिन उसको मेहनत लगता है, फरसा चलाना होगा, मीट हाथ से बांधना होगा, पैसा गेहूं इतना बेचेंगे तो इतने पैसा मिलेगा, और जितना पैसा मिलेगा एक क्विंटल गेहूं बेचेंगे तो 2 दिन हम कहीं काम कर लेंगे तो उतना पैसा हम कमा लेंगे, या झूठ साच बोल लेंगे तो उतना पैसा हम एक दिन में कमा लेंगे। तो आजकल फरार ज्यादा चल रहा है और बेरोजगारी कहीं है नहीं, लेकिन बेरोजगारी है नहीं लेकिन बेरोजगारी के नाम से रोजगार कोई करना नहीं चाह रहा है, रोजगार तो बहुत है लेकिन करना लोग नहीं चाह रहा है। और ये जो खेती प्राकृति क्यों नहीं करना चाह रहा है, अब का युवा ये देखा नहीं है, अब वो जब से जन्म लिया वो तो देखा यूरिया डाई पोटास केमिकल। हम अपने बच्चेपन में यह देखा था कि हमारे यहाँ सनई लगाए जाते थे, ठेचा खेत में लगाए जाते थे, पशु लोग पालता था, गाय भैंस का दूध दुहता था और बछवा होता था तो फिर उसके बाद वो तैयार हो गया तो उसके बल जोतता था। लेकिन जब हरी क्रांति आई, हरी

0: क्रांति के नाम से। एक तरफ तो हरी क्रांति के नाम से कुछ तो फायदा हुआ, लेकिन ज्यादा नुकसान ही हुआ। हरी क्रांति एक छलावा भी है, जो कि आज देखिए जितना फायदा नहीं होकर कौ गुना केवल सरकार प्रचार कर रही है किसानों को कि प्राकृतिक खेती करिए, जैविक खेती करिए। एक हजार किसान में एक आकर किसान हो सकता है कि मानते हो, सुनता तो बहुत लोग है, भीड़ लग जाता है, लेकिन उसमें करने वाला एकाका होता है। और सरकार कितनी खर्च करती है, सरकारी अधिकारी आते हैं, बैठक होता है, नाश्ता जलपान खाका कुलेट निकलता है, लेकिन कोई सुन न मानने को तैयार नहीं है। अब का युवा वही देखा है कि एक बार यूरिया लिया फट देना छींटे, कौन इतना गोबर का खाद एक काली खेते में फेंकेगा तो छींटेगा, ये सब भारी लग रहा है। अब पहले अब गए एक बोरी यूरिया लाओ तुरंत खेत में मारो खाली हो गए, फसल उसका हरा भरा लोग करने लगा।
1: तो अगर इसको हम सार में समझें तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का अपना जो व्यक्तिगत आलस्य है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि व्यक्ति को एक सही दिशा सही जजमेंट या डिसीजन निर्णय बनाने से रोकता है खुद का आलस्य। और दूसरा ये भी कि दूरदृष्टता की कमी, एक व्यक्ति जब दूर का नहीं देख पाता तो वो हमेशा नजदीकी मुनाफा देख करके डिसीजंस बनाता है निर्णय करता है, लेकिन वो नजदीकी मुनाफा जो है उसे भविष्य में होने वाले नुकसान के नजदीक लेके जा रहा है ये वो भूल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो अज्ञानता है लोगों में वो कम होने की आवश्यकता है।
0: जो मेरा परंपरा था सर चला आ रहा था मेरे बुजुर्गों का दिया हुआ, जैसे कि मेरे बुजुर्गों का बीज था, कोई विश्वविद्यालय कोई कृषि सेंटर नहीं था कहीं भी, तो एक जमाने में किसान वैज्ञानिक था, वो अपना खुद बीज बना लेता था अपना बीज को लगाता था, तो किसान ही वैज्ञानिक था। किसान अपने दिमाग से अपने जुगाड़ से हल बनाया था, बैल बनाया, बैल होता था तो बैल से जुताई कर लेता था, बैल के गोबर से जो आज फैक्ट्री में फर्टिलाइजर वगैरह सब बन रहे हैं, किसान के घर फर्टिलाइजर कंपनी था, बैल पालता था पशु और उसके गोबर से वो अपना खेती करता था। तो ये तो सरकार ने ये लोगों ने आए वो हमारे परंपरा को ये लोगों ने नष्ट कर दिया, वो पुराने लोग रह नहीं गए, जो परंपरा को चलाते आए वो तो रह नहीं गए,
1: लेकिन
0: और जो नए लोग आए तो वो देश में ही है। अब इसमें कूदने में उनको जाने में इतनी भारी हो रहा है कि विश्वास नहीं है।
1: लेकिन यही बात जो है मैं समझता हूँ हमारे श्रोता साथी जो भी सुन रहे हैं उन्हें खुशी देती होगी या उमंग और उत्साह भरता होगा उनके दिल में जब उनको पता चलता है कि देश में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो देश को उन्नत करने के लिए देश को यशस्वी बनाने के लिए अपने बीजों पे अपने जो हमारे पारंपरिक बीज है उनका संरक्षण कर रहा है। साथ ही साथ संरक्षण के अलावा कई गांवों को गोद में लेकर के उन बीजों के द्वारा उन्नत किसानी कैसे की जा सके उसके लिए प्रयासरत है। ऐसे जयप्रकाश सिंह जी जो हमारे साथ जुड़े हुए दोस्तों उनको बारंबार हम धन्यवाद करते हैं। और मैं समझता हूँ बाबा विश्वनाथ की धरणी से आप हैं और पूरे विश्व को का जो नाथ है उसकी धरणी वाराणसी से आप हैं, तो एक प्रकार से आपके बीजों में वो कहेंगे कि आध्यात्मिक शक्ति भी है जो कि सफल हो रही है और गंगा के जल से सींचे हुए धरनी में उगे हुए इन गेहूं के दानों का इन चावल के बीजों का जो शक्ति होगा मैं समझता हूँ वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। जैसे आपने कहा हर हर महादेव, जैसे हर हर बीज में जो है महान उत्पत्ति होने की क्षमता मैं समझता हूँ ईश्वर और प्रकृति मिलकर के भरते हैं, इसीलिए आप बहुत ही और इसलिए जो है आप काफी मैं समझता हूँ सही व्यक्ति हैं इस कार्य को करने के लिए। तो आपने जो बीज तैयार किए उन बीजों में न केवल आपका देश के प्रति प्यार झलकता है लेकिन साथ ही साथ इस पवित्र नगरी वाराणसी का गंगा का जल का प्रभाव और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद का प्रभाव भी दिखता है, जिस वजह से प्रकृति के करिश्मे को हम आपके द्वारा संवर्धित किए हुए बीजों में देख सकते हैं। तो एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब आप इन बीजों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तब आप अपने मन में क्या उद्देश्य लेके शुरू करते हैं कि कुछ नया इसमें निकलना चाहिए, या कभी अगर कुछ नया नहीं भी निकलता है तो क्या आप उसको कंटिन्यू करते हैं या छोड़ देते हैं, या कभी कभी कुछ आपने अपेक्षा रखी है वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है, तो इस टाइम पे आप अपने मन में क्या संकल्प करते हैं?
0: नहीं हुआ तो फिर होगा, आज नहीं हुआ तो कल होगा, लेकिन होगा। मेहनत करते रहते हैं, लगे रहते हैं, विश्वास होता है कि नहीं ये सफलता मिलेगा। और मेरा मेन लक्ष्य यह है कि ऐसा बीज पूरे भारत में पहुंचे, और अधिक करके मैं ये सोचता हूं कि मैं जैसे बनाता हूं, हर गांव का हर किसान अपना खुद का बीज बनाना सीख ले जाने, कि उसको कहीं बाजार न जाना पड़े, वो खुद अपना बीज अपने तरीके से बनाकर अपनी खेती खुद को करे और स्वावलंबी बने। और किसान को जब खेती करना होता है तो बीज खरीदने के लिए कभी पैसा नहीं रहता है, तो अलूल जलूल का इधर उधर का बीज खरीद कर बो लेता है तो उसका अच्छा नहीं होता है, फसल नुकसान हो जाती है, तो उससे भी उसका नुकसानी हो जाता है, तो किसान आगे नहीं बढ़ पाता है। और हर साल बीज खरीदने से किसान को इतना पैसा मौके पर भी नहीं होता, और उसका पैसा भी यही बीज में जुताई में सारा चला जाता है, उनको प्रॉफिट नहीं होता है, तो इसलिए किसान खेती नहीं करना चाहता, अधिक करके दूसरे बिजनेस या दूसरे काम की तरफ पलायन करते हैं। तो ये पलायन नहीं रुकेगा तो देश खाने बिना मर जाएगा। तो किसान के लिए हर तरह का सहयोग सरकार का भी होना चाहिए, लोगों का भी आशीर्वाद होना चाहिए कि किसान खुश रहे, खुश रहेगा तभी वो कुछ कर सकता है, खेती करेगा और देश को अन्न पैदा करके लोगों का पेट भर सकते। कभी आदमी को अपना हारना नहीं चाहिए, कि जो काम में लगा है वो ध्यान लगाएगा और पूरा ध्यान लगाकर उस पर विचार रखकर और सोचेगा तो कामयाबी जरूर मिलता है, इसमें दो राय नहीं है। हम तो विश्वास रखते हैं अपने काम का और ध्यान लगाते हैं भगवान का, और तो कामयाबी मिलता है। कामयाबी किया भी हूँ इसमें दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा यह है कि मेहनत करने वाले आदमी को कभी थोड़ा यह है कि वो चाहे कि मैं बहुत थोड़ा सा उसको संतुष्टि नहीं रहता है, खुश नहीं रह पाता है, थोड़ा परेशान रहता है, दुखी रहता है, क्योंकि काम करना पड़ता है और कहीं जाने आने में नहीं जा नहीं पाता है, तो थोड़ा सा उसको एक होता है ना कि जैसे हम बीज बना रहे हैं तो मुझे बच्चों जैसे अपने बच्चों का प्रेम है उसी तरह से इनका प्रेम लगता है कि मैं चला जाऊंगा तो हो सकता है कोई मेरा बाल न काट ले जाए, कोई पशु आकर न चर जाए, तो मुझे बहुत पीड़ा होता है। कोई नुकसानी हो जाती है तो समझ लीजिए जैसे कि मेरे बेटे को कोई चोट लग गया तो कष्ट होता है, उसी तरह से मुझे अपने फसल के प्रति बहुत कष्ट मिलता है।
1: जी, ये जो भावनात्मक जुड़ाव है आपका आपके फसल के साथ, ये फसल की सफलता का एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा साधन है। और जो भी हमारे किसान साथी सुन रहे हैं या जो भी लोग सुन रहे हैं, जिस भी काम को आप दिल लगा के करते हैं, प्यार से करते हैं, उस काम में सफलता जरूर मिलती है। और जैसे जेपी जी अपने फसल के साथ इतना दिल, इतना प्यार, इतनी मेहनत से, इतनी देखभाल के साथ वो इसका संवर्धन करते हैं, पालना करते हैं, कि उन फसलों में नवीनता आना तो निश्चित होता ही है साथियों। और आज उसी नवीनता के बदौलत जेपी जी एक बहुत ही सफल किसान है, एक ऐसे सफल किसान है जिनकी नवीनता के बदौलत कई दूसरे किसान भी सफल हो रहे हैं। तो किसान को उसका निश्चित सम्मान किसान की मेहनत का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग होता है। अगर कहीं ना कहीं हम उस सम्मान को देने से चूक जाते हैं या उसे उतना सम्मान नहीं देते तो उसके मनोबल को आघात पहुंचता है और उस कम मनोबल से जो उत्पत्ति है या उत्पादन है वो भी कम हो जाता है। तो दोस्तों ये मौका है कि हम दिल से हमारे सभी किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद करें और उनकी कड़ी मेहनत, उनकी लगन और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में हम उनको केवल यही तो कर सकते हैं दोस्तों कि हम उनको उनके काम के लिए, उनकी मेहनत के लिए दिल से प्रशंसा करें, दिल से उनको दुआएं भेजें। जेपी जी, आपका जो पता है, ठिकाना है, अगर लोगों को किसी भी प्रकार से आपसे सहायता लेनी हो, आपसे बीज लेना हो, तो वो किस प्रकार से ले सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं?
0: पहले तो यहाँ पर आकर और यहाँ आने से क्या होगा कि मेरे खेत में आंख से देखेंगे फसल मैं कैसा करता हूँ, और दूसरा यहाँ से आकर ले जा सकते हैं, और नहीं तो लाइन लाइन आजकल चल रहा है कि आप ऑर्डर दीजिए, बीज मंगा लेते हैं, हम भेज देते हैं, इसी तरह से लोगों को भेज रहे हैं और हमारे अकाउंट में लोग पैसा डाल देते हैं, हमें ट्रांसपोर्ट द्वारा इस तरह से भेज देते हैं, बैठे बैठे घर बीज मंगा कर।
1: तो ऑनलाइन अगर किसी को बीज मंगवाना हो तो किस नाम से मंगवाना होता है, कहाँ पर वो दर्ज करा सकते हैं?
0: हमारा गाँव जयप्रकाश सिंह, ग्राम टड़िया, पोस्ट ढढोरपुर, आराजी लाइन, जखनी रोड, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश, 8127-71-77-27। मोबाइल नंबर हमारा है 8127-77-71-27। सर गड़बड़ हो गया था, 8127-77-71-27 हमारा रजिस्टर नंबर है मोबाइल, इससे संपर्क लोग कर सकते हैं। और संपर्क के साथ ही हम तो चाहेंगे कि एक बार बनारस जरूर आवे, आकर टड़िया गांव में भी आवे, गेहूं की फसल देखना हो तो मार्च महीना में जरूर आने का एक बार आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि मार्च में आप एक बार जरूर आवे, यहां आकर अपने आंखों से खेती देखें और देखें और देखकर अच्छी चीज है तो हम चाहेंगे कि न पैसा से सही तो 100-150 ग्राम हम तो एक बीज पहले बनाते हैं तो एक बीज से एक पौधा बनता है, एक पौधे से फिर बीज बनता है तो उसको एक एक बीज बनाकर एक कियारी में लगाते हैं, फिर एक कियारी से और बड़े कियारी में ले जाते हैं, ऐसे 3-4 साल लग जाता है बीज बढ़ाते बढ़ाते। तो हम तो कहेंगे कि 100-100 ग्राम हम फ्री का बीज दे के पैकेट में पूरे भारत के किसानों को बांटा जाए, हर किसान बीज अपने खेत में बढ़ाकर अपनी खेती स्वयं कर दे और आगे बढ़े और हर किसान भाई के घर तक ये बीज पहुंच जाए। बस अब क्योंकि मैं थक चुका हूं, कोई बहुत मुझे इससे लाभ यही है कि मैं तमाम किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत मुझे प्रेम है और सबसे बड़ा प्रेम हमारा यह है कि मैं मर गया तो मेरा बीज लुप्त हो जाएगा, तो ये लुप्त हो जाएगा तो ये ठीक बात नहीं है, लोगों में पहुंच जाएगा तो जिंदा तो रहेगा, तो मैं अपने वंश को जिंदा रखना चाहता हूं और यही आपसे भी हमारा अनुरोध है कि भारत के हर हमारे किसान भाई तक ये बीज पहुंच जाए, क्योंकि हमारा इनसे बहुत प्रेम है। एक बीज मेरा छूट जाता है लगाने में तो समझ लीजिए मैं तड़पता रहता हूँ कि ऐसा ना हो कि ये साल नहीं लगा पाया हूँ, अगले साल ये रखा हूँ तो जमेगा कि नहीं जमेगा, तो मैं उसी के बारे में सोचता रह जाता हूँ, रात को सोऊंगा तो हमारा दिमाग उसी पर जाएगा, महीना तो दो महीना सोचते रहते हैं तो ये दिमागी उलझन बना रहता है, हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत चिंता में रहते हैं, तो मुझे बहुत सुखी नहीं है लेकिन बहुत कष्ट के साथ, बहुत मेहनत के साथ मैं एक कार्य करता हूँ। 120 वैरायटी बल्कि कितनों खेत में मैं बढ़ा लेता हूँ, किसानों को दे लेता हूँ, फिर भी उस बीज को मैं एक कियारी लगाऊंगा क्योंकि वो कहीं चला गया पता नहीं वहां बचेगा क्या होगा, तो मैं जिंदा करने के लिए अपने 120 वैरायटी को कियारी में थोड़ा थोड़ा सबको लगाता हूँ कि मेरा बीज जिंदा रहे, और अपने हाथ से लगाता हूँ, इसके लिए मजदूर भी नहीं मिल पाते, भाग जाते हैं खुदा किसी को, अब नए वालों को नए युग में अब तो कुदारा नहीं चलाने आता है, अब वो जमाना खत्म हो गया, अब किसाना नहीं रह गए, किसने ही कोई करना नहीं चाह रहा है। तो हम अपने बीज को अपने से उदाल खींचते हैं, फिर बीज डालते हैं, ये तरह से हम एक एक बीघा अपने हाथ से गेहूं बोते हैं उदाल से, लोग ट्रैक्टर से हल से नहीं बो पाते, उसमें छिटने में लोग भागते हैं, हम कुदाल से बोते हैं, एक महीना 20 दिन हमको लग जाता है अपने हाथ से बोना। अब ये समय मुझे थोड़ा रोग बीमारी हो गया था, हाथ पैर में डेंगू हो गया था, दो बार भर्ती हुआ, फिर घर आया फिर वही चालू हो गया, हाथ पैर में दर्द, एकदम डोल नहीं पाते थे, लेटरिंग नहीं कर पाते थे, बैठे थे बैठ नहीं पाता था, बैठ जाता था तो उठ नहीं पा रहे थे, अभी भी दवा चल रहा है, दर्द होता है दवा खा रहे हैं दर्द का, लेकिन आगे कहीं अब हमारी बुआई चल रहा है, आ गया है धान की कटाई पिटाई चल रहे है, लेकिन मैं बहुत असमर्थ हूँ इस समय कि मैं मुझे गेहूं अपने हाथ से बुना है, और हाथ का हालत यह है पैर का, दर्द में परेशान हूँ, दवा खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, दवा खा खा कर मैं बोऊंगा, क्योंकि मुझसे इससे बहुत प्रेम है, ये देखिए ये खत्म हो जाएगा फिर पता नहीं कौन बनाएगा आएगा कि नहीं, जो लुप्त तो हो गई तो हो गई, फिर बनाएगा कोई तो अलग से मिलेगा, ये चीज नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए मुझे इससे प्रेम है, ये मेरे बच्चों से बढ़कर है, एक प्रकार का मेरा बच्चा है, खेत दिन में भी जाते हैं, रात को भी नहीं रह जाता, सोए रहते हैं तो उठकर खेत देखने चले जाते हैं, क्योंकि रात में खेत में जाने पर फसल बोलते हैं, लोग सोचता है कि बस ये उसी तरह से है, ऐसा नहीं है, ये हमारे की तरह ये भी आपस में बात करते हैं, इनकी भाषा समझना पड़ता है कि क्या कह रहे हैं, इनको पानी चाह रहा है कि भूख लगा है, क्या बात है, क्या बीमारी में फंसे हैं, ये आपस में बात करते रहते हैं, रात को बोली आवाज वहां जाइए फसल में खेत में तो सुनाई देता है, हम इनकी भाषाओं को समझ लेते हैं, इसलिए खेत में जाते हैं लोग।
1: तो दोस्तों जो आपने सुना अभी
0: क्या पक रहे हैं,
1: तो दोस्तों आपने जो अभी सुना जेपी जी को कहते हुए कि प्यार जो है उनका अपने फसलों के प्रति वो इतना है कि वो अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखते, और कितनी भी तकलीफ उनको सहन करनी पड़ती है लेकिन वो खेती छोड़ेंगे नहीं, ये उनका विश्वास है, और ऐसे किसानों की वजह से ही दोस्तों मैं और आप कभी भूखे नहीं सोते हैं, हमारे पेट में अगर भोजन जा रहा है तो वो इस प्रकार के जज्बे के साथ जो कृषक जी रहे हैं उनकी वजह से जा रहा है, और जेपी जी उनमें से एक है, तो जरूरत इस बात की है कि हम भी बीज की गुणवत्ता और बीज की महानता को समझें, और एक किसान जो बीज की महानता को बढ़ाए रखने में इतना सहयोग दे रहा है हम उसको सहयोग करें। तो जेपी जी ने तो अपना सारा डिटेल्स भी आपको सुनाया है कि कैसे आप उनके साथ फोन पे संपर्क कर सकते हैं, उनसे बीज और उनसे बीज लेकर के आप अपने खेत में बीजों को लगा करके उसका थोड़ा सा हिस्सा जरूर उनको वापस भेजे ताकि उनके पास भी बीज बने रहे, और अपने आप भी अपने बीजों पे वर्क कर सकते हैं और उनको अच्छा बना सकते हैं। तो आइए बीज को हम एक शक्ति बनाते हैं, बीज अपने आप में एक शक्ति है लेकिन उस बीज की शक्ति को समझ करके भारत के भविष्य को शक्तिशाली बनाने का एक प्रण लेते हैं, और आज यहीं पर हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जेपी जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी सेहत की अत्यंत शुभकामनाओं के साथ रेडियो मधुबन की परिवार की तरफ से हम आपको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं देते हैं, और उम्मीद करेंगे कि कभी ना कभी जरूर आपके फसलों को आकर के हम अपनी आंखों से देखें, उन्हें अपनी आंखों से अपने श्रोता साथियों को भी हम इनवाइट करते हैं कि जरूर तोड़िया गांव पहुंचे वाराणसी के, और जाकर के जेपी जी के फसलों को निहारे और कुछ सीखें, कुछ समझें, कुछ खुशी लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी जी आपका और सभी श्रोता साथियों का जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे थे।
0: सर मैं भी आपको जय हिंद जय भारत प्रणाम करता हूँ, शांति।
1: तो दोस्तों आज हम हमारे इस वार्तालाप को जयप्रकाश सिंह जी के साथ यहीं पर समाप्त करेंगे। अब तक आप सुन रहे थे यशस्वी भारत कार्यक्रम में जयप्रकाश सिंह जी, जो कि वाराणसी के तोड़िया एक छोटे से गांव से हैं, लेकिन उस छोटे से गांव में रहते हुए उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे। बचपन में ही उन्होंने ये सपना देखा कि मैं अपने देश को कुछ ऐसा करके दूं जिससे मेरे देश की उन्नति होती रहे और हमेशा हमेशा होती रहे। और इससे अच्छा क्या होगा कि अगर वो उन्नति का साधन भोजन से जुड़ा हुआ हो, खेती से जुड़ा हुआ हो। उन्होंने बीज को, जो कि जीवन का सबसे पहला इकाई है, उस बीज को ही अपना ध्येय बनाया और उस बीज के द्वारा ही, उस बीज के संवर्धन में, उसमें नवीनता लाते लाते उन्होंने कई किसानों के जीवन में बदलाव लाया। उनके इन अनहरत प्रयासों की वजह से और उनके इन अथक प्रयासों की वजह से भारत ने उन्हें सम्मानित किया। वर्ष 2002 में राष्ट्रपति महोदय श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उन्हें श्रेष्ठ कृषक सम्मान से सम्मानित किया। तत्पश्चात हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमती श्री प्रतिभा सिंह देवी पाटिल जी ने भी उनका सम्मानित किया। दोस्तों, ये एक मिसाल है कि अगर जीवन में आपने कोई ध्येय बना लिया है तो उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए आपको अविरत कार्य करते रहना है। जैसे जयप्रकाश सिंह जी कह रहे थे कि अगर एक बार उनका फसल छूट जाए तो वो दोबारा उस पर लग जाते हैं, अगर उस फसल में कोई नवीनता नहीं आती तो वो बराबर उस पर प्रयास करते रहते हैं। जैसे जयप्रकाश सिंह जी कह रहे थे कि अगर उनका फसल एक बार में उन्नत नहीं होता है तो वो हार नहीं मानते और बार बार लगे रहते हैं। इसी प्रकार से हमें भी हमारे जीवन में यही प्रयास करते रहना चाहिए कि अगर हम जो चीज करना चाहते हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं तो हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ते रहना है, प्रयास करते रहना है। और इस वजह से ही जो सदा प्रयासरत रहते हैं उनको ही सफलता मिलती है। यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड को मैं आरजे शांतनु आपके बीच में लेकर के आया था। आज के हमारे मेहमान थे जयप्रकाश सिंह, जिन्हें भारत सरकार ने उन्नत कृषि के लिए श्रेष्ठ कृषक का सम्मान दिया और जिन्होंने अपने बीजों की उन्नति के द्वारा पूरे देश के कृषि समाज को एक बहुत बड़ा वरदान दिया। उन्नत, नवीनतम, प्राकृतिक रूप से शोधित गेहूं और धान, इनके बीजों में किसी भी प्रकार का रसायन नहीं होता दोस्तों। ये प्राकृतिक रूप से तैयार किए हुए बीज होते हैं और प्रकृति के साथ और इनके मेहनत से आज कई किसान जो हैं बहुत बहुत अच्छे सफल कृषि का लाभ ले रहे हैं। हम एक और कार्यक्रम, एक और एपिसोड के साथ आपके बीच में दोबारा आएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन। जी हाँ दोस्तों, और हाँ, अपने आसपास में अगर कोई किसान है तो उसको जरूर जरूर दिल से सम्मान देते रहिएगा। इसी संदेश के साथ आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों के गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपके चिंतन को एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया विषय लेकर आया हूं और आज का विषय है शुभ भावना और शुभ कामना का जीवन में महत्व। आइए इस पर मैं आपसे अपना चिंतन साझा करता हूं। हमारे जीवन में विचारों और भावनाओं का बहुत महत्व होता है। हमारी सोच और भावनाएं न केवल हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण और संबंधों पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। जब हम किसी के प्रति शुभ भावना रखते हैं और उसे शुभकामनाएं देते हैं तो यह सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो जीवन को खुशहाल और आनंदमयी बनाता है। आइए अब समझते हैं शुभ भावना का क्या अर्थ है। शुभ भावना का अर्थ होता है दूसरों के प्रति अच्छा सोचना, उनके लिए मंगल की कामना करना। जब हम किसी के प्रति स्नेह, आदर, करुणा और सहयोग की भावना रखते हैं तो यह शुभ भावना कहलाती है। यह भावना हमें न केवल मानसिक रूप से शुद्ध और शांत बनाती है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मधुर बनाती है। शुभ भावनाएं हमें नकारात्मकता से दूर रखती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। शुभ भावना का विस्तार केवल हमारे परिवार और मित्रों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे समाज और विश्व के प्रति हो सकती है। यदि हम हर व्यक्ति के प्रति शुभ भावनाएं रखें तो समाज में प्रेम, भाईचारा और शांति का वातावरण बनेगा। शुभ कामना का अर्थ होता है किसी के सुख, समृद्धि और सफलता की कामना करना। जब हम अपने प्रियजनों, मित्रों या किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छे भविष्य की प्रार्थना करते हैं तो इसे शुभ कामना कहते हैं। भारतीय संस्कृति में शुभ कामनाओं का बहुत महत्व है। शुभकामनाएं केवल औपचारिकता नहीं होती, बल्कि यह हृदय से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा होती है जो व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। जब हम सच्चे मन से किसी के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति तक पहुंचती है। आइए अब हम और विस्तार से शुभकामना और शुभ भावना का महत्व समझते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब हम किसी के लिए शुभ भावना और शुभकामनाएं रखते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे मन शांत और प्रसन्न रहता है। इससे रिश्तों में मधुरता आती है।

0: शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है। यह प्रेम और अपनत्व को बढ़ाती है। यह आध्यात्मिक उन्नति में हमारे सहायक होती है। जो व्यक्ति सभी के प्रति शुभकामना और शुभ भावना रखता है वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नति करता है। सामाजिक सद्भाव को भी इससे बढ़ावा मिलता है। यदि हर व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के प्रति शुभकामनाएं रखे तो समाज में शांति, सहयोग और सद्भाव बढ़ेगा। जब हम दूसरों के लिए शुभकामना करते हैं तो उनके प्रति शुभ भावनाएं रखते हैं तो हमारा मन शांत और संतुलित रहता है। शुभ भावना और शुभकामना को जीवन में अपनाने के तरीके क्या है? अगर हमें शुभ भावना और शुभकामना को जीवन में अपनाना है तो हमें सभी के प्रति सहानुभूति और प्रेम रखना है, दूसरों की सफलता और खुशी में सच्चे मन से प्रसन्न होना है, किसी के प्रति ईर्ष्या, घृणा और द्वेष की भावना नहीं रखना है, नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान करना है जिससे मन शुद्ध और सकारात्मक बना रहे, छोटे छोटे अवसरों पर अपने प्रियजनों और मित्रों को शुभकामनाएं हमेशा दें, अपने आसपास के लोगों की भलाई और कल्याण की हमेशा कामना करें। इस चर्चा से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शुभ भावना और शुभकामना जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाती है। यह केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में भी प्रकट होनी चाहिए। यदि हम सच्चे मन से सभी के लिए शुभकामना करें और शुभ भावना रखें तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा बल्कि संपूर्ण समाज भी प्रेम, शांति और सद्भाव से भर जाएगा। तो ये रहा आज का चिंतन। फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में एक नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: हम खुश बैठे, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच।
1: एक्सेप्टेंस के बाद पर मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा। एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी मिसफॉर्च्यून।
2: पिछली बार जो लाइन थी जो आपने सुनाई वो थी एक्सेप्ट एंड देन एक्ट। एक्सेप्ट एज इफ यू हैव चोजन इट एंड इफ यू डू दैट देन यू विल क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ। मतलब परिस्थिति को पहले एक्सेप्ट करें फिर एक्ट करें, और इतना प्यार से एक्सेप्ट करें जैसे कि आपने खुद वैसा ही चाहा था, दैट यू हैड चोजन इट, एंड इफ यू डू दैट यू विल क्रिएट मिरेकल्स। आज ये लाइन कहती है एक्सेप्टिंग द सिचुएशन इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मिसफॉर्च्यून। कि सपोज जीवन में कोई मिसफॉर्च्यून बड़ी बात आई है, हमें उसको क्रॉस तो करना ही है, और हम सब करते हैं फेस करना ही है, उस चैलेंज के पार हमें जाना ही है। वो चैलेंज को क्रॉस करना भी एक जर्नी होती है। वो चैलेंज को क्रॉस करने में कभी कुछ घंटे, कभी कुछ दिन, कभी कुछ साल लगते हैं। कभी कभी वो चैलेंज हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। देर आर सम सिचुएशंस विच विल नेवर गेट सॉल्व्ड, राइट? सपोज मुझे कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज नहीं हो सकता। सपोज मुझे कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो जाए, या मैं पैदा ही डिसेबिलिटी के साथ हुई हूँ, वो कभी सॉल्व नहीं हो सकता। कभी मेरा रिश्ता कोई टूट जाए जो अब कभी नहीं जुड़ सकता, कोई मुझसे अलग हो जाए,
1: कोई मर जाए,
2: हाँ, तो वापस कभी नहीं आ सकता। सो देर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस इन लाइफ जिनका कभी कोई सोल्यूशन नहीं है आगे। उसका कोई ये नहीं, हम वेटिंग पीरियड नहीं है कि इसके बाद ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। कुछ ऐसी भी सिचुएशंस है, बाकी मेजोरिटी सिचुएशंस आज नहीं तो कल ठीक हो जानी है, लेकिन पीरियड कई बार लंबा चल सकता है बीच में। बट इट सेज एक्सेप्टिंग द सिचुएशन इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मिसफॉर्च्यून। मीन्स जो बात आई है हमारे जीवन में, मिसफॉर्च्यून जिसको कहा, मतलब कुछ हादसा, कोई ट्रेजेडी, कोई बड़ी बात, वो मिसफॉर्च्यून हमारे जीवन पर कुछ असर डालेगी, वो तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा हमारे जीवन में। उस परिवर्तन को फेस करने के लिए, उस परिवर्तन में स्मूथली क्रॉस करने के लिए फर्स्ट स्टेप एक्सेप्टेंस है। क्योंकि ज्यादातर जब भी कोई बात आती है तो हमारा मन प्रश्नों में चला जाता है।
1: क्यों?
2: क्वेश्चंस।
1: किस लिए, कैसे हुआ,
2: किसकी वजह से हुआ,
1: ऐसा मैंने क्या कर दिया,
2: क्वेश्चन
1: right. क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों हुआ।
2: क्वेश्चंस जिसके लिए परमात्मा हमें कहते हैं प्रश्न चित्त। चित्त प्रश्नों से भर जाता है। जब चित्त प्रश्नों से भर जाएगा तो चित्त की स्थिति, मतलब मन की स्थिति,
1: प्रसन्न चित नहीं रहती।
2: यस, वेरी ट्रू। लेकिन उसके अंदर की वो जो स्टिलनेस है जहां हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखने वाला है, वो हमें नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ हलचल हो रही है। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। हर बात का जो मन पर असर पड़ता है फिर उसका शरीर पर भी असर पड़ता है। आज ज्यादातर क्या होता है, बात आती है, बात एक होती है, एक बात आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के जीवन में एक बीमारी आती है, अभी रिसेंट

0: आई मेट समबडी जिनकी एक बीमारी छोटी थी लेकिन उसका इलाज नहीं पता चल रहा था, थोड़ा सा लंबा हो गया कुछ प्रोसेस, लेकिन वो प्रोसेस में क्योंकि इलाज नहीं मिल रहा था तो वो इतने हताश हो गए कि उसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो गया। तो हुआ क्या कि एक प्रॉब्लम को हम नहीं स्टेबिलिटी से अगर क्रॉस कर पाए तो दूसरी प्रॉब्लम हम क्रिएट कर देते हैं। प्रॉब्लम एक बीमारी थी, वो एक अलग चीज थी, इलाज नहीं मिल रहा था तो आप यहां से वहां इधर उधर, पर उसमें जो डर क्रिएट हो गया कि ये मुझे क्या हो गया है, क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसका कभी कोई इलाज नहीं होगा, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान कौन रखेगा, ये जो मन इन सब चीजों में चला गया, डर में चला गया, दर्द में चला गया, भय में चला गया, इनसिक्योरिटी में चला गया, तो उस मन को डिप्रेशन हो गया। तो एक प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के साथ दूसरी प्रॉब्लम। कई बार किसी के बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव आता है, कई बार किसी के रिश्ते में उतार चढ़ाव आता है, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ता है कि किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम एक थी लेकिन उसको स्टेबिलिटी से क्रॉस नहीं कर पाए तो और प्रॉब्लम साथ में क्रिएट होती है। कई बार जो आजकल हम बच्चों में देखते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया था कि उनकी जीवन में क्या होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ करियर कि वो कैसे चलेंगे आगे, ये बनेंगे, नहीं बन पाते। वो जो सोचा था कि स्क्रिप्ट ऐसी चलेगी जीवन की, वो नहीं हो पाता, जो चाहा था वो नहीं मिलता, तो वो अपने आप को भी कुछ कर लेते हैं या हताश हो जाते हैं। तो एक परिस्थिति का इम्पैक्ट एक नहीं रह रहा आज, एक परिस्थिति का इम्पैक्ट और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू फेस दैट मिसफॉर्च्यून। एंड व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज ओवरऑल ही हमारे मन की स्थिति टिपिंग पॉइंट पे चल रही है, बॉर्डर लाइन जिसको कहते हैं, जिसमें हम अवेयर नहीं है, क्योंकि ये रोज का गुस्सा, ये सब दर्द करके करके वी आर नॉट अवेयर के हम बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं।
1: लाइक दे कॉल जीरो टॉलरेंस।
0: हाँ, जीरो टॉलरेंस, तो बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं ना। अब बॉर्डर लाइन की स्थिति कई सालों तक चल सकती है एंड वी विल से इट्स फाइन, आई एम फाइन, माई लाइफ इज ओके, क्योंकि हमने ये बॉर्डर लाइन स्थिति को भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आज जो हमें बहुत सारी बातें ऐसे सुनने को मिलती है, जैसे कुछ दिन पहले आपने कहा 35-40 ईयर ओल्ड पर्सन, सीईओ ऑफ अ कंपनी, जो उनके बारे में अखबार में भी आया कि हेल्दी लाइफस्टाइल, डेली एक्सरसाइज, वेजिटेरियन, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नथिंग, लेकिन इतनी यंग एज में हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट एंड द पर्सन लीव्स।
1: पहले महाराष्ट्र, फिर ऑल इंडिया दिया, ऑल इंडिया देके सिंगापुर ऐड किया, फिर ऑल एशिया ऐड बना दिया, उतना उनके ऊपर।
0: लेकिन तो वो जीवन में क्या हो रहा था, अचीवमेंट्स वर वेरी गुड, लेकिन मन की स्थिति टिपिंग पॉइंट पर आ रहे थे, बॉर्डर लाइन पे आ रही थी। तो कोई परिस्थिति आई होगी, कोई बात आई होगी, चाहे वो बिजनेस में होगी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होगी, जिसका प्रेशर फिर वो मन नहीं ले पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे ऐसे वैसे ही अपने आप को बहुत संभाल के चल रहा है धीरे धीरे।
1: 99 है थोड़े मारे।
0: हाँ, तो यस, तो दिस वी हैव टू टेक केयर इज वन, कि हम पहले तो चेक करें कि क्या हम बॉर्डर लाइन पे चल रहे हैं या हम स्टेबल हैं बातों को फेस करने के लिए। एंड इम्पोर्टेंट ये कि कोई अगर बात आ जाती है जीवन में, उस बात को फेस करें, उस बात से इतना ना प्रभावित हो जाए या उस पर इतने इफेक्ट ना पड़ जाए अपने ऊपर कि उस बात का कॉन्सिक्वेंस और बातें क्रिएट होने लगे। एंड दैट्स व्हाई दैट लाइन इज सो पावरफुल, एक्सेप्टिंग द सिचुएशन इज द फर्स्ट स्टेप टू फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मिसफॉर्च्यून। अगर आपको बात को फेस करना है, फेस करना है मतलब इट्स ओके, आई है ना, हम इसको क्रॉस करेंगे, ये थॉट क्रिएट करने के लिए भी मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल।
1: यूजुअली जो चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और नहीं करते, उसको अवॉइड करते, फेस नहीं करते, हम भाग जाते हैं, इवेड करते हैं,
0: मोस्टली हम उस प्रॉब्लम के प्रश्नों में ही फंसे रह जाते हैं।
1: नहीं, बट उस चीज को फेस भी तो नहीं करना चाहते ना।
0: फेस तो अब करना ही पड़ेगा ना, अगर कोई बात आ गई है।
1: एक बार मैं इसको दोबारा पढ़ता
0: हूँ।
1: एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी मिसफॉर्च्यून.
0: मतलब बात जो आई है उसके कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले हैं. राइट, सपोज मुझे कोई बीमारी हो जाती आज, उसके कॉन्सिक्वेंसेज मेरे जीवन में आने वाले हैं, मुझे उसको क्रॉस करना है. जस्ट द अदर डे आई मेट समबडी इन द हॉस्पिटल, जस्ट एक दो घंटा पहले, वो यंग था 35-40 इयर्स का. उस भाई को पता चला कि उसको सेकेंड स्टेज कैंसर है. मेट इन अ वेरी बिग हॉस्पिटल इन दिल्ली, एंड तो उनकी वाइफ ने एकदम से कहा कि आप इनसे बात करो ना एक मिनट. तो वो भाई कहता है मैं नहीं इलाज कराऊंगा, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा इसका इलाज. मतलब इलाज क्यों नहीं करना है? कहते ये नहीं हो सकता है मुझे, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कोई एज है क्या? मतलब माइंड उस सिचुएशन को, उस बात को जब एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो आगे चलना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ओवरकम करना, ये लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ही उस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के बीच का हर्डल बन जाता है.
1: सिस्टर, जब मैं एक फिल्म कर रहा था लावारिस 1980s में, तो उसमें इस कैरेक्टर के दोनों हाथ कट जाते हैं और ये बिल्कुल पैसे नहीं है इसके पास. तो मैं सोचा था इसको कैसे प्रिपेयर करूं, तो प्रिपेरेशन के लिए मैं डॉक्टर के पास गया. मैंने बोला क्या होता है जब इंसान का हाथ कट जाता है, एक नहीं दोनों कट गए, तो मतलब खाएगा कैसे, खाना बनाएगा कैसे, कपड़े कैसे मतलब पहनेगा, और वो कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन कैसे बनाएगा, ऑल दैट. तो यू नो फर्स्ट लाइन ही सेड द डॉक्टर, ही सेड कि यू विल नॉट एक्सेप्ट कि तुम्हारे हाथ नहीं है. कोई चीज गिरी तो आप उठाने जाओगे, फिर बाद में देखोगे अरे मेरे पास तो हाथ नहीं है. कोई चीज आप दौड़ोगे वो चीज करने के लिए, बिकॉज एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, एंड इट विल टेक मंथ्स टाइम.
0: एंड जैसे जैसे एक्सेप्टेंस होगा तभी जीवन स्मूथ होगी ना उस कॉन्सिक्वेंस के साथ. ये कॉन्सिक्वेंस हुआ ना कि आपकी जीवन बदल गई, जैसे जैसे डिसेबिलिटी कि कुछ कट गया हाथ. इवन लोग ना, व्हेन समवन लीव्स द बॉडी फैमिली के अंदर,
1: मेरे साथ हुआ. आई नेवर एक्सेप्टेड माय फादर्स डेथ. वो कश्मीर में कहीं हुआ और मैंने देखा ही नहीं, तो बार बार दिखता था कि आ गए नहीं, माय फादर इज नॉट डेड इसका, और सारा टाइम उनका वो ड्रीम्स में भी आता रहता था मुझे.
0: दिस इज इट, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस अपने आप में उस प्रॉब्लम के अंदर एक और प्रॉब्लम बन जाती है. एंड इसीलिए उसमें लिखा है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप ओवरकम कैसे करेंगे उस मिसफॉर्च्यून को, जब तक आपने उस मिसफॉर्च्यून को, वर्ड मिसफॉर्च्यून है मतलब उस बात को, इट्स अ सिचुएशन एक्चुअली, मिसफॉर्च्यून इज बिकॉज वो मेरे लिए एक बड़ी बात आई है कोई. तो एक्सेप्ट, जीवन में क्या होता है, हम चाहते हैं कि जीवन की स्क्रिप्ट जैसे हमने प्लान की थी वैसे चलेगी. होता है ना नेचुरली, ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, फिर बड़े होंगे, फिर ये कॉलेज में जाएंगे, फिर ये कोर्स करेंगे, फिर बच्चे की शादी होगी, फिर बच्चे के बच्चे होंगे, वो हमारे साथ रहेंगे. मतलब आत्मा एक अपनी स्क्रिप्ट तो बना लेती है पहले से, स्क्रिप्ट के साथ बनाकर हम उसके साथ अटैच भी हो जाते हैं कि ऐसा ही होगा मेरा जीवन, यही सही है, ऐसा ही जीवन होना चाहिए. और एक क्षण में स्क्रिप्ट ही बदल जाती है पूरी. तो फॉर सम टाइम द सोल इज जस्ट नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट, एंड टिल इट डजंट एक्सेप्ट इट कांट मूव अहेड, एंड दैट लैक ऑफ एक्सेप्टेंस क्रिएट्स मोर पेन समटाइम्स देन द सिचुएशन इटसेल्फ. कई बार सिचुएशन का सोल्यूशन होता है, कई बार ये तो चलो ट्रेजेडी या कोई ऐसी बात है, कई बार ऐसा होता है कि हमने करियर सोचा था और हमने सोचा था यही बनेंगे, यही बनेंगे, यही बनेंगे, यही बनेंगे, लेकिन हम वो नहीं बन सकते, या हमें बस दो नंबर से एडमिशन नहीं मिला, या हमने जहां ब्रेक मिलना था वहां नहीं मिला, हमें वो चीज नहीं मिलती है. लेकिन कई बार हमारे को जीवन में उससे भी अच्छी चीज मिल सकती है. ये भी तो हो सकता है कि सपोज मैंने सोचा था डॉक्टरी बनना है, डॉक्टरी बनना है, डॉक्टरी बनना है, डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन हो सकता है कि हम कुछ ऐसा बन जाएंगे विच टर्न्स आउट टू बी बेटर फॉर मी देन बीइंग अ डॉक्टर.
1: मैं तो आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, करते करते करते आर्मी में मैंने खाली एक बात बोल दी कि सब पास हो गया था. सिर्फ ये पूछा कि आपको किसने भेजा तो मैंने बोला मेरे डैडी आर्मी में थे तो उन्होंने कहा तू भी ज्वाइन कर,
0: इट्स
1: नॉट योर चॉइस, ऐसा कुछ समझ लिया उन्होंने, मतलब यू फोर्स बाय योर पेरेंट्स,
0: राइट। तो
1: उन्होंने वहाँ एक पॉइंट पे फेल किया था, फिर मैं एक्टर बन गया।
0: लेकिन जब ऐसे हम एक पॉइंट पे फेल होते हैं, कई बार ये फेलियर को फेस करना डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं रिजेक्ट हो गया, अब मेरा क्या होगा, मैंने तो यही बनना था, आई हैड टू बी दिस ओनली, मेरी लाइफ की स्क्रिप्ट ऐसी ही होनी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज क्या बनना चाहते थे। अगर हम नहीं बन पाते या वो सिचुएशन वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं, हम अगर उस समय स्टेबल रहेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो शायद हम अपनी ऐसी डेस्टिनी क्रिएट करेंगे जो हमारी प्लानिंग से भी बेटर होने वाली है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि मन की स्थिति परिस्थितियां क्रिएट करेगी, मन की स्थिति डेस्टिनी क्रिएट करेगी। मैं एक फेलियर से अगर डिजेक्ट हो जाऊं, होपलेस सा फील करूं, या तो एकदम डिप्रेशन में ही चली जाऊं, तो मेरा भविष्य अलग होगा। और अगर मैं उस वो बात जो आई है, जो उस दिन आपने जो पढ़ा लास्ट टाइम, आपने कहा एक्सेप्टेड एज इफ इट वॉज योर चॉइस, कि हम चाहते थे कि जीवन ऐसी हो लेकिन अचानक ऐसी हो गई, अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इफ दिस वॉज माई चॉइस, हमने तो ये वाली चॉइस की थी, वो नहीं मिला, कुछ और हो गया, लेकिन जो वो दूसरी चीज हुई, अगर हम उसको भी उतने प्यार से एक्सेप्ट करते हैं एज इफ दिस वॉज माई चॉइस, तो जीवन में मिरेकल्स क्रिएट हो जाएंगे।
1: ये नहीं करते ना, इसलिए तो बार बार बोलते हैं ना कि आई विश आई हैड नॉट लिसन टू माय पेरेंट्स, मैं भी आर्टिस्ट बन जाती, कि जो मैं प्रेजेंट सिचुएशन में हूँ इट्स नॉट गुड, आई विश आई वाज देयर,
0: राइट। एंड द सोल कैन कैरी दिस पेन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, अगेन फॉर वन बर्थ और फॉर मेनी मेनी बर्थ्स। हम हमेशा सिचुएशंस में ये चाहते हैं, या सिचुएशन जब कोई हमारे अनुसार नहीं आती तो हम कहते हैं इट शुड हैव बीन लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, इट शुड हैव बीन लाइक दिस, इफ इट वुड हैव बीन लाइक दिस, नो दैट्स हाउ आवर वोकैबुलरी गोज, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होता तो। लेकिन अगर जैसा है जो आई हमारे सामने बात, अगर हम कहें ऐसा ही होना था, ये ही सही है, अब इसके साथ आगे क्या करना है, अगर वो एटीट्यूड हम डेवलप करते हैं, तो जो बात आई है ना सामने, उसमें भी कोई ना कोई कल्याण निकल कर आ जाएगा।
1: मुश्किल है सर आज की एक्सेप्टेंस करना। कितने लोग एक्टर बनते बॉम्बे आते हैं और फेल होके चले जाते हैं, कितने सालों साल उन लोग वो लोग कपड़े ऐसे पहनते हैं, फिल्में देखते हैं,
0: हाँ, लेकिन उसमें नुकसान हुआ ना, उसमें आत्मा के भविष्य में कितना नुकसान हुआ।
1: नहीं, रियल लाइफ में प्रेजेंट में भी जो फिल्म आई वैसे कपड़े पहनेंगे,
0: आप रिजेक्टेड है ना, अंदर कितनी आत्मा दुखी रहेगी,
1: बहुत दुखी,
0: असंतुष्ट रहेगी, और असंतुष्ट रहने के कारण अब करियर तो कोई और चूज करेंगे, वी विल डू समथिंग एल्स, ऐसा तो नहीं है यहाँ फेल हुए, करना तो हमें कुछ है, लेकिन असंतुष्ट होकर करेंगे, दुखी होकर करेंगे, करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ रहा है उस एटीट्यूड से करेंगे, तो उस फेज को ना एंजॉय करेंगे और ना उसमें मिरेकल्स क्रिएट कर पाएंगे। और यही अगर वो दूसरी अपॉर्चुनिटी जो सामने आई है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि शायद मेरा ये नहीं होना था, ये होना था मेरा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर मी, स्विच ऑफ फ्रॉम दैट वन, फिनिश्ड फ्रॉम दैट वन, ये है एक्सेप्टेंस। तो
1: जो
0: फिर हम
1: है, जहां हूं, जैसे हूं, आई एम supposed to be happy.
0: I'm not supposed to be happy. This is the best for me. What has happened for me is the best for me.
1: अभी तक तो एक्सेप्टेंस करना ही मुश्किल था, अब आप कह रहे हैं कि जो आपके मुरली में आता है कि जो भी हुआ कल्याणकारी हुआ।
0: आप देखो, हर घर में एक गीता सार टंगा होता है, उस पे लिखा होता है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। टंगा हर एक के घर में हुआ है, पढ़ते भी रोज है, लेकिन फिर भी अपने जीवन की परिस्थितियां अच्छी नहीं लगती है। उस लाइन का मीनिंग होगा ना कुछ, कि अगर जीवन को उस मंत्र के साथ चलेंगे कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा।
1: अच्छा, इसलिए वो लास्ट जो मैंने पढ़ा था उसमें वो कह रहा था, इफ यू एक्सेप्ट कि जो भी हो रहा है मेरे साथ मैंने किया है।

0: then it will create miraculous.
1: It will miracles because your mind accepts the situation, so your mind becomes silent. आपके मन को वो परिस्थिति सही लगने लगती है, तो आप परिस्थिति में एक विक्टिम नहीं, परिस्थिति के मास्टर बन जाते हैं.
0: You winning?
1: जैसे आपने कहा एक सेकंड करियर हमने लिया, सपोज ये बनना चाहते थे, ये नहीं बने, हम सेकंड करियर में गए. अगर हम उस सेकंड करियर में एक विक्टिम की तरह जाते हैं, बेचारा मैं, वो नहीं मिला तो अब मैं ये कर रहा हूँ, मजबूरी से कर रहा हूँ, ये विक्टिम फीलिंग है ना. करने का मन नहीं है लेकिन अब कमाना तो है इसीलिए ये कर रहा हूँ. करना तो लेकिन वो ही चाहता था. खुश मैं तब होता अगर मैं वो करता. इसमें खुशी नहीं है मेरे जीवन में लेकिन कमाना है परिवार के लिए. ये एटीट्यूड
0: फ्रस्ट्रेशन,
1: ये एटीट्यूड से अगर हम चलेंगे एक तो खुश नहीं रहेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उस सेकेंड करियर में जो हम मिरेकल्स क्रिएट कर सकते थे वो हम नहीं कर पाएंगे. लेकिन यही अगर हम एक लाइन लेते हैं, परमात्मा हमें मुरली में कितनी पावरफुल लाइन देते हैं, ड्रामा में हर सीन, इस वर्ल्ड ड्रामा में, आपके जीवन के ड्रामा में हर सीन जो आपके लिए हो रही है वो आपके लिए कल्याणकारी है. इसको मंत्र की तरह पकड़ के हम रखते हैं और हम देखते हैं पर्सनली कि इतने सालों में वो लाइन बार बार बार बार बार बार सुन के पहले शुरू में क्वेश्चन मार्क होता था कि कैसे होगा ऐसे, लेकिन फिर जब भी सीन्स आए हर सीन में ये अनुभव हो गया कि अगर सीन अनप्लेजेंट भी थी ना उस समय, अगर हम स्टेबल रहते थोड़ी देर के बाद, विच कुड बी थोड़े दिन थोड़े साल, ये पता चलता है कि वो सीन एक्चुअली मेरे लिए कल्याणकारी थी. और जब दो चार बार ये अनुभव हो जाता है ना, फिर उसके बाद तो वर्स्ट सिचुएशन भी आ जाए, ये पक्का हो गया है कि ड्रामा में ये सीन भी मेरे लिए कल्याणकारी ही है. एवरी सीन इन दिस ड्रामा इज एक्यूरेट एंड बेनिफिशियल. एक्यूरेट बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू माई कर्म, तो वो एक्यूरेट है, गलत तो वो हो ही नहीं सकती, और वो मेरे लिए बेनिफिशियल है. कई बार कोई सीन अगर बाह्य रूप से बेनिफिशियल नहीं लगती कि मेरे साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं आत्मा स्टेबिलिटी से उसको क्रॉस करती हूँ तो उसमें ये कल्याण निकल कर आता है कि आई कम आउट स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ दैट सिचुएशन. हमारी आंतरिक शक्ति उस परिस्थिति के आने की वजह से बढ़ जाती है. हमें पता ही नहीं था हमारे अंदर ये पावर है, हमें पता ही नहीं था हमारे अंदर ये क्वालिटी है.
0: हर्डल्स के ऊपर जंप करना सिखाते हैं ना,
1: तो हर्डल जब तक आएगा नहीं तो हमारी स्किल, हमारा पावर ये बढ़ेगी कैसे. तो अगर और कोई कल्याण नहीं निकला, अगर बाहर कोई कल्याण नहीं दिखा उस सिचुएशन में, ये कल्याण तो निश्चित है,
0: स्ट्रेंथ,
1: कि वी विल कम आउट पावरफुल आउट ऑफ दिस सिचुएशन. कहते नहीं ये जीवन का अनुभव मुझे सिखा कर गया है, मुझे स्ट्रांग बना कर गया, कहते हैं ना. लेकिन स्ट्रांग बनकर कौन निकलेगा उससे बाहर. कोई व्यक्ति सिचुएशन से वीक होकर भी बाहर निकल सकता है, लेकिन स्ट्रांग होकर तब निकलेंगे उस सिचुएशन से अगर हमारा ये पक्का रहे कि ड्रामा की ये सीन मेरे लिए कल्याणकारी है. इवन अगर मेरे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, अगर मेरी कोई चीज छूट रही है, कोई अपॉर्चुनिटी छूट रही है, अगर उस समय स्थिति को अच्छा रखेंगे ना तो हमेशा ये याद रहेगा, ये अपॉर्चुनिटी इसलिए छूटी थी, ये चीज इसलिए छूटी थी क्योंकि इससे कई गुना ज्यादा बेटर, मेरे लिए बेनिफिशियल.
0: Isn't this a thought of a loser?
1: छूट गई है, what will you do? वो चीज छूट गई है. A loser is the one who will fail after that, जब वो चीज छूट गई. And a winner is the one,
0: we'll try
1: जो एक चीज छूटेगी तो वो दूसरी चीज के लिए रेडी है. वो रेडी है दूसरे को एम्ब्रेस करने के लिए, रेडी है दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए, रेडी है दूसरे चैलेंज को क्रॉस करने के लिए, रेडी है. लेकिन लूजर तो वो जिसकी एक चीज छूटी और वो हताश होकर फिर ट्राई ही नहीं कर पाया. आज कोई बीमारी भी अगर होती है तो डॉक्टर क्या कहेगा, आपकी विल पावर से आप इसको क्रॉस कर लेंगे, आप बस पॉजिटिव रहना. क्यों हर एक डॉक्टर ये कह रहा है आज सबको, आप बस पॉजिटिव रहना. क्योंकि जब बीमारी आती है तो मन पहले कहता है मेरे को क्या हो गया, मेरे को ऐसे कैसे हो गया, अब मेरा आगे क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इसका

0: ये सारी चीजें हमारी उस बीमारी को एग्रेवेट कर देंगी और कुछ नहीं तो हमारी हीलिंग को स्लो डाउन कर देंगे। एक भाई आते हैं हमारे पास सेंटर पर, उन्होंने जीवन का एक अनुभव बहुत प्यारा सुनाया। व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 35 एंड 2-3 साल हुए थे उनको राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए, तो उनको टर्मिनल 4th stage ऑफ कैंसर डायग्नोज हुआ। वेरी कॉम्प्लिकेटेड इट वॉज। एडमिट हुए, कीमोथेरेपी चल रही है, इलाज चल रहा है। कहते मेरा माइंड स्वीकार ही नहीं कर पाया कि मुझे ये क्या हुआ है। मेरी लाइफस्टाइल इतनी हेल्दी है, सात्विक जीवन है, मेडिटेशन मैं रोज करता हूँ, मेरे को ऐसा क्यों हुआ। मतलब इट वॉज अ हाइट ऑफ अनएक्सेप्टेंस, कर ही नहीं पा रहा था। कहता है वो मेडिसिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर रही थी, डॉक्टर कर जा रहे हैं, मेरी तबीयत डे बाय डे और खराब होती जा रही है और खराब होती जा रही है। ही सेड द डॉक्टर कुडंट अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर कुछ भी परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है इतनी दवाई का। माय माइंड वाज नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रीटमेंट, ओनली फुले ही नहीं रहा था उस चीज को। तो माइंड ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता तो बॉडी भी नहीं एक्सेप्ट कर रही थी। और एक दिन वो कहते हैं मैं रात को ऐसे जागा था, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं खाना नहीं खाता था, तो मुझे ऐसे ही जैसे परमात्मा का एक विजन और एक आवाज, जैसे एक टचिंग हुई। तो परमात्मा ने कहा कि ये सीन तुम्हारे जीवन में इसलिए आया है क्योंकि इससे तुमने अपने जीवन में और लाखों के जीवन में हीलिंग करनी है। स्ट्रॉन्ग लाइक दैट टचिंग। कहता है दैट डे एवरीथिंग चेंज्ड एंड उस दिन से वो ही दवाई वो ही दवाई जो कल तक असर नहीं कर रही थी, साइड इफेक्ट्स आ रहे थे, रिएक्शन आ रहे थे, खाना अंदर नहीं जा रहा था, नेक्स्ट डे से वो ही दवाई असर करने लग गई। आज तो खैर वो आत्मा अनेक अनेक आत्माओं की वर्ल्ड ट्रैवल करके मेडिटेशन और पॉजिटिव थिंकिंग हीलिंग में कैसे हेल्प करती है वो उसका रोल बन गया है इस जीवन के अंदर। लेकिन पावर ऑफ एक्सेप्टेंस कि जब तक मन क्वेश्चंस में रहेगा न मन हील होगा ना शरीर हील होगा। आई हैव चोजन दिस एंड आई एक्सेप्ट दिस नाउ, वॉट डू आई हैव टू डू नेक्स्ट। सोल्यूशन पर फोकस करें तो वो कॉन्सिक्वेंस जो था उसका फर्स्ट स्टेप जो ओवरकम करना था वो हमारा हो जाता है फिर।
1: थैंक यू सो मच सिस्टर।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू।
2: एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इज द फर्स्ट स्टेप to overcoming the consequences of any misfortune. Most situations will have an effect on our normal functioning of life, and we will need to adapt ourselves to that change. The first step to do that is to accept the situations, which means no questions. Why me? Why not others? Who is to blame? What have I done to deserve this? A questioning mind creates fear and anxiety, which will further impact our mental health, physical health, and relationships. Acceptance silences the questioning mind. We start to see solutions and new possibilities in the stillness of the mind. Everything happening to us is accurate and beneficial. It is accurate because it is according to our karmic patterns. There will definitely be benefit in it, which will get revealed later. And even if there is no outward benefit, we have come out of the situation emotionally empowered is the inner benefit.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 55 9 660.

0: नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लिनिया इज जक्स्टापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: वाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: हाउ क्यूट।

0: Goalie number 4, 4, 20.
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldi?
2: No! Anthony Gonsalves!
0: Oh, yes! Anthony Gonsalves!
3: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
4: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
3: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खाप और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: अजी सुनते हो?
3: हाँ सुनी तो रहा हूँ.
2: क्या सुन रहे हो?
3: रेडिओ पुणेरी आवाज.
2: ओ रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.
4: गाँव की मिट्टी हो या शहर की गलियाँ, हम सब के दिल में भारत है. उत्तर हो या दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, हर संस्कृति, हर भाषा, हर मन में भारत है. तिरंगे के रंगों से निकलते हैं तीन रंग, पर हर प्रदेश के अलग और अनोखे रंग इसी तिरंगे में समाये हैं. उन्हीं में से एक है समुद्र की ठंडक और सुंदर प्रकृति के दृश्य लिए भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा. चलिए जानते हैं गोवा को करीब से. पुणेरी आवाज में 107.8. खुश रहो, खुशियाँ बांटो. गोवा भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट पर स्थित है. गोवा राज्य उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व व दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है. गोवा की राजधानी पणजी है. गोवा का क्षेत्रफल 3,702 किलोमीटर वर्ग है. ये समुद्र तट की ओर एक द्वीप युक्त शहर है, जो मुंबई से 400 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में मुख्य भूमि में स्थित है. गोवा क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा राज्य है. पूरी दुनिया में गोवा अपने खूबसूरत समुद्र के किनारों और मशहूर स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है. इसके उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है, जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है. इसके दक्षिण में कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ जिला, पूर्व में पश्चिम घाट और पश्चिम में अरब सागर है. पणजी, मडगांव, बास्को, मापुसा तथा पोंडा यहाँ के प्रमुख शहर हैं.

चलिए अब चलते हैं जानने गोवा के इतिहास को। गोवा प्राचीन काल में गोमांचल, गोपकट्टनम, गोपपुरी और गोमांतक आदि कई नामों से विख्यात रहा है। इस प्रदेश की लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है। गोवा पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित भूतपूर्व पुर्तगाली बस्ती था, जो 1961 से भारत का अभिन्न अंग बन गया। गोवा का प्राचीन हिंदू शहर, जिसके अवशेष का एक अंश ही बचा हुआ है, उसका निर्माण द्वीप के सुदूर दक्षिण बिंदु पर हुआ था और ये आरंभिक हिंदू दंत कथाओं और इतिहास में प्रसिद्ध था। पुराणों और अभिलेखों में इसका नाम गोवे, गोवपुरी व गोमत के रूप में आता है। मध्यकालीन अरबी भूगोलविद इसे सीतांबूर या संदाबूर के नाम से और पुर्तगाली वेल गोवा के नाम से जानते हैं। दूसरी शताब्दी से 1312 तक गोवा पर कदंब वंश और 1312 से 1367 तक दक्कन के मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन रहा। इसके बाद गोवा पर विजयनगर के हिंदू साम्राज्य का कब्जा हो गया और बाद में बहमानी वंश ने गोवा को जीत लिया, जिन्होंने 1440 में पुराने गोवा की स्थापना की। 1482 के बाद बहमानी राज्य के विभाजन के बाद गोवा बीजपुर के मुस्लिम शासक यूसुफ आदिल खां के अधीन आ गया, जो पुर्तगालियों के भारत आगमन के समय इसके शासक थे। इस शहर पर मार्च 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों का आक्रमण हुआ। गोवा बिना किसी संघर्ष के पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया और अल्फांसो ने एक विजेता की तरह इस शहर में प्रवेश किया। 3 महीने के बाद यूसुफ आदिल खां 60,000 की सेना लेकर वापस लौटे और बंदरगाह के मार्ग पर कब्जा कर लिया और पुर्तगालियों को मई से अगस्त तक अपने जहाजों पर रुकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद ही मॉनसून की समाप्ति के कारण वे वापस समुद्र में पहुंच सके। नवंबर में अल्फांसो ज्यादा बड़ी सेना के साथ लौटे और उन्होंने शहर पर पुनः कब्जा कर लिया। गोवा पुर्तगालियों का एशिया में पहला क्षेत्रीय कब्जा था। अल्फांसो और उनके उत्तर अधिकारियों ने द्वीप के 30 ग्रामीण समुदाय के संविधान रीति रिवाजों में लगभग सती प्रथा के अलावा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। वहां सती प्रथा को उन्होंने समाप्त कर दिया। गोवा पूर्व दिशा में समूचे पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बन गया। इसे लिस्बन के समान नागरिक अधिकार दिए गए और 1575 से 1600 के बीच ये उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। इसके बाद भारतीय सेना में डच आगमन के साथ गोवा का पतन होने लगा। 1603 और 1639 में डच बेड़े के द्वारा घेर लिया गया, हालांकि इस पर कभी कब्जा नहीं हो सका और 1635 में एक महामारी के कारण तबाह हो गया। 1683 में मुगल सेना ने इसे मराठा आक्रमणकारियों के कब्जे में जाने से बचाया और 1739 में पूरे क्षेत्र पर इन्हीं आक्रमणकारियों का हमला हुआ और नए वाइसरॉय के बेड़े के अनुपेक्षित आगमन के कारण ही बच सका। प्रशासन के मुख्यालय को पहले मर्मगांव और फिर 1759 में पंजिम, जो अब पणजी है, ले जाया गया। गोवा में स्थानीय निवासियों के पुराने गोवा से नए गोवा के प्रवास का मुख्य कारण हैजा नामक महामारी थी। 19वीं सदी में नेपोलियन के पुर्तगाल पर कब्जा के कारण 18

मार्च से मई 1896 में गवर्नर के अधिकारों का प्रयोग किया। 1948 और 1949 में भारत के गोवा पर दावे के बाद पुर्तगाल पर गोवा और इस उपमहाद्वीप में उसके अन्य संपत्तियों को छोड़ने का दबाव बढ़ता गया। 1954 के मध्य में गोवा के राष्ट्रवादियों ने दादरा तथा नगर हवेली की बस्तियों पर कब्जा कर लिया और भारत समर्थक प्रशासन की स्थापना की। एक अन्य संकट की घड़ी तब आई जब भारत के सत्याग्रहियों अर्थात अहिंसक प्रदर्शनकारियों ने गोवा में घुसने का प्रयास किया। पहले तो सत्याग्रहियों को वापस भेज दिया गया, लेकिन बाद में जब बहुत ज्यादा संख्या में लोगों ने सीमा पार करने का प्रयत्न किया तो पुर्तगाली अधिकारियों को बल का प्रयोग करना पड़ा और उस समय कई मौतें हुईं। इससे 18 अगस्त 1955 को पुर्तगाल और भारत के बीच राजनीतिक संबंध टूट गए। भारत और पुर्तगाल के बीच तनाव 18 सितंबर 1961 को अपने चरम पर पहुंचा और नौसेना एवं वायुसेना की मदद से भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीप पर कब्जा कर लिया। 1962 में संविधान संशोधन द्वारा पुर्तगाली भारत को भारतीय गणराज्य में शामिल कर लिया गया।

आइए अब देखते हैं गोवा को एक भूगोलिक नजर से। 105 किलोमीटर समुद्र तट वाले गोवा में रेतीले तट, मुहाने व अंतरीप हैं। इसके भीतरी हिस्से में निचले पठार और लगभग 1220 मीटर ऊंचे पश्चिमी घाटों का एक हिस्सा है। गोवा की दो प्रमुख नदियाँ मांडोवी व जुआरी के मुहाने में गोवा का द्वीप स्थित है। इस त्रिकोणीय द्वीप का शीर्ष अंतरीप एक चट्टानी मुहान है, जिस पर दो लंगरगाह हैं। यहाँ पर तीन शहर मर्मगांव, मडगांव और पणजी हैं। पुराने गोवा शहर का ज्यादातर हिस्सा अब ध्वस्त हो चुका है, लेकिन गोवा के शेष भारत में विलय के बाद से ही इसकी अच्छी देखरेख की जाती रही है। पुराने गोवा का ही एक उपनगर पणजी भी मांडोवी के पाए तट पर स्थित है। ये एक सुनियोजित शहर है और भव्य चर्चों, मुख्य पादरी के महल, सचिवालय, बाजार और

कोंकण रेल मार्ग पर स्थित रेलवे स्टेशन से लगे एक विशाल बस अड्डे से युक्त है। पुराने गोवा में पाम जीसस का विशाल गिरजाघर, जो 16वीं सदी में निर्मित हुआ था और एक विश्व स्मारक स्थित है, जिसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। यहाँ पर 16वीं शताब्दी में स्थापित धर्मपीठ भी है। अब जानते हैं भारत के प्रमुख क्षेत्र यानी कृषि के बारे में। गोवा के कृषि उत्पादों में मुख्य खाद्य फसल चावल है। इसके अतिरिक्त दालें, रागी और अन्य खाद्य फसलें भी उगाई जाती हैं। नारियल, काजू, सुपारी तथा गन्ने जैसी नकदी फसलों के साथ साथ यहां अनानास, आम और केला भी होता है। ये फसलें गोवा के जीवन व जीविका के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सौगान, बांस और काजू यहाँ के महत्वपूर्ण आर्थिक उत्पाद हैं। गोवा में मत्स्याकी का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि गोवा की 90% जनसंख्या मत्स्य उद्योग में लगी है। 1,00,000 लोग लगभग मत्स्य उद्योग में कार्यरत हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं एक अनूठी संस्कृति से अवगत कराने, यानी कि गोवा की संस्कृति। सुरभ्य सागर तट पर बसा गोवा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। आजादी से पहले ये पुर्तगीज व फ्रांसीसियों का उपनिवेश रह चुका है। इस वजह से आज भी यहाँ का रहन सहन, भाषा व खान पान पर पश्चिमी संस्कृति का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। 1542 में यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का आगमन हुआ। उन्होंने यहाँ रहकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। गोवा में 80% लोग ईसाई हैं। गोवा में समुद्री भोजन लोकप्रिय है। यहाँ मछली से बने व्यंजन प्रसिद्ध हैं। गोवा में व्यापक रूप से नारियल और नारियल तेल, मिर्च, मसाले, खाद्य सिरका के साथ खाना पकाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। मिठाई के रूप में यहाँ मिठाइयों के बजाय ज्यादातर चॉकलेट, केक, पेस्ट्री जैसे यूरोपीय व्यंजन प्रचलित हैं। भारत में जहाँ क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है, वहीं गोवा का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। गोवा में कई लोकप्रिय फुटबॉल क्लब भी स्थित हैं। फुटबॉल के अलावा गोवा के बहुत से खिलाड़ी हॉकी में भी दिलचस्पी रखते हैं। बात करें भाषा की, तो गोवा की मुख्य भाषाएं कोंकणी और मराठी है। कोंकणी गोवा की राजभाषा है। गोवा में सबसे ज्यादा कोंकणी ही बोली जाती है। कोंकणी गोवा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग, केरल के कुछ क्षेत्रों में भी बोली जाती है। भाषाई तौर पर ये आर्य भाषा परिवार से संबंधित है और मराठी से इसका काफी निकट संबंध है। इसके अलावा यहाँ मराठी, कन्नड़, उर्दू और हिंदी भी बोली जाती है। गोवा के कुछ पारंपरिक नृत्य हैं देखनी, फुगड़ी, पूरी दिनों और दशावतारा तथा मांडू और दुलपोत यहाँ के लोकप्रिय संगीत शैली हैं।

गोवा एक छोटा राज्य जरूर है, पर यहाँ देशी और विदेशी पर्यटकों का आना जाना बहुत संख्या में होता है। तो चलिए आपको भ्रमण करवाते हैं सुंदर गोवा का। गोवा को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। गोवा की मनमोहक सुंदरता और गोवा के मंदिरों, गिरजाघरों और पुराने निवास संस्थान की वास्तु कलात्मक भव्यता गोवा को दुनिया भर में आने वाले पर्यटकों का एक आकर्षक केंद्र बनाती है। गोवा की प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यहाँ के प्रसिद्ध तट और सूर्य की धूप पर्यटकों को गोवा की ओर खींचती है। यहाँ का शांति प्रिय वातावरण, अतिथि सत्कार, दोस्ताना व्यवहार के कारण लोग अधिक आकर्षित होते हैं। गोवा में इतने अधिक समुद्र तट हैं कि पर्यटकों को गोवा के सभी तटों को देखने में एक महीने से भी अधिक वक्त लग जाता है। गोवा के इन समुद्र तटों पर आप समुद्र की लहरों पर वाटर सर्फिंग, पैरासेलिंग, वाटर स्कीइंग, स्कूबा डाइविंग और वाटर स्कूटर आदि का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख तट हैं: अंगूठा तट, अरम्बोल तट, अंजुना तट, बागा तट, बोगमोला तट, कोलवा तट आदि। देखने के लिए यहाँ वन्य जीवन अभयारण्य भी हैं, जैसे कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य, भगवान महावीर वन्य जीवन अभयारण्य और अन्य। अगर आप धार्मिक स्थल जाना चाहते हैं तो गोवा में आपके लिए बहुत कुछ है, जैसे कि मंगेश संस्थान मंदिर, महालसा देवी मंदिर, नागेश मंदिर, शांता दुर्ग मंदिर जो कि एक बहुत ही भव्य और प्राचीन मंदिर है। इसके अतिरिक्त यहाँ श्री मल्लिका अर्जुन मंदिर, दामोदर मंदिर आदि भी स्थित हैं। गोवा के किलों का भी बहुत महत्व है। यहाँ भागवत का किला है जो पुर्तगालियों ने शत्रुओं से रक्षा अर्थ वारदेज तालुका में मांडोवी नदी जहाँ समुद्र से संगम बनाती है वहाँ बनवाया था। इसके अलावा यहाँ कामसुक का किला है जो बागाटोर समुद्र तट पर स्थित है। और भी कई किले गोवा की शान बढ़ाते यहाँ मौजूद हैं। गोवा आकर अगर आपने यहाँ के प्राचीन और विशाल गिरजाघरों के दर्शन नहीं किए तो आपका सफर अधूरा है। 16वीं शताब्दी में पुराने गोवा में गिरजाघर निर्मित हुए। आज भी ये गिरजाघर पणजी पोंडा मुख्य मार्ग के किनारे शान से खड़े हैं। इसी स्थान पर एक और पुर्तगाल के महान कवि तुइशत कामोइश का विशाल पुतला खड़ा है, तो इसकी दूसरी ओर महात्मा गांधी की भव्य प्रतिमा है। पुराने गोवा में सर्वाधिक विशाल और आकर्षक गिरजाघर है, जैसे कि कैथेड्रल गिरजाघर, संत फ्रांसिस आसीसी गिरजाघर आदि। गोवा में क्रिसमस और नया साल बहुत खूब मनाने, इसीलिए यहाँ नया साल मनाने के लिए जगह जगह से लोग आते हैं और इस समय यहाँ की रौनक देखने लायक ही होती है। इसके अलावा गोवा में गणेश चतुर्थी, गुड़ी पड़वा, दिवाली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन, रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी भी बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। गोवा सचमुच एक अनोखा स्थान है जहाँ जितने बड़े समुद्र तट हैं, उतना ही ज्यादा अपनापन भी। प्रकृति के साथ अपने अनूठे अंदाज के लिए गोवा हमेशा से जाना जाता है। इसी के साथ हमारा और आपका ये सफर यहीं पूरा हुआ। 29 राज्य, एक राष्ट्र, एक कहानी। जय हिंद। पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहां नहीं कर सकते। क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में। तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी के पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम खाबों का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, खाबों का सफर इस कार्यक्रम में हम लोग ओल्ड फिल्मी गीत आपको सुनाते हैं और काफी प्यारे प्यारे गीत आप सुनते हैं और आपका जो प्यार है मैसेज के जरिए हम सभी तक पहुंचता है तो हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। तो आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज फिर से हम लोग नैना और मैं आपके साथ हूँ और नैना के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शन है के अक्षर वाला। तो आइए आज हम लोग के अक्षर के बहुत ही खूबसूरत गाने सुनेंगे। तो आप सभी की तरफ से नैना का बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: नैना कैसे फील कर रहे हैं आप?
2: और अच्छा फील कर रही हूँ, फिर से मौका मिला।
1: चलिए आप मौका लेते रहिए और चौका मारते रहिए अपने गानों का। हमें भी अच्छा लगता है और हमारे श्रोताओं को भी काफी अच्छा लगता है। काफी लोगों ने मैसेज करके बताया कि नैना की आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाती हैं। तो चलिए हमें भी अच्छा लगता है कि आप बहुत ही अच्छा गाते हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम के शुरुआत में मैं चाहूंगा कि हमारे सभी श्रोताओं को कौन सा एक गीत आप सुनाने वाले हैं जो के अक्षर से शुरू होता है।
2: आज मैं पहला गीत लेके आई हूँ रफी साहब का, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार।
1: ओके, लेकिन लोग तो प्यार कर रहे हैं।
2: वो गीत के ऐसे फिल्म के हिसाब से शब्द है।
1: जी। और बताइए इसके भाव क्या हैं और एक थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे श्रोताओं को ताकि गीत का भाव पता चले।
2: जी, इस गीत का सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, गमगीन है। इसमें उस प्रेमी के दिल का दुख है जो कि प्रेम में असफल हो गया है, अनसक्सेसफुल हो गया है। वो जिसे चाहता था उसे लेने के लिए किसी और की बारात आ गई है, यानी उसकी प्रिया की शादी आज किसी और से होने वाली है। लव स्टोरी का आज एक अनसक्सेसफुल दी एंड होने वाला है। तो उसी गम में वो सबको कह रहा है कि मत करो प्यार।
1: चलिए बताइए इस गीत को थोड़ा सा गुनगुना के हमारे श्रोताओं को।
2: जी,

चलिए श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत गीत है, लेकिन सैड सॉन्ग है, इसीलिए थोड़ा सा फील हो रहा है मुझे भी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गीत है ये। भरत व्यास का लिखा है, मोहम्मद रफी साहब ने इसे अपनी खूबसूरत आवाज से गाया है और वसंत देसाई साहब ने इसे संगीत से संवारा था। फिल्म थी गूंज उठी शहनाई, 1959 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और विजय भट्टा द्वारा ये फिल्म निर्देशित किया गया था। राजकुमार, अनिता गुहा, इन सभी ने काम किया था। चलिए, उस समय जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो रिलीज होने के साथ साथ इस फिल्म ने 18 मिलियन इंडियन रुपीस का इन्होंने बिजनेस किया था। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय अगर इतना अच्छा कमाई किया हो तो आज का बहुत ही बड़ा बजट वाला, बड़ा बिजनेस करने वाली ये फिल्म थी। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं नैना, अब अगला गाना कौन सा है आपके पिटारे में?
1: अगला गाना है कहना है आज तुमसे ये पहली बार। ये गीत मुझे बहुत बहुत पसंद है और हमारी जनरेशन के यानी कि यंग जनरेशन के लोगों को भी बहुत पसंद है। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर सॉन्ग रहा है। मैं समझती हूँ कि ये एक एवरग्रीन सॉन्ग है क्योंकि इसका जो कॉम्पोजिशन है वो लाजवाब है। इसमें जो म्यूज़िक दिया गया है वो बेहतरीन म्यूज़िक दिया गया है और ऊपर से एवरग्रीन किशोर दा ने इसे अपनी आवाज़ दी है। इसकी जो मूवी थी सुपर हिट हुई थी पड़ोसन, मैंने भी देखी है। इसमें एक सीधा साधा युवक अपने दोस्त की मदद से एक फैशनेबल मॉडर्न युवती के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा है। और खास बात यह है कि वो इसे खुद गा नहीं रहा है बल्कि ये उसके दोस्त यानी खुद किशोर कुमार गा रहे हैं और वो केवल लिपसिंग कर रहा है।
0: तो नैना, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। गीतकार राजेंद्र कृष्ण का लिखा, किशोर दा का गाया हुआ, राहुल देव बर्मन का बहुत ही खूबसूरत संगीत है और पड़ोसन 1968 में रिलीज हुई थी। और ये फिल्म जो है अपने आप में बहुत ही खास था और लोगों ने इसे बहुत ही एंजॉय किया और बहुत ही क्या बोलते हैं कॉमेडी फिल्म थी। इस कॉमेडी फिल्म में किशोर दा ने चार चांद लगा दिया अपने एक्टिंग के जरिए, अपने गानों के जरिए। तो मैं चाहूंगा कि इसको एक बार आप गुनगुना दीजिए।
1: जी

0: नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने अभी सुना, किशोर दा, सायरा बानो, सुनील दत्त और ओम प्रकाश पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना, और पड़ोसन 1968 का ये गाना था जो आपने अभी सुना। ज्योति स्वरूप के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी और बहुत हिट थी। लोगों ने इसे उस समय काफी पसंद किया और लोगों ने इस गाने को, इनके गाने, इनके एक्शंस, इसमें कॉमेडी जो थी वो भी बहुत ही मजेदार थी। आशा करता हूँ आपने देखा होगा तो आपको याद आ गया होगा। तो चलिए, आपकी इसी तरह चेहरे पे खुशी की फुहार बनी रहे, आगे बढ़ते हैं और थोड़ी आपकी खुशी बढ़ा देते हैं। नैना, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छी हूँ।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन सा गीत है आपके पास अभी?
1: अगला गीत है लता जी का, खाई है ये हमने कसम। ये बहुत ही मधुर गीत है। इसमें एक प्रेमी और प्रेमिका जीवन भर साथ रहने की कसम खा रहे हैं।
0: बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया है। तलाश 1969 में एक फिल्म आई थी। ये एक बहुत ही अच्छा फिल्म है जिसमें एक महत्वाकांक्षी युवक अपनी विधवा माँ के साथ रहता है। वो जहाँ काम करता है जल्दी वहाँ भागीदार बन जाता है। तो इस तरह का ये कहानी इसमें बताया गया है। और जो गीत आपने अभी याद कराया नैना, बहुत ही सुंदर गीत है और क्लासिकल सॉन्ग है। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसे लिखा था, लता मंगेशकर ने आवाज दी थी, सचिन देव बर्मन का संगीत। तो चलिए नैना, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए आप।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। शर्मिला टैगोर, हेलन और राजेंद्र कुमार पर पिक्चराइज किया गया था ये खूबसूरत गीत आपने सुना, तलाश फिल्म का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि इतने खूबसूरत गाने जो 50s एंड 60s में बने थे, उस फिल्मों के गाने जो है, उस समय जो संगीत था, जो कलाकार थे गाने वाले, उनके अंदर एक कशिश थी। कोई भी गाना आप सुनते हो वो अपने आप में आपको आकर्षित कर लेता है, और इस गीत को पर्टिकुलर जब आप सुने तो मुझे लगता है कि आप यहाँ नहीं होंगे जहाँ पर है अभी। कहीं ना कहीं आप गुम हो जाते हो, आशा करता हूँ आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो चलिए आपको एक नया एहसास और कराते हैं, आगे बढ़ते हैं। नैना, अब आगे कौन सा गीत की तरफ आपका इशारा है?
1: अगला गीत है ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, बहुत मधुर गीत है।
0: जी जी जी

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आपने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना, आशा करता हूँ सभी को अच्छा लग रहा है। बावरे 1950 में ये फिल्म रिलीज हुई थी।

0: फिल्म का ये गीत था जो अभी आपने सुना, केदार शर्मा का लिखा हुआ, मुकेश और गीता दत्त का गाया हुआ, रोशन साहब का संगीत से सजा ये गीत था जो बहुत ही खूबसूरत गीत था। बावरे नयन इस फिल्म की स्टोरी इस तरह से है, एक प्रेमी जो है अपने प्रेयसी को छोड़कर काम की तलाश में विदेश जाता है और विदेश जाने के बाद आपको पता है वहां पर वो किसी और लड़की से शादी कर लेता है। तो ये क्लाइमेक्स इस फिल्म में बताया गया है। तो इस फिल्म के कलाकार हैं राज कपूर और गीता बाली। तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं खूबसूरत गानों का सिलसिला ख्वाबों के सफर में। नैना अब आगे कौन सा गीत है आपके पास?
1: अगला गीत है खेलो ना मेरे दिल से।
0: अच्छा अच्छा
1: ये लता जी का काफी सैड सॉन्ग है और इसका कॉम्पोजिशन काफी कठिन है, अक्सर बेसरा होने के चांसेस हो जाते हैं इसमें।
0: जी जी जी
1: बहुत ही अच्छा गाया है लता जी ने, मेलोडी क्वीन तो वो है ही। इस गीत में एक प्रेमिका जिसके प्रेमी ने उसे चीट किया है, धोखा दिया है, वो उससे शिकायत कर रही है।

क्या बात है, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने प्रेजेंट किया इस गीत को। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा और कब इस गीत को सुने ऐसे उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो गया होगा। तो चलिए आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। ये गीत है टेलोना मेरे दिल से, लता मंगेशकर का गाया, कैफी आजमी साहब का लिखा ये खूबसूरत गाना, मदन मोहन का संगीत से सजा ये फिल्म था हकीकत 1964 में जो रिलीज हुई थी। जी हाँ, इसमें 1962 का चीन और भारत युद्ध के बारे में बताया गया है, जहां पर सैनिकों की एक पलटन को लद्दाख के पर्वतीय इलाकों में मृत्यु माना गया, लेकिन हालांकि उन्हें लद्दाखीय जनजातियों ने कैप्टन बहादुर सिंह द्वारा उन सभी को बचाया जाता है और ये बाद में पता चलता है। चीन भारत का युद्ध का एक सुंदर जो है हिस्सा इसमें बताने की कोशिश की गई थी। चेतन आनंद साहब का डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी। इसमें कलाकार थे धर्मेंद्र, बलराज सहानी, विजय आनंद, प्रिया राजवंश और संजय खान। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस खूबसूरत गीत का आनंद उठाते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में। बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं और एक से बढ़कर एक गीत आज के इस एपिसोड में नैना के कलेक्शन में है। नैना, आप बताइए आगे कौन सा गीत की तरफ आपका इशारा है?
1: अगला गीत तो ऐसा है कि जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। खोया खोया चांद, रवि साहब का ये बहुत ही पॉपुलर गीत है और इस गीत की असियत है कि उन्होंने इसे काफी नशीले अंदाज में गाया है। इसमें जान डाल दी है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने अभी सुना, शैलेंद्र साहब का लिखा, मोहम्मद रफी का गाया हुआ, सचिन देव बर्मन का संगीत। फिल्म थी काला बाजार। जी हाँ, काला बाजार 1960 ये फिल्म रिलीज हुई थी और ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। खास देवानंद पर पिक्चराइज किया गया था और उनका जो चलने का अंदाज है इस गाने में बड़ा ही खूबसूरत है। नैना, मुझे भी शुरुआत में जैसे कि खोया खोया शांत है उसकी जो आलाप है वो बड़ा मजेदार लगता है, सुनकर ऐसा लगता है कि हम भी साथ में गाए। तो चलिए, बहुत ही अच्छा गीत आपने गुनगुनाया, याद दिलाया और सुनाया। आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर।
1: अगला गीत भी एक और सुपरहिट मार्वल सॉन्ग है, रफी साहब का ही। ये गाना कुछ ऐसा है कि इसे सुनकर पुराने गाने ना पसंद करने वाले भी ये कह उठेंगे कि सच में मोहम्मद रफी साहब की गायकी लाजवाब है, बेजोड़ है, उनके जैसा कोई गा ही नहीं सकता। इस गाने की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक प्रेमी है जो कि ये जानता है कि वो जिससे प्रेम करता है वो भी उसे पसंद करती है, मगर मुश्किल ये है कि वो ना कर देती है, बार बार इनकार कर देती है। तो ऐसी हालत में उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो जिए या मरे, क्योंकि उनके बिना जीना भी मुश्किल है और मरना भी मुश्किल है, यानी कि बंदा बीच मझधार में फंस गया है।
0: मुझे लगता है कि ये आप प्रोफेसर 1962 का फिल्म की बात कर रहे हैं।
1: जी,
0: बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म थी। शैलेंद्र साहब का लिखा ये गीत है, मोहम्मद रफी साहब का गाया, शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध ये गीत जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपने बताया वैसे ही कहानी थोड़ा सा रजड़ी वाला है। एक प्रीतम नाम का व्यक्ति लड़का है जो अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे की सख्त जरूरत होती है। दो लड़कियों के लिए एक बुजुर्ग प्रोफेसर के रूप में गीत रचते हैं और उनकी चाची की हट है कि उन्हें कोई युवा पुरुष सिखाएगा नहीं। अब बात यहाँ थोड़ा सा कश्मकश वाली आती है और इनको पैसे की जरूरत है और ये संगीत के माध्यम से पैसे इकट्ठा करना चाहता, लेकिन वहां पर उनकी चाची जो है लड़के को संगीत सिखाना नहीं देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शम्मी कपूर, ललिता पवार और टुनटुन पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत फिल्म है जिसका गाना अभी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा गुनगुना के बताइए।
1: जी,

0: इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल।
1: चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और एक से बढ़कर एक गीत आपने अभी सुना, और जिस तरह के गीत पहले बने थे वो कहीं ना कहीं स्टोरी के साथ रिलेट करते हैं, और आजकल जो फिल्म में गीत बनते हैं स्टोरी कुछ होती है गीत कुछ होता है, तो ये थोड़ा सा जो मुश्किल वाली जो चीजें हैं आज के समय में हम देख पा रहे हैं। और मोहम्मद रफी साहब के लिए बताया जाता था, जिस कलाकार के लिए वो गाते थे पहले उस कलाकार के साथ उनकी बातचीत होती थी, और मोहम्मद रफी साहब का एक बहुत बड़ा ये अंदाज था गाने का कि जिस व्यक्ति के लिए गा रहे हैं पहले उनको वो सुनते थे, उसी आवाज के माध्यम से वो गाने की कोशिश करते थे उसी लहजे में। ऐसा बताया जाता है, एक बार जॉनी वॉकर साहब के लिए उनको गाना गाना था। अब जॉनी वॉकर के लिए बहुत मुश्किल से, मानो वो तो एक कॉमेडी कलाकार थे, कोई हीरो हो तो उनकी बातें उनको समझ में आती थी, उनकी वॉइस भी वो सुनी हुई थी, लेकिन अब जॉनी वॉकर साहब को गाने के लिए, कॉमेडी एक्टर अब गाना गाएगा तो किस तरह से गाना गाएगा ये उनके थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। तो इसीलिए गाना जब डायरेक्टर साहब ने बोला कि मोहम्मद रफी साहब आप जॉनी वॉकर के लिए गाना गाना है, चिट्ठी तो ले ली उन्होंने, उसने यस किया, लेकिन उन्होंने कहा मुझे 15 दिन का वक्त दीजिए। अब 15 दिन के बीच में इन्होंने जॉनी वॉकर के साथ रहे, उनकी आवाज सुनी, उनके स्टाइल को देखा, फिर उसके बाद उन्होंने उस गाने को उसी अंदाज में गाया था जो बहुत ही पॉपुलर गाना है, शायद आपको याद आ गया होगा, तेल मालिश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नैना कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छे।
1: आइए, अब मुझे लगता है कि हम लोग आखिरी मोड पे कार्यक्रम के आखिरी गीत में पहुँच चुके हैं। आखिरी गीत कौन सा है नैना आपके पास?
2: आखिरी गीत है खामोशी खुद अपनी सदा हो। ये एक बहुत ही ठहराव भरा डीप गजल है जिसे देश के बेहतरीन गजल गायक जगजीत सिंह जी ने अपनी आवाज में पेश किया है। जगजीत सिंह जी की आवाज बहुत ही यूनिक थी, सबसे ज्यादा ठहराव अगर किसी की गायकी में थी तो वो जगजीत सिंह ही थे। उनकी मखमली आवाज में वो जादूगरी थी कि वो कुछ भी गुनगुना दे, कुछ भी गा दे, सुनकर दिल को बड़ा आराम मिलता था। ज्यादा काम नहीं करते थे वो, यानी कि ज्यादा खटके, मुर्कियां, लहरियां ये सब नहीं लेते थे, वो आराम से गाते थे। अपनी गायकी में बहुत ठहराव के साथ गाना, बहुत भाव के साथ और बहुत हल्के से गाना ही उनकी खासियत थी, और जो कि अपने आप में बहुत यूनिक थी। इसी गायकी के दम पे उन्होंने जग को जीत लिया था, जगजीत सिंह बन गए थे वो।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जगजीत सिंह के बारे में, और काफी अच्छे गजल आर्टिस्ट रहे, बहुत ही सुंदर गाने उन्होंने गाए, आज भी उनको सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को जो है बड़ा सुकून मिलता है उनकी आवाज में, वो आकर्षण है, वो कशिश है, जब भी उनको सुनते हैं तो बड़ा ही आनंद महसूस होता है। आज वो नहीं है लेकिन उनके गीतों के जरिए हम उन्हें याद करते हैं। तो चलिए, अब जाते जाते हम लोग आपको उनका एक बहुत ही खूबसूरत जो गीत है खामोशी खुद अपनी सदा हो, ये आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। जाका सिद्दीकी का लिखा, जगदीश सिंह का ही संगीत बद ये खूबसूरत गीत आपके लिए, और इसी के साथ मैं चाहूंगा यानी हम चाहेंगे इजाजत। नैना थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू सो मच।
1: चलिए दोस्तों, नैना और मुझे दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर कुछ नए गानों के साथ हम आपके साथ होंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। सलाम नमस्ते, खम्मा गनीसा।

0: कहा मोहिनी, आज हम और तुम दोनों मिलकर रसराज की रंग भरी सुराई में तूफान उठा दें। इससे इतना रस छलक पड़े कि उस जमाने की प्यास बुझ जाए जिसमें हम और तुम जी रहे हैं।
1: हाँ रचो जितने गीत रचना चाहते हो, जब तक रचते रहोगे मैं उन्हें सुर में गूंज कर नाचती रहूंगी। देखें पहले शब्द थकते हैं या भाव।
2: कारी कारी कारी अंधियारी थी रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन न गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छुपा कर, चपल चपल बिजली की छटा, किकनार करके सिंगार, किकनार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहाँ थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम रमक झुम झुम चमक झुम झुम।

सना ना सना ना पवन चले, झना ना झना ना झांझर बोले, अमृत घोले दिल न डोले, कामिनिया चले होले होले, नया न झुके पग न रुके, बेला मिलन की न टले, अचरा ढले दीपक जले, पिया मिलन गुरी चले, छुम छुम छुम छमक छमक, झुम झुम झुम झमक झमक, छुम

बरसात उठे घन घोर घटा करे शोर पपिया पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपिया सन में लगन लगी मन में अगन जगी बंद किए दोना नैना उगारे प्यार पुकारे सो प्रीत किनारे चली है वो सांसों की डोर सहारे।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है, तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिव।
1: तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर है तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आते क्यों नहीं? जाओ जाओ।

0: लपक झपक कुवार बदर मा बरस बरस तू कार बदर मा लपक झपक लपक झपक लपक झपक
1: ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट, देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अरे मनु, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज आगे की कहानी जो सुनानी ज्योतिबा फूले जी की, सुननी है ना कहानी?
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सुननी है। लेकिन आज आप सीधा कहानी सुनाने की बात कर रहे हैं, लगता है आज मुझसे ज्यादा जल्दी आपको है ज्योतिबा फूले जी के बारे में आगे की कहानी सुनाने की।
0: हाँ, आज मेरा एक छोटा सा नन्ना दोस्त जो आने वाला है, तुम्हें कहानी सुनाने के बाद मुझे अपने नन्हे दोस्त शुभम से भी मिलना है।
1: शुभम? कौन शुभम?
0: बताऊंगा, सब बताऊंगा, पहले कहानी तो सुन ले।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, ज्योतिबा फूले जी की आगे की कहानी सुनने के लिए मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। आखिर उन्होंने उस समय अपनी पत्नी सावित्री बाई फूले जी को पढ़ाया जो था, जबकि पूरा का पूरा समाज उनके विरोध में था।
0: हाँ, ऐसे ही श्रेष्ठ विचारों के धनी थे ज्योतिबा फूले। चलो तो मैं सुनाता हूँ आगे की कहानी। ज्योतिबा फूले की संत महात्माओं की जीवनियां पढ़ने में बड़ी रुचि थी।
1: अच्छा।
0: उन्हें ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने सब नर नारी समान है तो उनमें ऊंच नीच का भेद क्यों होना चाहिए। महिलाओं की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1854 में एक स्कूल खोला।
1: अच्छा।
0: इस काम के लिए देश में ये पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने कुछ दिन खुद यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री बाई फूले को इस योग्य बना दिया।
1: अरे वाह।
0: उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फूले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया।
1: अरे।
0: इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका जरूर, पर जल्दी ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए।
1: क्या बात है।
0: हाँ, अछूतों के उद्धार के लिए ज्योतिबा फूले ने उनके अछूत बच्चों को अपने घर पर पाला।
1: अच्छा।
0: और अपने घर की पानी की टंकी उनके लिए खोल दी। परिणाम स्वरूप उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया।
1: अरे।
0: कुछ समय तक एक मिशन स्कूल में अध्यापक का काम मिलने से ज्योतिबा का परिचय पश्चिम के विचारों से भी हुआ।
1: ओके।
0: पर ईसाई धर्म ने उन्हें कभी आकृष्ट नहीं किया। 1853 में पति पत्नी ने अपने मकान में प्रौढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए रात्रि पाठशाला खोली।
1: अरे वाह।
0: इन सब कामों से उनकी बढ़ती ख्याति देखकर विरोधियों ने एक बार तो 2 हत्यारों को उन्हें मारने के लिए तैयार किया था।
1: अरे लेकिन फिर क्या हुआ?
0: पर वे ज्योतिबा की समाज सेवा देखकर उनके शिष्य बन गए।
1: अच्छा, ये तो कमाल की बात है।
0: दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्य शोधक समाज स्थापित किया। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 ईस्वी में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई।
1: अच्छा।
0: वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। वे लोकमान्य के प्रशंसकों में से थे। जब 1873 में महात्मा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, उसी साल उनकी पुस्तक गुलामगिरी का भी प्रकाशन हुआ।
1: अच्छा।
0: दोनों ही घटनाओं ने पश्चिम और दक्षिण भारत के भावी इतिहास और चिंतन को बहुत प्रभावित किया। महात्मा फूले की किताब गुलामगिरी बहुत कम पृष्ठों की एक किताब है।
1: अच्छा।
0: लेकिन इसमें बताए गए विचारों के आधार पर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बहुत सारे आंदोलन चले। उत्तर भारत में चल रही दलित अस्मिता की लड़ाई के बहुत सारे सूत्र गुलामगिरी में ढूंढे जा सकते हैं। आधुनिक भारत महात्मा फूले जैसे क्रांतिकारी विचारक का बड़ा आभारी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद ले लिया था। ये बच्चा बड़ा होकर एक डॉक्टर बना और इसने भी अपने माता पिता के समाज सेवा के कार्य को आगे बढ़ाया।
1: अच्छा।
0: मानवता की भलाई के लिए किए गए ज्योतिबा के निस्वार्थ कार्यों के कारण मई 1888 में उस समय के एक और महान समाज सुधारक राव बहादुर विठल राव कृष्णाजी वंदेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी।
1: अच्छा।
0: जुलाई 1888 में उन्हें लकवे का अटैक आ गया, जिसकी वजह से उनका सारा शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उनका जोश और मन कभी कमजोर नहीं हुआ था। 27 नवंबर 1890 को उन्होंने अपने सभी हितेशियों को बुलाया और कहा कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, मैंने जीवन में जिन जिन कार्यों को हाथ में लिया है उसे पूरा किया है।

0: मेरी पत्नी सावित्री ने हरदम परछाई की तरह मेरा साथ दिया है और मेरा पुत्र यशवंत अभी छोटा है और मैं इन दोनों को आपके हवाले करता हूं। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू आ गए और उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला।
1: अच्छा,
0: 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फूले ने देह त्याग दिया और एक महान समाज सेवी इस दुनिया से विदा हो गया। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जैसे कि तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, ब्राह्मणों का चातुर्य, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत।
1: अच्छा, इतनी सारी किताबें।
0: महात्मा ज्योतिबा और उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया।
1: अच्छा,
0: धर्म समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने और भी अनेक पुस्तिकाएं लिखी हैं।
1: महात्मा ज्योतिबा फूले की कहानी सुनकर सच में दिल गर्वित तो हुआ ही, साथ में सच्चाई के लिए लड़ाई करने के लिए और हिम्मत मिल गई।
0: वो वहाँ देख रही हो मनु?
1: हाँ, वो एक बच्चा एक महिला के साथ जो बैठा है।
0: उनके साथ वो जो बच्चा है उसका नाम शुभम है, 5वीं कक्षा में पढ़ता है।
1: अच्छा, तो ये है आपका दोस्त शुभम, बहुत ही प्यारा लग रहा है वैसे तो।
0: हाँ, वो अक्सर यहाँ आता है अपनी दाई माँ के साथ, लेकिन पता है शुभम थोड़ा चिढ़ा हुआ सा रहता है, अपने माता पिता की बात सुनता ही नहीं।
1: आपको कैसे पता? क्या उसके माता पिता भी यहाँ आते हैं?
0: नहीं, शुभम की दाई माँ किसी से बात करती है तो ये सब बोलते सुना है मैंने, और शुभम का कुछ मुरझाया हुआ सा चेहरा, उसकी चिड़चिड़ाहट को विदाई देती उसकी प्यारी सी मुस्कान, उसकी प्यारी साथी उसकी बॉल के साथ ही दिखाई देती है।
1: ओह, पर इतना प्यारा बच्चा ऐसा क्यों करता है? मुझे लगता है थोड़ा शैतान होगा।
0: नहीं मनु, शुभम के माता पिता दोनों काम पर जाते हैं, कभी कक्षा में पड़ी टीचर से डांट और कभी दोस्त से हुआ झगड़ा वो किसी से नहीं कह पाता। माता पिता उसे सब लेकर देते हैं, कपड़े, खिलौने, यहाँ तक कि फोन भी, लेकिन ये सब माँ बाप के साथ बिताए समय उनसे बांटी गई बातों की जगह तो नहीं ले सकते ना।
1: तो क्या ये सब शुभम के माता पिता को नजर नहीं आता?
0: शुभम के माता पिता को लगता है वो बिगड़ गया है, जिद्दी हो गया है, इसलिए उसे चुप कराने के लिए डांट या मार का सहारा लेते हैं। लेकिन पता है मनु, अक्सर चिड़चिड़ाहट प्यार की कमी का प्रतीक होती है। हमारे आसपास भी कई शुभम है, कुछ छोटे और कुछ उम्र में बड़े भी।
1: मतलब हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनके रिएक्शन पर नहीं जाना चाहिए बल्कि उसका रीजन खोजना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने मनु।
1: मैं जाकर शुभम के साथ खेलूं?
0: हाँ जरूर।
1: ओके, थैंक यू पुराना स्तंभ जी, बाय बाय।
0: बाय बाय मनु।
2: पुराने स्तंभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब अपने एक्सपर्ट जी से भी जानते हैं ज्योतिबा फूले जी के बारे में कुछ अन्य खास बातें।
3: तर ज्योतिबा फुले हा जे व्यक्ती आहे त्यांचा विचार किंवा गोष्टी असेल ज्या लोकांपर्यंत पोहोचले नाही किंवा लोकांना माहिती नसेल ज्योतिबा फुलेंच्या, ते तुम्ही सांगा।
4: ज्योतिबा फुलेंच्या भरपूर काही गोष्टी अशा आहेत की ज्या समाजापर्यंत गेलेल्या नाहीत। सर्वात महत्वाचं म्हणजे त्या काळामध्ये शत्रूला सहकार्य करायचं काम महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी केलं। आता ते कसं? तर त्या काळामध्ये टिळक, आगरकर या दोघांनी आयुष्यभर महात्मा ज्योतिबा फुले यांना त्रास दिला। टिळक, आगरकर

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपनी जीवन और अपनी मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अब उस्तादी दिखाओगे या कव्वाली शुरू करोगे?
1: अरे कव्वाली सुनाता हूँ, सुनो छोकरे लोग, आज ऐसा जम के बजाओ कि मेरी जोरू का तंबू हदर जाए।
0: और बहनों ऐसा गाओ कि मेरे मियाँ का झोपड़ा उड़ जाए।
1: बजाओ रे।

पेटी झूठ के संदक में छुपा को, संदक में छुपा को, अजी छिलको छिला को, अजी हाँ घसको घसा को, अजी छिलको छिला को, अजी हाँ घसको।

झूठ बोला, बाबा वो झूठ बोला, अल्लाह अल्लाह झूठ बोला, हसन से झूठ बोला। हर पर तुझको लाखों हलालों की हराम कमाई दिया और तू मेरे को ताना दे रही, दो बादाम खिला के बोल रही, अरे बादाम नो लाते कते संदक में चोपा को, अजी छिलको छिला को, अजी हाथ।

0: अरे पगली, अगर मैं तेरे को हंसाया तो फैमिली प्लानिंग वाले रोएंगे ना। तू जानती है तू कौन है?
1: क्या हूँ?
0: चिकनी।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जैसे ही बात हम स्पिरिचुअलिटी की करते हैं या अध्यात्म की करते हैं, लगता है कि किसी और के बारे में बात की जाने वाली है, लेकिन जैसे ही बात अपने जीवन की हो रही होती है, तब हम सुनना चाहते हैं। तो एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं इस नई श्रृंखला में, जिसमें हम बात जिंदगी की कर रहे हैं। और जहाँ अध्यात्म हुआ, जहाँ स्पिरिचुअलिटी हुई, वो सचमुच बात मेरी ही तो हो रही होती है। अगर आपको याद हो, पिछली कड़ी में हमने बात की थी खुशी की। सब कुछ होते हुए भी कभी ऐसा लगता है कि हम खुश नहीं हैं। और एक बात जिस पर छूटी थी वो बात, जो कड़ी हमारी खत्म हुई थी, वो थी कि हम सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन खुद यानी इस बॉडी या इस पर्सनैलिटी का नहीं, बल्कि जो मैं हूँ, द बीइंग, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। कैसे रखना है वो ध्यान, और उसी से जुड़ी और कई सारी बातें इस पूरी श्रृंखला में हम करने वाले हैं। आज की कड़ी को शुरू करते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछली कड़ी पर नजर डालते हैं, बहुत कुछ हमने एक नए अंदाज से देखने की कोशिश की, और जो बात आई थी कि सब कुछ था, सब कुछ हो रहा होता है, सबका ध्यान हम रखना चाहते हैं, कहीं आपने कहा कि हम ध्यान अपना नहीं रख पाते हैं। ध्यान अपना इन द सेंस खाना खाना है, फिजिकली ड्रेस अच्छी पहननी है, मैं आई शुड लुक गुड, परफेक्टली फाइन, सब कुछ है, वो रखता है, लेकिन
1: माय चेयर शुड बी कंफर्टेबल,
0: ओह यस, माय कार शुड बी, एयर कंडीशनिंग शुड बी परफेक्ट, यू नो, मुझे पसीने नहीं आने चाहिए, अनकंफर्टेबलनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन
1: विच इज वेरी गुड, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस। अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए मीन्स कंफर्टेबल होना चाहिए। शरीर के लिए कितना ध्यान रखते, कंफर्टेबल होना चाहिए। अब
0: मन कि मन के बारे में हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि मन के बारे में ध्यान रखना हमें आता ही नहीं शायद। एक यहाँ पे मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि हम ध्यान नहीं रखते कि हम खुश कितना हैं, लेकिन हम सब कुछ जो कर रहे हैं उसमें तो मुझे खुशी मिल रही है, फिर ध्यान कैसे नहीं रखते? मेरा बच्चा जब खाना खा लेता है, या मेरा बॉस मुझसे खुश हो जाता है, मैंने एक अच्छी सी अचीव कर ली अपनी कोई चीज, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे पेरेंट, अगर मैं कुछ ऐसी चीज करके उनको देती हूँ और वो खुश होते हैं, आई फील वेरी गुड, यू नो, दिस गिव्स मी हैप्पीनेस। तो फिर कहाँ ध्यान नहीं रखा? मैंने जो सारी चीजें की, अपने वाइफ के लिए किया या अपने बच्चे के लिए किया, मुझे इसी में तो खुशी मिल रही है। तो फिर मेरे को क्यों है कि मैं, आपने कहा कि हम ध्यान नहीं रखते, हम ध्यान तो रख रहे हैं।
1: आई डोंट नो, वी हैव टू, एवरीवन हैज टू आस्क देमसेल्फ। जो हैप्पीनेस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, यू और मी और एनीवन एल्स हैज नो राइट टू से कि हर एक का इंडेक्स क्या है। लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं, सबसे मिलते हैं, तब यही कहीं ना कहीं सबसे रिस्पॉन्स आ रहा है कि वो जो होना चाहिए वो नहीं है, यू नो, वो नहीं आ रहा। सो लेट्स नॉट मेक अ जनरलाइज स्टेटमेंट, लेकिन लेट एवरी वन जस्ट चेक फॉर देमसेल्फ्स, क्योंकि हो सकता है कि आई एम सेइंग कि आप खुश नहीं हो, बट एक्चुअली आप बहुत खुश हो, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि ये आपको किसी और से मिलने वाला पैरामीटर नहीं है। दिस इज वन थिंग जो सिर्फ आप और सिर्फ आप अंदर जानते हैं। कई बार स्पेशली आप जिस प्रोफेशन में है, लेट्स से आपका रोल है सारा दिन स्माइल करना, यू नो, ऑलवेज बी सो ब्यूटिफुल, एनर्जेटिक, नॉट जस्ट ब्यूटिफुल लेकिन एनर्जेटिक, ऑन द फेस हैज टू बी ऑलवेज बहुत वेलकमिंग, बहुत, लेकिन हो सकता है आप अंदर आज खुश नहीं हो। इज दैट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल?
0: मैक्सिमम टाइम जस्ट
1: तो, लेकिन इस वास्तविकता को कि आप अंदर कैसा फील कर रहे हो सिर्फ आप जानते हो। क्योंकि आज जो एक बहुत कॉमन बात भी निकल कर आती कि मैं इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा आज करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम खुश नहीं है। एंड फिर हम साथ साथ ये भी कहते हैं वो भी खुश नहीं है मेरे से।
0: एक्चुअली हमने सब कुछ किया, देख, एक्चुअली मेरी खुशी तब खत्म हुई कि मैंने कुछ किया उनके लिए। सपोज मैंने बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज बनाई जो मैं चाहती हूँ, जो आई नो कि मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी और उन्हें अच्छा लगेगा। चाहे मैंने पिज्जा बनाया सपोज, और मैंने बनाया, उन्होंने खाया और उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बड़ा खुश होकर बनाया था, लेकिन वो खुश नहीं हुए तो मैं भी खुश नहीं हुई, फिर मुझे और फिर मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू होता है।
1: आपने खुश होकर नहीं बनाया था, आपने बनाया था ये सोचकर कि जब वो खाएंगे तब वो खुश होंगे, वो खुश होंगे तो मैं खुश होंगे। इट्स अ डिफरेंस.
0: देखिए मैं बनाते वक्त ये सोच के खुश थी.
1: ये सोच के खुश थे कि वो खुश होंगे तो दिस विल गिव मी हैप्पीनेस. सो इट वाज अ प्रेपरेशन फॉर दैट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस कि जब मैं आपके लिए यू नो हम क्या होता है हम एक पिक्चर ऑलरेडी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं फ्यूचर की कि एक घंटे के बाद ये होगा ये मैं बनाऊंगी वहां लेकर जाऊंगी वो देखें. दैट इज व्हाट इट्स अ स्टिमुलेंट व्हिच इज गिविंग मी हैप्पीनेस कि वो सीन जो मुझे खुशी देने वाला है मैंने उस सीन को पहले से क्रिएट कर लिया. यू नो लेट्स से कि मैं आपको कुछ खिलाऊंगी आप बहुत खुश होंगे तो वो मुझे खुशी मिलेगी. लेकिन बनाते बनाते मैं वो सीन ऑलरेडी क्रिएट कर लेती हूँ. दिस इटसेल्फ शोज द पावर ऑफ द माइंड कि सिचुएशन अभी हुई भी नहीं है वो पिज्जा अभी बना भी नहीं है लेकिन वो जो मैं सीन क्रिएट कर लेती हूँ वो ऑलरेडी मुझे वो देना शुरू कर देता है. लेकिन साथ साथ मेरा माइंड ये भी प्रिपेयर होता जा रहा है ऐसे वो खुश होंगे फिर मैं खुश होंगे ऐसे वो खुश होंगे फिर मैं खुश होंगे. अब सपोज जो रियलिटी हुई वो उस इमेज के साथ मैच नहीं की. आपने जो इमेज यहाँ डेटा फीड कर दिया था वो ये था कि बच्चे खुश होंगे देन आई विल बी हैप्पी बट आपने कहा बच्चे खुश नहीं हुए तो फिर रिजल्ट क्या होगा उसका.
0: गुस्सा यू नो बिकॉज़ देयर इज सो मच ऑफ वन लेट डाउन की फीलिंग टू फ्रस्ट्रेशन एंड थ्री यू नो मतलब एक एक ऐसा मतलब फीलिंग ऑफ यू नो नॉट बीइंग वेरी हैप्पी एक्चुअली.
1: हाँ तो आपने अपने माइंड को पहले कंडीशन किया ना. माइंड की इतनी तैयारी की थी कि ऐसे वो खाएंगे फिर उनको अच्छा लगेगा फिर वो मेरी प्रेस करेंगे फिर वो खुश होंगे फिर मैं तो माइंड को पूरा क्या प्रोग्रामिंग किया. दिस इज ऑल्सो प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड. माइंड को पूरा प्रोग्राम किया कि ये इंस्ट्रक्शन होगी फिर ये होगी फिर ये होगी रिजल्ट होगा हैप्पीनेस. तो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कोडिंग की हमने माइंड की वो क्या की कि डेटा ये होगा बच्चे खुश होंगे रिजल्ट ये होगा मैं खुश होंगी. जब डेटा चेंज हो गया कि बच्चे खुश नहीं हुए तो रिजल्ट भी तो चेंज हो जाएगा.
0: लेकिन उसके लिए मैं तैयार नहीं थी और ये प्रोग्रामिंग मैंने कब की तो मुझे पता ही नहीं.
1: प्रोग्रामिंग पिज्जा बनाते टाइम.
0: हाँ
1: अभी तो कहा बनाते टाइम सी वी आर डूइंग द प्रोग्रामिंग. माइंड थोड़ी बना रहा है मैं बना रही हूँ लेकिन मन तो वो एंटिसिपेट कर रहा है ऑलरेडी उस सीन को क्रिएट कर रहा है. सो ये कोडिंग चल रही है मेरी. लेकिन कोडिंग में इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर हैं. यही अगर मैं कोडिंग थोड़ी सी डिफरेंट कर दूं
0: और मैं कहूँ कि अगर वो खुश ना भी हो तो कोई बात नहीं.
1: नहीं डोंट लाइक द कोडिंग.
0: Because I want them to be happy.
1: Yeah. ये अगर मैं ये कोडिंग करूँ कि मैं ऑलरेडी खुश हूँ मैं बनाते हुए भी खुश हूँ उनको खिलाते हुए भी खुश हूँ अगर उनको वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया दैट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टेस्ट. दैट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस. मिक्स कर दिया ना मैंने दोनों चीजों को.
0: मेरी क्रेडिबिलिटी अब क्या कहीं ना कहीं आ गया.
1: हाँ तो ईगो पर तो वो टच हुआ लेकिन क्वेश्चन ऑफ टेस्ट है कि हो सकता है उनको वो पसंद नहीं आया. लेकिन जब मैंने रिएक्ट कर दिया उस बात को कि मैंने इतनी मेहनत की तुम्हारे लिए बनाया तुमको पसंद है तब वो पिज्जा तो रह गया साइड पे. लेकिन तब जो सीन क्रिएट हो जाएगा बाद में सारा. तो बनाने क्या चले थे खुशी बनाने चले थे और हो गई कुछ और. तो ये जो कोडिंग हम माइंड की करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सारा दिन जो एक एक थॉट हम क्रिएट करते हैं इस पर रिजल्ट फॉर बहुत डिपेंडेंट होता है. अभी हमारी कोडिंग ऐसे ही हुई हुई है कि ये होगा तो मैं खुश होंगी ये मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे तो मैं खुश होंगी उनका फोन आएगा तो मैं खुश
0: होंगे. I want to do things for others, you know.
1: Yeah.
0: Like so many times we feel that way. I want to do this for my husband. I want to do this for my mom. Matlab whatever.
1: To make them happy.
0: Yes.
1: Because when they are happy,
0: I'm happy.
1: I am happy. Right. So मैं आपके लिए ये करूंगी एंड जो करने वाली हमारी लिस्ट होती है कई बार छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन कई बार बहुत बड़ी बड़ी भी चीजें होती हैं. They could mean big sacrifices in my personal decisions. हाँ लेकिन they are all being done with this purpose कि मैं करूंगी आप खुश होंगे तो मैं खुश होंगे. अब ये इक्वेशन ठीक है कि आप खुश होंगे तो मैं खुश होंगी लेकिन बाई चांस अगर दूसरा वाला नहीं खुश हुआ सामने वाला कोई अपनी ही टेंशन में है कोई अपनी चिंता में है आप अपने हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा कोई गिफ्ट लेकर आ गए. राइट जस्ट डे बिफोर यस्टरडे इट हैपेंड विद माय नेबर. उसके पास व्हीकल नहीं था वो दो बस चेंज करके बहुत मेहनत से अपने हस्बैंड के लिए एक शर्ट लेने गई बर्थडे के लिए. ठीक है लेकिन वो जो शर्ट लेकर आई बहुत एफर्ट किया मैंने एक्चुअली सॉ हर डूइंग ऑल दैट लेकिन जो

0: एंड देयर फोर ऑल्सो द ऑपोजिट, कि जब आप उदास हो गए या नाराज हो गए या अपसेट हो गए तो मैं भी हो जाऊंगी. सो समवेयर मैंने ये इक्वेशन क्रिएट कर ली है कि जब लोग मेरे आसपास जो खुश होंगे तब मैं खुश होंगी, तब मेरा वो प्रोसेस सारा स्टार्ट हो गया.
1: तो मतलब आसपास सब लोग दुखी रहे और मैं खुश हो जाऊं, ये संभव है?
0: We don't know, we'll explore during this whole journey. This is what it is all about. Kyunki, not that it is being selfish, it's like saying, agar mere aaspaas sab bimar ho to main theek rahu.
1: हाँ, of course.
0: Of course, usme of course ho gaya fir. अभी तो हम कह रहे थे कि जब आसपास हमारे सब बीमार होंगे तो मुझे भी कैसे होना चाहिए.
1: बीमार तो मैं अपने आप ही हो जाती हूँ वैसे.
0: एक्चुअली बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए कि जब मेरे आसपास लोग बीमार हैं
1: आई शुड बी
0: और वो
1: परफेक्ट.
0: भी वो लोग जो मेरे एकदम क्लोज सर्कल में आते हैं, तो उनका ध्यान रखने के लिए भी मुझे पहले किसका ध्यान रखना पड़ता? अपना. फिजिकल लेवल पर भी सेम इक्वेशन अप्लाई करती, इमोशनल लेवल पर भी वही इक्वेशन अप्लाई करती है कि औरों को खुश करने के लिए सिर्फ एक्टिविटी पर नहीं ध्यान रखा जा सकता कि ये करूंगी ये करूंगी ये करूंगी तो वो खुश हो जाएंगे. नहीं, मूल मंत्र है मैं खुश रहूंगी
1: तो वो खुश
0: तो वो
1: होंगे.
0: खुश होंगे.
1: अरे कितनी बार तो हम कहते हैं कि तुम तो मुझे खुश देख ही नहीं सकते हो. यू नो सो मेनी टाइम्स वी टेल अदर्स कि यू कांट सी मी हैप्पी. द मोमेंट आई एम हैप्पी यू क्रिएट समथिंग माय हैप्पीनेस गो.
0: क्योंकि अगेन कितना डीप रूटेड बिलीफ है ना कि दूसरे के स्टेट ऑफ माइंड और बिहेवियर के ऊपर मेरा स्टेट ऑफ माइंड डिपेंडेंट है. सपोज अब मैं बहुत अच्छे मूड में आई सुबह, लेकिन आपका मूड ठीक नहीं है और अब मैं भी डिस्टर्ब हो गई और फिर मैं उसका ब्लेम आपके ऊपर डालूं कि आपको तो बस अच्छा ही नहीं लगता कि मैं खुश हूं, आपने ऐसे इतनी रूडली बात कर दी कि मेरा मूड भी खराब हुआ. आपका मूड ठीक नहीं है, वो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है. मैं अपना अपने ऊपर वो नहीं रख पाई कंट्रोल, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. व्हाट राइट डू आई हैव टू से टू अनदर पर्सन कि आपकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई. दिस इज ऑल हैपनिंग एंड उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं. ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी इक्वेशन इन लाइफ सेट नहीं है. हमने सोचा बाहर से जो एनर्जी आएगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट से आएगी, चाहे वो लोगों से आएगी, चाहे मेरे कोई काम से आएगी, वो जो एनर्जी बाहर से आएगी वो मेरे अंदर की एनर्जी क्रिएट करेगी. इसलिए आप अपनी वोकैबुलरी को अगर किसी भी दिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, मैं ये करूंगी
1: तो खुश
0: तो खुश
1: होंगे,
0: होगा, ये होगा तो मैं खुश होंगी, बच्चे के 90% मार्क्स आएंगे तो मैं खुश होंगी, उसकी जॉब हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, मतलब कुछ बाहर होगा
1: तब
0: या
1: मैं
0: कोई
1: खुश
0: कुछ
1: होंगी.
0: तब मैं खुश होंगी. सो द इक्वेशन इज आउटसाइड इन, आउटसाइड का प्रोडक्ट इनसाइड की एनर्जी क्रिएट करेगा.
1: पर ये ऐसा ही तो होता है शिवानी बहन, दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि होता है ना ऐसे. मतलब खुशी मुझे मिलती है इन सब चीजों से. अब अगर वो चीजें नहीं हो रही होगी तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ?
0: खुशी, अच्छा कौन सी चीजों से खुशी मिलती है?
1: अगेन यू नो लाइक अगर वो खुश हो रहे होंगे मेरा पिज्जा खा के, अगर वो खुश हुए तभी तो मैं खुश होंगी ना.
0: मैं खुश हुई इस थॉट को क्रिएट करके कि वो जो मैंने बनाया वो खाकर उनको अच्छा लगा. ये थॉट किसने क्रिएट किया? मैंने. अच्छा लेट्स से वो ही पिज्जा खा रहे हैं अभी अभी, वो बच्चे बहुत खुश हैं, उनको खुश देखकर आप बहुत खुश हो, एवरीवन इज वेरी हैप्पी एंड वन फोन कॉल एंड वन मैसेज. या किसी ने आपको, वो आप घर में हो बहुत खुश हो लेकिन आपके बॉस ने आपको फोन कर दिया और कहा कि आज जो आपने सारा काम ऑफिस में किया था उसमें ये गलती है ये गलती है,
1: बस खुशी गई.
0: अब पिज्जा तो वही है ना, बच्चे भी वही हैं, वो अभी भी खुश हैं. वेयर इज योर हैप्पीनेस गॉन?
1: तो दूसरी सिचुएशन होगी ना, इस सिचुएशन में तो मैं खुश थी ना. इस
0: सिचुएशन में सिचुएशन को टाइम तो नहीं लगा ना आके आपकी खुशी को वाइप आउट करने के लिए.
1: तो वो हर सिचुएशन अपने साथ कैसे खुशी लेकर लेकर आता.
0: या तो नाउ मेरी लाइफ किस पर डिपेंडेंट है?
1: सिचुएशंस
0: पर. सिचुएशंस में भी लोगों पर, लोगों के मूड पर, लोगों के टेम्परमेंट पर. मेरा टेम्परमेंट डिपेंडेंट है, मेरी स्टेट ऑफ माइंड लोगों पर डिपेंडेंट है. हाउ हेल्दी इज दिस फॉर मी? मेरी फिजिकल हेल्थ, लेट्स कीप ऑन कंपेयरिंग इट बिकॉज तभी समझ में आता है. मेरी फिजिकल हेल्थ बाहर के मौसम, बाहर के इन्फेक्शन, बाहर के बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट है.
1: तो मेरा रेजिस्टेंस पावर खत्म है.
0: एग्जैक्टली,
1: यू नो बिकॉज ये तो होता ही है, जब मेरी रेजिस्टेंस पावर खत्म होती है बॉडी की तो मुझे सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, मुझे सारा बैक्टीरिया अटैक करता है, सारे वायरस आ जाते हैं. वायरल फीवर।

0: the answer.
1: Yes.
0: That's the answer. Bacteria तो ऑलरेडी है,
1: हाँ
0: इन्फेक्शन तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर मैं अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखती हूँ, अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रखती हूँ, तो वो मुझ पर अटैक नहीं करता है. लेकिन जैसे ही मेरा इम्यूनिटी सिस्टम क्रैश किया, तो छोटा छोटा वायरस भी थोड़ा सा मौसम का चेंज मेरे ऊपर
1: एकदम से सर्दी
0: अटैक.
1: जुकाम बुखार ये
0: सो हियर इट इज, आई बिकम इधर आई एम स्ट्रांग और आई बिकम वल्नरेबल. तो स्ट्रांग हूं तो मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं आता. मौसम भले बदले, बाहर तूफान हो, बर्फ पड़े, आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. लेकिन मैं अपना ध्यान नहीं रखू और सिर्फ बोलती रहूं मौसम ही ठीक नहीं है, सर्दी इतनी हो गई है या गर्मी इतनी हो गई है, तो बीमार तो पड़ना ही है. तो फिर बीमार रहिए, नो प्रॉब्लम, इट्स अ चॉइस. क्या बीमार रहना चाहते हैं या हेल्दी रहना चाहते हैं, दोनों चॉइस हमारे पास है.
1: हाँ वेरी ट्रू. लेकिन हमारे पास तो इतनी शक्ति नहीं है ना. यू नो व्हेन यू सेड कि इधर यू बिकम पावरफुल और यू रिमेन वल्नरेबल, सो बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. यू नो लाइक आई फील दैट दिस इज आई डोंट हैव द पावर. यू नो कि मेरे को वो सिचुएशंस अफेक्ट ना करें या मेरी खुशी को ना यू नो उस पर ना कुठाराघात करें, तो इसीलिए वो मैं वल्नरेबल हूँ. मैं आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. एक्चुअली वी ऑल अंडरस्टैंडिंग कि फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, कि वी एक्चुअली आर वल्नरेबल. यू नो चाहे वो फिजिकल है या मेंटल या खुशी की बात है, हम कर क्या सकते हैं.
0: जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं,
1: वैसे
0: वैसे ही हमें अपने मन का भी ध्यान रखना
1: ध्यान
0: है.
1: रखो.
0: ये उस टाइम नहीं होगा जब परिस्थिति आएगी. आप अपने शरीर के अंदर ताकत तब नहीं भरते जिस क्षण मौसम बदलता है, लेकिन आप एवरी डे डेली बेसिस पर अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, तो बाहर कितना भी परिवर्तन आए, बाहर का परिवर्तन अंदर परिवर्तन नहीं क्रिएट कर देता. यू सी, शरीर फिर भी उस शरीर के अंदर पावर है कि वो बाहर के परिवर्तन के साथ अडेप्ट करके
1: अपना
0: चल
1: इम्यून
0: जाता है
1: सिस्टम को.
0: अपना.
1: यस लवली.
0: अगर बाहर से इन्फेक्शन आ रही है, लेकिन शरीर के अंदर भी वो
1: एंटीबायोटिक्स है. हाँ वो जो
0: जो उसको
1: बिल्कुल.
0: फाइट करेंगे और फिनिश कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं. इसी तरह अगर जैसे शरीर का ध्यान इतना रखते हैं, तो ये सारी चीजें कब आती कब चली जाती पता भी नहीं चलता. अगर मन का भी उसी तरह से ध्यान रखेंगे, हर रोज इसकी सफाई करते रहेंगे, इसको नरिशमेंट देंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो कब क्या बाहर होता जाएगा, आएगा चला जाएगा, हम उस सीन को क्रॉस करते जाएंगे. फिर आप वो वाला नहीं सेंटेंस बोलेंगे कि अभी अभी अच्छा फिर अभी अभी खराब. दिस इज हाउ द इंडेक्स इज गोइंग. सी, दिस इज हाउ द इंडेक्स इज गोइंग एक्चुअली, कि जैसी सिचुएशन वैसे मेरी हैप्पीनेस, कभी ऊपर कभी नीचे. क्यों? क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग आउटसाइड. अपने आप में इसके अंदर कोई पावर नहीं है. आप अच्छा बोलो तो मैं खुश, आप नहीं बोलो तो मैं नहीं खुश. तो मैं सारा दिन क्या करती रहती हूँ, आपको प्लीज करने की कोशिश करती रहती हूँ, ताकि आप मेरे से
1: अच्छी
0: अच्छा
1: तरह से बोलें.
0: बोलते रहेंगे. क्योंकि एवरीथिंग आई एम डूइंग इज फॉर हैप्पीनेस, एक्चुअली एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग इज फॉर हैप्पीनेस. लेकिन प्रोबेबली वेयर आई एम डूइंग इट इज समवेयर, यू नो. तो फिर क्या होता, अभी अभी अच्छा था और अभी अभी उसको खराब होने में टाइम नहीं लगता. तो अगर हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड का भी उस तरह से ध्यान रखते जाएंगे, इसलिए हमने उस दिन भी कहा कि ध्यान रखना, तब बैक्टीरिया भले आएगा, कोई कुछ बहुत बुरा कह देगा, कोई नाराज हो जाएगा, बच्चे हमारे से संतुष्ट नहीं होंगे, बॉस फायर कर देगा, ये सब बैक्टीरिया ही तो है जो बाहर से आता है, ये परिवर्तन ही तो है जो सारा बाहर से आ रहा है. आज बच्चे बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, कल सडनली रिएक्ट कर गए, कुछ रूडली बोल दिया, कुछ हो गया, परिवर्तन है ना, मौसम में बदलाव आया है. लेकिन मेरे अंदर पावर नहीं है उस बदलाव को फेस करने की. तो जैसे ही
1: ओ,
0: वो
1: बदलाव
0: परिवर्तन
1: क्या हुआ?
0: हो,
1: मतलब मौसम के बारिश और व्यवहार की जो बारिश है
0: बारिश
1: उसमें बहुत फर्क है. क्योंकि मौसम की बारिश के लिए मैं छाता लेके जा सकती हूँ, मैं रेनकोट
0: तो
1: पहन
0: आप
1: सकती हूँ,
0: प्रोटेक्शन कर रहे हैं
1: मैं
0: ना.
1: घर से बाहर ना
0: और जो
1: निकलूं,
0: छाता नहीं लेके जाता,
1: वो पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएगा कुछ ना कुछ
0: पेड़ के
1: अपने.
0: थ्रू भी उसको लाइटिंग हिट की, तो सो जो नहीं प्रोटेक्ट करेगा वो तो सफर करेगा ना, चाहे फिजिकल हो चाहे इमोशनल. अभी हम बोल रहे हैं कि फिजिकल तो बहुत इजी है. क्यों? क्योंकि हमारे लिए फिजिकल प्रोटेक्शन बहुत इजी लगती है. सेम थिंग कैन हैपन विद इमोशनल प्रोटेक्शन. इमोशनल प्रोटेक्शन भी जब हम अपनी करेंगे, तब भी यही लगेगा, तो क्या हुआ उन्होंने रूडली बात कर दी. तो
1: विल वी
0: जैसे
1: रीच
0: ही
1: एवर एट द स्टेज कि किसी ने मेरे साथ गंदे तरीके से बात की, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे इंसल्ट कर दी, मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो मुझे हर्ट नहीं होगा?
0: डोंट यू थिंक यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन योर सेल्फ? यस, जस्ट हैव टू टेक केयर. एक दिन ध्यान रख के देखना है कि कैन आई डू दैट, या क्या मैं इतना कमजोर हूं कि हर एक के व्यवहार को अपने ऊपर हावी होने देता हूँ. क्योंकि इन टूडेज टाइम इट इज रिस्की, इट इज रिस्की अगर हम अपना कंट्रोल सारा बाहर दे देंगे, क्योंकि चैलेंजेस बहुत है.
1: यस, वी ऑलवेज से ना, यू नेवर नो दूसरे व्यक्ति कैसे रिएक्ट करने वाला.
0: एग्जैक्टली, नाउ दैट्स द पॉइंट. सबके व्यवहार आज बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं. मतलब बाहर तो क्यों जाना, अपने घर के अंदर भी अगर हम देखें तो सडनली ये बैठे बैठे अभी गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इनको क्या हो गया? क्योंकि हर एक के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और वो कई बार एकदम से. तो लोगों के जो रिस्पॉन्सेज हैं, रिएक्शंस हैं, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं. अब मेरा रिस्पॉन्स आपके रिस्पॉन्स पे क्योंकि डिपेंडेंट है, तो आप जब अनप्रेडिक्टेबल होते हो तो मेरा क्या हल होगा अंदर?
1: हाँ, मैं और इनफैक्ट मैंने तैयारी नहीं की हुई होती.
0: मौसम को देखो, मौसम हमें पता है, अब गर्मी है तो गर्मी ही रहेगी, फिर ये आएगा, फिर विंटर आएगा, तो इट्स इजी टू मैनेज. जिस दिन मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो जाए कि अभी अभी गर्मी है, आधे घंटे में बारिश होने लग गई, उसके आधे घंटे में सपोज बहुत ठंड हो गई, तो विल वी बी प्रिपेयर्ड? नो, वी विल से ये क्या हो रहा है, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ वेदर. यू नो, वी विल से आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस. वी नॉट प्रिपेयर्ड, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर्स फ्रॉम पीपल. और उसके लिए और भी इम्पोर्टेंट अब हो गया है कि मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा पहले, बिकॉज यस थिंग्स आर, क्योंकि हर एक के जीवन में चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं. हर एक ने अपने स्टेट ऑफ माइंड का कंट्रोल सिचुएशन पर दिया हुआ है. जितनी सिचुएशन रैपिडली चेंज होती जा रही है, स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता जा रहा है, और जितना उनका चेंज होता जा रहा है, मेरा चेंज होता जा रहा है. आप सोचो इसकी क्या हालत होती होगी. सारा दिन ये मन सिचुएशंस को भी फेस करता, लोगों के भी रिस्पॉन्सेस को फेस करता, फिर जितना आपका अनप्रेडिक्टेबल उतना फिर मेरा भी अनप्रेडिक्टेबल, फिर मेरा अनप्रेडिक्टेबल, तो फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे
1: वो इतना. हाँ, अगेन यू नो, और सच बात तो ये है कि कई बार हमारा रिस्पॉन्स भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है.
0: आप बच्चे के साथ देखो अपना, ठीक है, बच्चा अपने कोई यू नो टीनेज फेज में है, उसके स्कूल में कुछ आज हुआ, कोई बात हो गई, उसने नहीं बताया आपको आकर, लेकिन उसके माइंड में कुछ चल रहा है. अब आपने तो थोड़ा सा कुछ कहा, जो आप हर रोज ही कहते हो वो बहुत प्यार से सुन लेते हैं, लेकिन आज सडनली उसने रिएक्ट कर दिया. दैट इज देयर अनप्रेडिक्टेबिलिटी. लेकिन आप अगर अपना ध्यान रख लेते उस टाइम, तो सिचुएशन वहां की वहां ठीक हो जाएगी 5 मिनट के अंदर. लेकिन वो अनप्रेडिक्टेबल ऐसे बात की मेरे से, ये कोई बात करने का तरीका, तुमको हुआ क्या है, तो मेरा भी रिस्पॉन्स उसके ऊपर, तुम तो हो ही ऐसे गए हो, बिगड़ गए हो, ये तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ही खराब. यू नो, वी कैन जस्ट गो टू सेइंग एनीथिंग टू देम. अब एक तो वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है अंदर से, फिर उसको पता है उसने गलत तरह से व्यवहार किया, उसका गिल्ट, फिर आपका गुस्सा ऊपर से, तो उसका नेक्स्ट रिस्पॉन्स कैसा होगा? सो यूर हैंडलिंग ईच अदर्स रिस्पॉन्सेस की बजाय, अगर हम अपने रिस्पॉन्स की तरफ ध्यान दे, अपने रिस्पॉन्स को हैंडल करे, तो सामने वाले को हैंडल करना.
1: लेकिन दूसरे को सुधारना नहीं है, मतलब उसे समझाना तो पड़ेगा. आपने ये कह तो दिया कि उसका अपना गिल्ट, बट वी नेवर फील कि वो गिल्ट फील कर रहा है.
0: यू हैव टू वन स्टॉप एंड आस्क. जब भी आप, चलो दूसरे को छोड़ो, अपना देखो. जब आप गुस्सा करोगे किसी पर, बच्चे पर, हस्बैंड पर या किसी पर, उसके बाद आपको कितना अच्छा फील होता है उसके बाद. तो आप ऑलरेडी अपने उसमें गुजर रहे हो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, अननेसेसरली पूरा घर का वातावरण कर, तो वो गिल्ट ही तो है ना. और उस गिल्ट में फिर सामने वाले ने
1: कुछ गलत
0: गुस्सा भी कह दिया, फिर ऊपर से ब्लेम भी डाल दिया आपके ऊपर. हाउ फार आर वी एबल टू हैंडल ऑल दिस? एंड ऑल दिस वी से इसलिए हुआ क्योंकि उसने ठीक से बात नहीं की, तो पूरे सिनारियों का ब्लेम भी हम तुरंत उसके ऊपर डाल देते. भले उसने ठीक से बात नहीं की, लेकिन आफ्टर दैट द बॉल वॉज इन माई कोर्ट. ठीक है, उसने किस तरह से बॉल मारी, लेकिन आफ्टर दैट द बॉल वॉज इन माई कोर्ट. नाउ आई हैड द पावर. अगर मैंने उसको ठीक से हैंडल कर लिया होता, सिचुएशन वुड हैव बीन समथिंग एल्स ऑल टुगेदर.
1: व्हाट नीड्स टू बी डन देन?
0: स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. यस, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू सी हाउ टू डू. कि जो हमने फोकस चेंज कर दिया था, जो आपने लास्ट टाइम भी कहा कि सिचुएशन पे ध्यान देना है, ये करना है, ये करना है, तो मेरा अपना खुशी और ये सब तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं आ रही. तो ये सब ध्यान देते देते दूसरों का जो इश्यूज उठ रहे हैं सारे, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने इसको लास्ट प्रायोरिटी पर रखा कि मैं खुश नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मुझे काम तो करने दो.
1: शो मस्ट गो ऑन इवन इफ आई एम नॉट हैप्पी.
0: द शो इज गोइंग ऑन बट देन लुक एट द क्वालिटी ऑफ द शो. सो समवेयर आई विल हैव टू स्टॉप एंड से फर्स्ट आई हैव टू बी हैप्पी देन टेक केयर ऑफ द शो. पहले आई हैव टू बी हेल्दी, फिर बाकी जो ये ड्रामा इनैक्ट होता है हमारे जीवन में सारा दिन, इट्स जस्ट अ ड्रामा. एवरी सीन आई एम इनैक्टिंग, क्वालिटी देखो क्या होती जा रही है, और फिर भी उसको घसीटते जा रहे हैं. एक दिन भी रुक कर हमारे माइंड में ये थॉट नहीं चलता कभी कि ये क्या होता है हमारे घर में रोज. क्यों हम हर रोज एक दूसरे के साथ इस तरह से करते हैं? इज देयर अ वे आउट? क्या कोई और तरीका है जीवन जीने का, या दिस इज द वे?
1: Wonderful. Somewhere we need to actually do this analysis within. और ये देखने की जरूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खड़े हैं. सुजय शिवानी, बहुत सी बातें अभी बाकी हैं, लेकिन एक अवेयरनेस, एक पहला जो पॉज है वो लेने का वक्त आ गया है कि हम खड़े होकर ये देखें कि हम कहाँ खड़े हैं. और जैसा आपने कहा कि ये बहुत जरूरी है, हर सिचुएशन में ये देखें कि हम चाह क्या रहे थे. हमने हर सिचुएशन, हर काम इसलिए किया कि हम खुशी चाहिए थी, या इट विल गिव मी हैप्पीनेस, यू नो, इट विल गिव अदर्स हैप्पीनेस, इट विल गिव मी हैप्पीनेस. सो अगेन माय डिपेंडेंसी, माय लाइक खुशी लेने की जो डिपेंडेंसी थी वो सब पे पहुंचती जा रही थी, और वहीं जो है वो बार बार कभी हाँ कभी ना कभी ऐसा चलता जा रहा था. अगेन करना क्या है ये वक्त बताएगा, आने वाली कड़ियां बताएंगी, लेकिन आज की इस बातचीत के लिए एटलीस्ट एक पॉज हमें लेने के लिए प्रेरित करने के लिए थैंक यू सो मच.
0: शांति.
1: कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है, आपका हम स्वागत करते हैं. ये एक ऐसा मंच है जिस पर खुली बात होती है, तो या तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 01242667000, 9993446, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. Awakening with Brahma Kumaris में हैप्पीनेस इंडेक्स चेक हो रहा है इन दिनों, तो आप भी सफर में हमारे साथ रहिएगा. कौन सी ऐसी बातें हैं, किन बातों का ध्यान रखने के बाद हम खुशी का अनुभव कर सकते हैं, आने वाली कड़ियों में जानेंगे. अभी विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा? कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता।

0: अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता और पेड़ों का रंग लाल, पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह।

सोचो, अरे सोच के देखो, खेत में उगती टॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े और नल खोलो तो

0: आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: में बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इस पूरे सफर में जो हम तय कर रहे हैं, एक नई जिंदगी हमारे सामने आ रही है, कुछ नई मान्यताएं आ रही हैं और हम ये समझ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं जो कि एक प्यार करने वाली, खुश रहने वाली, एक पीस लविंग आत्मा हूँ। कौन हूँ मैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इतना कुछ हमने जाना है कि कैसे अपनी जो पुरानी गलत धारणाएं हैं उन्हें चेंज करके, एक पॉजिटिव थॉट का संचार करके, उसे पैदा करके हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी मुश्किलें आ रही हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम जाते हैं तो इतना आसान नहीं होता। तो आज हम ये तलाशते हैं कि कैसे उन्हें आसान किया जा सकता है। और हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। शिवानी, आज जो पहली बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि काफी कुछ क्लियर हो गया है, लोगों को भी क्लियर होगा, मुझे भी, कि मैं एक प्यार करने वाला, एक पीस लविंग व्यक्ति हूँ, या अंदर मैं जो खुद हूँ वो ऐसा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी वातावरण ने, एनवायरमेंट ने मुझे चेंज किया और मैं वही चीजें बाहर तलाशने लग गया। ये बात तो समझ में आई, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं गई तो वो मुझे लगा कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही मैं। बार बार कंटिन्यूस रिमाइंडर जो था वो इतना आसान नहीं था। और प्रैक्टिकल लाइफ में जो जो बातें मुझे तंग करती थी, कितना समझाने के बाद भी अभी भी तंग कर रही है। ट्रस्ट तो चलिए ठीक है, फिर भी बात है, एंगर और हैप्पीनेस, ये अभी भी मेरी कई कई चीजों से जुड़ी हुई है। तो क्या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें मैं अपने, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हैं तो उन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लाइफ में इम्प्लीमेंट करके मैं कर सकती हूँ?
1: बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, जिनसे पूरा सोचने का तरीका परिवर्तन हो जाएगा। एक जैसे सिंपल चीज आपने कही कि हमें समझ में आ गया कि गुस्सा नहीं करना है, लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता है। सबसे पहली चीज कि अपने आप को अगर आपने समझा दिया कि ये काम की चीज नहीं है, आप बार बार अपने आप को रिमाइंड कर देंगे, हमेशा जब आप कर भी देते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल चले भी जाते हैं, आफ्टर दैट डेफिनेटली पॉज फॉर अ मिनट। यू नो, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक्स, बट इफ वी डोंट डू इट दैट टाइम, वी विल जस्ट कीप ऑन, यू नो, दैट संस्कार विल अगेन गेट री इन्फोर्स्ड। तो अगर गुस्सा आ भी जाए, सिट बैक विद योर सेल्फ देन एंड देयर। कई बार हम कहते हैं ना, जैसे रात को बैठकर अपने सारा दिन की रूटीन देखकर उसमें से आपने क्या लिया, क्या छोड़ा, दैट्स ओके, बट आई फील समटाइम्स उसी टाइम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर उसी टाइम पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो जैसे ही आपने अपना टेम्पर खो दिया किसी के ऊपर, सिट बैक, इवैल्यूएट द सीन कि क्या सीन हुआ था, एंड जस्ट सिट बैक एंड लुक एट इट नाउ एज एन ऑब्जर्वर। अभी तक हम उस सिचुएशन का हिस्सा थे, तब जब हम हिस्सा होते हैं तो परिस्थिति कुछ और दिखाई देती है, और जब हम परिस्थिति से हटकर साक्षी होकर देखते हैं, आप देखिए एक एक्सीडेंट हो जाता है, जो दो लोगों के बीच एक्सीडेंट होता है उनका दृष्टिकोण बिल्कुल डिफरेंट है। उनको एक्चुअली पता भी नहीं चला किसकी गलती थी, कौन रॉन्ग, क्योंकि वो अचानक हो जाता है। लेकिन जो साइड पे, रोड पे लोग चल रहे हैं, जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ दूर से देख रहे हैं, उनको एग्जैक्ट सिचुएशन पता होती है कि एक्चुअली किसकी गलती थी, कौन कहां से आया, कैसा हुआ। तो दैट ऑब्जर्वर इज इन अ बेटर पोजिशन टू टेल कि एक्चुअली व्हाट हैड हैपेंड, वी आर नॉट हु आर इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। तो यही सारा दिन में भी होता है। अगर हमारा किसी के साथ कुछ हो भी गया, तब हम उस राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थे। अब हम थोड़ा सा साक्षी हो जाएं, ऑब्जर्व करें कि एक्चुअली क्या हुआ था। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई करें अपने आप को दूसरे की पोजीशन में रखने की कोशिश करें, जिसको हम एम्पथी कहते हैं। जो हम कहते भी हैं, हाँ मैंने उनके दृष्टिकोण से सोचा, लेकिन फिर भी मुझे लगता मैं राइट हूँ, यू नो, दैट्स बिकॉज मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं राइट हूँ,
0: मैं सही हूँ,
1: मैं राइट हूँ। व्हाट वी नॉर्मली ट्राई टू डू इज, आई एम नॉट सेइंग आई एम रॉन्ग, बट आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग ईदर। यू सी, अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन डिस्कशन के दौरान हमने पहले ये मान लिया है मैं राइट हूँ, आप तो रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस डिस्कशन का बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। हम ये मानकर चलें कि आप जो कह रहे हैं वो आपके दृष्टिकोण से बिल्कुल राइट है, इसलिए आप कह रहे हैं। ये कहना दूसरा रॉन्ग है, ये डिस्कशन को फिनिश कर देता है। आप बात करने का कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। सबसे पहले ये सोचिए कि वो जिस सीट पर बैठा है वो अपनी तरफ से राइट ही कर रहा होगा, भले मेरे लिए वो रॉन्ग है, लेकिन उसके लिए वो राइट है. कोई भी व्यक्ति जान पूछ के गलत नहीं करता है, ये 100% है. कोई भी नहीं करता. द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, बट उस समय उस व्यक्ति ने उस बात को सही समझ कर ही किया था. तो अगर मैं ये समझ लूं कि आप जो कर रहे हैं वो राइट है, पहली बात मेरा आपके तरफ जो दृष्टिकोण है वो चेंज हो जाता है. आई स्टिल हैव माई रिस्पेक्ट. आई मे नॉट अग्री with what you're doing, but I have not lost respect. Lekin when I start thinking you are wrong, I lose my respect. Okay, you know, I don't respect, I don't trust, I have lost everything. So you are right. Now I go into your position and really get up and go into your position. You know, bilkul aapki tarah sochne ki कोशिश करो और ढूंढो कि कहां कौन सी चीज आपको राइट लग रही है. और जैसे ही आपकी तरह सोचने की कोशिश करूंगी ना, मुझे लगेगा कि राइट आप अपनी तरफ से राइट ही थे. लेकिन समवेयर हम दोनों के बीच वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और वो शायद रहेगा टिल वी टॉक इट आउट. बट आप राइट हैं एंड नाउ आई स्टार्ट माय डायलॉग विद यू. बट व्हाट विल बिकम इजी इज टू एक्सेप्ट यू. मुझे आपको एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाएगा.
0: आई थिंक उससे पहले मुझे लगता है ये एक्सेप्ट करना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है.
1: डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, नहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा होगा.
0: हाँ होता है.
1: बिकॉज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज दैट वी आर ऑल डिफरेंट. अगर हम सब एक जैसे हो जाएं तो व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक. इमेजिन एवरीवन थिंकिंग द सेम, टॉकिंग द सेम, बिहेविंग द सेम. दिस दुनिया की ब्यूटी ही इस चीज में है कि वी आर ऑल डिफरेंट एंड लुक एट इट. लेकिन सारा दिन हम इस ब्यूटी को खत्म करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम हमेशा दूसरों को अपने तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे जो ठीक लग रहा है आप भी वैसा करना शुरू कर दीजिए, मतलब आप मेरे जैसे बनते जाइए. यू नो आई एम ट्राइंग टू मेक यू लाइक मी. दैट्स नॉट ब्यूटिफुल. यू आर ब्यूटिफुल बिकॉज यू आर यू एंड दिस वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ दैट. सो वी एक्सेप्ट के एवरी वन इज यूनिक. Everyone is different, but everyone is right in what they are saying. Let's try and understand them. So acceptance, ये सबसे important चीज है. किसी को भी respect करने की, किसी को भी trust करने की, वो जो है, जैसा है, पहले उसको accept कर लीजिए. जब आप accept कर लेंगे, आप देखिए एक माँ एक बच्चे को सबसे बड़ा motivator होती है उसे change करने के लिए, क्योंकि एक माँ एक बच्चे को accept करती है. She has unconditional love. और किसी भी relationship में शायद unconditional love नहीं आता. One unconditional love is now God and me. That is unconditional love. And that's why the power of God is something which can transform one easily. Hum surrender kare abhi aur hum abhi change ho jayenge. Because there is unconditional love. Usse pata hai, hume ye pata hai ki wo humare acche ke liye hi kar raha hai. Ya keh raha hai jo bhi ho raha hai. So similarly the mother and the child. Very unconditional. Can I have that with other people? Unconditional love. Can I accept them the way they are? हमारी ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा कुमारीज के जो फाउंडर रहे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इतनी बड़ी संस्था थी. जब शुरू शुरू में इतने सब लोग आए, अलग अलग परिवार से, अलग अलग संस्कार, हर चीज अलग. जब आए हर एक में कोई कमजोरियां, कोई विशेषताएं, सब कुछ लेकर आए, लेकिन उन सबको इकट्ठा कर दिया. उन सबको एकजुट करके जो संगठन बना, उसकी सबसे बड़ी कारण ये थी कि ब्रह्मा बाबा ने हर एक को एक्सेप्ट कर लिया कि पहले आप जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो एंड नॉट फ्लैटरी. दैट्स आल्सो वेरी लिटिल बैलेंस दैट हैज टू बी मेंटेन. और वो क्या करते थे कि उस व्यक्ति को पहले उसकी विशेषता बताते थे. कई बार हमें खुद अपनी विशेषता नहीं पता होती, तो उसकी विशेषता बताते थे. आपके अंदर ये है, आपके अंदर ये है, जेन्युइन. एंड फिर धीरे से बता देते थे अगर ये सब चीजों के साथ आप ये वाली भी एक चीज करो तो and that person would be like anything for you. You know,
0: you've really made me
1: feel
0: good. Yeah,
1: because you have accepted me the way I am, so I am liking myself now because you are liking me. You know, sometimes it happens ki I start liking myself after that and then I want to make myself better. So acceptance ek bahut easy ho jata hai ek energy transaction ko smooth karne mein, nahi to blockage hai if I reject you.
0: आई थिंक एक्सेप्टेंस अपने आप को भी होना चाहिए.
1: एक्सेप्टेंस सबसे पहले अपने आप को.
0: समवेयर यू नो लाइक वी डोंट एक्सेप्ट आवरसेल्फ. द मोमेंट वी विल एक्सेप्ट आवरसेल्फ आल्सो वी विल.
1: बट देन दैट डजंट मीन एक्सेप्टिंग दैट आई एम एब्सोल्युटली परफेक्ट द वे आई एम. बट एक्सेप्टेंस दैट यस आई हैव ऑल दीस स्ट्रेंथ्स एंड थोड़ी सी कमजोरियां भी हैं व्हिच आई विल चेंज. लेकिन हम एक्सेप्टेंस को जो दूसरा एक रूप दे देंगे वो है आई डोंट नीड टू चेंज, आई एम जस्ट परफेक्ट. तो वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है. तो फर्स्ट स्टेज होगी कोशिश कीजिए एंड रियली प्रयास करेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि वो जो है जैसे है और हर एक के अंदर विशेषता देखिए बिकॉज एवरीबडी इज ब्लेस्ड विद दैट एवरीबडी बट वी फॉरगेट ऑल द 99 स्ट्रेंथ्स एंड वी लुक एट दैट वन वीकनेस. इनके अंदर ये आदत है, इनके अंदर ये आदत है और जितना हम उस आदत को यू नो हाईलाइट करते रहेंगे बार बार वो आदत और भी ज्यादा पक्की हो जाएगी और जितना हम उनकी विशेषताओं को हाईलाइट करेंगे विशेषताएं और पक्की होते जाएंगे. तो एक्सेप्ट कीजिए एंड सेकेंड वेरी सिंपल थिंग विल बी टू लेट गो, यू नो डोंट होल्ड ऑन टू situations.
0: Situations and people also.
1: Situations and people also. Yeah, let go of situations ke past mein kuch hua hai. It's okay. You know, let it go. Kyunki jitna hum usko pakad ke rakhenge, wo aur bhi zyada, you know, hume takleef hi dene wala hai. Jaise humne us din baat ki ke 40,000 thoughts hum create karte hain, usme se 85 to 90% thought waste category mein jaate hain, which are thoughts of either the past और द फ्यूचर. बहुत ज्यादा बीती हुई बातों के बारे में बार बार चिंतन करना, उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन क्यों किया, वो ऐसा ना करता तो ऐसा करता, मैंने ऐसा जवाब क्यों दिया, मैं ऐसा ना बोल, एनर्जी बीइंग कंज्यूम्ड एब्सोल्युटली, यू नो ड्रेनिंग मी आउट. ठीक है, हो गया, फुल स्टॉप, यू नो जस्ट फुल स्टॉप. और अगर नहीं हो तो भी अपने आप को, अगर ये चेन ऑफ थॉट्स चल रही है, यू कैन एक्चुअली से टू योरसेल्फ I'm wasting energy. Full stop. एक बार, दो बार, तीन बार, अपना ही माइंड है. हम औरों को इतनी अच्छी तरह से बताते हैं और लोग हमारी बात मान लेते हैं, तो हमारा अपना मन हमारी बात क्यों नहीं मानेगा.
0: यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि हमारा अपना दिमाग हमारी बात कौन मांगेगा, हम कौन है.
1: दिमाग अलग चीज है,
0: हमारा मन,
1: मन अलग चीज है. इट्स द माइंड एंड द ब्रेन.
0: दिमाग
1: ब्रेन है तो दैट्स फिजिकल. तो दिमाग नहीं मान रहा है कुछ भी, मन मानता है उस बात को और फिर वो सिग्नल ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट करता है.
0: किसकी बात मान रहा है,
1: किसकी बात मानता है, व्हाट डू यू थिंक, हु इज द वन हु इज डूइंग दिस वर्क.
0: या दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क, लाइक यू नो बिकॉज़ हु एम आई,
1: या हु एम आई, बिकॉज़ हम सारा दिन इतनी जो बात करते हैं आई माइंड एनर्जी कॉन्शियसनेस, लेकिन समवेयर वी हैव फॉरगॉटन कि व्हाट इज इट, कि वो है कौन. आज अगर हम अपना परिचय दें, वी विल टॉक अबाउट आर नेम, आर पोजिशन, आर स्टेटस, आर फैमिली डेजिग्नेशन, लेकिन ये सारी चीजें तो वो है जो हमने प्राप्त किए. नाम भी हमें किसी और ने दिया, इट वॉज एन आइडेंटिफिकेशन लेबल, और कुछ भी नहीं है.
0: आई मीन्स लाइक माई सोल, माई आत्मा.
1: इट इज, आई मीन्स द एनर्जी विच इज द मास्टर ऑफ दिस बॉडी. It's not my soul.
0: Okay.
1: I say my hand is paining. I never say I the hand is paining. मेरा सर आज बहुत दर्द हो रहा है. मेरा. तो मेरा सर, मेरे हाथ, मेरे पाँव. आज मेरा पूरा शरीर ही टूट रहा है. My body. My body is aching today. My body. So there is something.
0: Who owns it?
1: And that's why it's saying it's my body. I never say I the body.
0: But this I is the energy.
1: Is that energy?
0: So where is that energy?
1: वो शक्ति है. It's like tube light. Tube plus light. Physical glass tube plus electrical energy. Human being. Human body. ये जो मिट्टी का बना है इसलिए वो humus word से आता है. And being. That energy. That consciousness. जीव आत्मा. जीव ये शरीर, आत्मा उसको चलाने वाली है. ये हाथ है, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता. आई चूज, इधर रखू, इधर रखू, किसी को मारू, किसी को प्यार दू, किसी को आशीर्वाद दू. इट्स द सेम हैंड बट इट कांट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन. तो नाउ आई आस्क माई सेल्फ कि एम आई दिस हैंड, फ्लैश, ब्लड, बोन्स, और एम आई द पावर हु चूजेस व्हाट टू डू विद दिस हैंड.
0: एंड वेयर इज दैट पावर, इट्स फ्लोइंग विदिन अस.
1: इट्स एनर्जी व्हिच इज कॉन्सेंट्रेटेड हियर. It's absolute energy. It has to have a seat. The seat of the soul. वो कहाँ है वो स्थान जहां से बैठकर मैं उस पूरे शरीर को चलाऊंगा. जैसे एक बहुत बड़ा कमरा है, उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो जो कंट्रोलर है वो पूरे कमरे में भाग कर नहीं या इसको कोऑर्डिनेट करता है, उसका एक कंट्रोल बॉक्स है.
0: ऑफ कोर्स दिस इज द वे सूर्य, यू नो, लाइक सन इज
1: देयर. एब्सोल्युटली. तो वो कंट्रोल बॉक्स के पास वो कंट्रोलर बैठता है. सिमिलरली इस बॉडी का कंट्रोल बॉक्स ये ब्रेन है.
0: ओके,
1: द बॉक्स, इट्स द बॉक्स, इट्स द सीपीयू. इट्स लाइक यू हैव अ मशीन, वो मशीन के लिए चलाने के लिए आपके पास एक कंप्यूटर है. तो ये वो मशीन है, इस मशीन को चलाने के लिए हमारे पास वो कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर वो ब्रेन. लेकिन उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला, कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करेगा, उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला मैं आत्मा, वो प्रोग्रामर हूँ. I have the choice. Jo instruction main feed karu, the computer will only process, send the message to the entire nervous system, the body will work accordingly.
0: Okay, so my programmer or I? Yeah. Like my,
1: right in the, yeah, I. Now again, it's not my. Hum log bahut baar bolte hain, meri atma. Nahin, main atma. I the energy. Mera sharir. लेकिन हम इतने ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो हम उल्टा कर देते हैं, ये मैं हूँ शरीर और ये मेरी आत्मा है.
0: But why this soul, I the soul, is not in the heart? You know, I always felt that it's somewhere, you know, deep within in my heart. It's right. Not here.
1: सारा जो शरीर का कंट्रोल है, जब आप सोचते भी हो तो कहाँ सोच रहे हो? Where do you feel that?
0: Yeah.
1: You know, you say यहाँ, you know, बहुत सोच चल रही है. भाग्य की भी बात करते हैं तो हम कहाँ बात करते हैं? क्योंकि आत्मा जैसे कर्म करेगी उसका भाग्य वैसे बनेगा. तो वो यहाँ है, संकल्प शक्ति यहाँ है, पूरे शरीर का कंट्रोल यहाँ है, हार्ट का भी कंट्रोल
0: ऊपर,
1: इट्स अ पंपिंग ऑर्गन सिर्फ, उसका भी कंट्रोल यहाँ से हो रहा है. आज हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है इफ द सोल वॉज
0: विद इट,
1: ऐसे आज शरीर के कोई भी अंग का आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, आप उसको काट के रख सकते हैं. लेकिन वेरी लिटिल इज स्टिल नोन अबाउट द ब्रेन, स्टिल वेरी, यू नो, लॉट ऑफ रिसर्च हैज टू बी डन, क्योंकि दिस डायमेंशन ऑफ इट उसकी अभी भी स्टडी चल रही है, विच इज द एनर्जी पार्ट ऑफ इट. क्योंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच, दैट्स द लोकेशन, एंड आत्मा वहां से बैठकर, एक एक आत्मा है क्या चीज, मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ, दैट्स द माइंड. द माइंड इज नॉट different, mind is also energy. So I the soul, I, when I think, we call it the mind. It's like you are one person, Kanupriya, but to somebody you're a mother, to somebody you're a wife, to somebody you are an actress. One person, different role. I the energy, jab main sochne ka kaam karti hu, mind hu. Man mein do teen sankalp aayenge, tab main un sankalpo ko samajhti hu, परखती हूँ, निर्णय लेती हूँ. उसको हम बुद्धि कहते हैं, इंटेलेक्ट, द डिसीशन मेकिंग पावर, इंटेलेक्ट. ये बहुत बुद्धिवान है, ये बहुत इंटेलिजेंट है. नॉट इंटेलिजेंस मींस एकेडमिक, बट वो परखने की शक्ति. तो मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ, मन, जब मैं आत्मा निर्णय ले रही हूँ, बुद्धि, और जो मैंने निर्णय लिया वो कर्म में आएगा. किसी ने सिगरेट ऑफर किया, पीऊ नहीं पीऊ, पीऊ नहीं पीऊ, बुद्धि ने कहा पी लो कुछ नहीं होता, पी लिया. छह महीने बाद फिर ऑफर किया, दो थॉट चले, बुद्धि ने फिर किया पी लो, ले लिया. आठ दस बार वही चीज रिपीट कर ली तो मन में दो संकल्प नहीं उठेंगे, पियो या नहीं पियो,
0: पियूंगा,
1: क्योंकि अब वो मेरी आदत बन गई है, जिसको हम कहते हैं संस्कार. तो जो संस्कार बार बार, अगर हम जो आदतें बनती जाती हैं वो संस्कार बन जाती है, और वो ही जो संस्कार बनेंगे वो थॉट फिर क्रिएट करेगा. यू नो, बहुत बार झूठ बोला, झूठ बोलने की आदत पड़ गई, तो वो मेरा संस्कार है. अब मेरा संस्कार है झूठ बोलने का, तो मैं बहुत जल्दी झूठ बोलने का संकल्प कर लेती हूँ. तो इट्स अ साइकिल, इट्स अ चेन ऑफ, यू नो. सो दैट इज मी, आई द सोल एम दीज थ्री एनर्जीज. इट्स लाइक वन एनर्जी बट थ्री फैकल्टीज ऑफ द सेम एनर्जी. अब हर आत्मा के अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं. इफ वी अंडरस्टैंड दैट, हमारा लोगों से संबंध में आना या इंटरेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है.
0: लेकिन हम अपने संस्कार को, इसका मतलब अपनी बुद्धि से, जब आई का बुद्धि वाला एस्पेक्ट हम लेते हैं, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं.
1: बिल्कुल, चेंज तो कर सकते हैं अपने संस्कारों को विद अंडरस्टैंडिंग. संकल्प वही तो एक साइकिल है ना, कहीं भी अगर उस साइकिल को तोड़ दिया तो वो वर्क हो जाएगा. इसलिए हमने कहा, अगर थॉट पे तोड़ दे कि नहीं, अभी तक संस्कार था गुस्सा करने का, अब थॉट क्रिएट किया, नहीं मैं शांत स्वरूप हूँ, चेंज कर दिया, दो बार चार बार गुस्सा नहीं करेंगे, धीरे धीरे संस्कार चेंज हो जाएगा। आत्मा के जो संस्कार होते हैं, कुछ संस्कार हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, जेनेटिक, हेरिडिट्री, हमारा कुछ बहुत ज्यादा उसमें चॉइस नहीं है, वी गेट इट। कुछ संस्कार हम अपने पूर्व जन्म से कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बिकॉज इट इज एनर्जी, डजंट गेट क्रिएटेड, डजंट गेट डिस्ट्रॉयड। एक कॉस्ट्यूम छोड़ा शरीर, दूसरा कॉस्ट्यूम लिया, इस शरीर में किए हुए कर्म और उसके संस्कार कैरी फॉरवर्ड हुआ,
0: सारे हो जाते हैं और
1: इम्प्रेशन रहेगा, उसमें से कुछ मर्ज्ड रहते हैं, कुछ इमर्ज हो जाते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग सारी है आपकी सीडी के ऊपर, सारी रिकॉर्डिंग है, एब्सोल्युटली हर रिकॉर्डिंग है। तीसरे प्रकार के संस्कार होते हैं जो हमारे वायुमंडल से बनते हैं, किस स्कूल में, किस वातावरण में हम पले, एज द कंपनी, यू नो। चौथे प्रकार के संस्कार है विल पावर। अब जो हम बात कर रहे हैं कि विल पावर से हम अपने संस्कार को चेंज कर सकते हैं, जो फर्स्ट थ्री थे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, पेरेंट्स से मिले, पास्ट बर्थ से कैरी फॉरवर्ड किया, एनवायरमेंट से मिल गए, तो अब जो फीलिंग ऑफ विक्टिमाइजेशन है वो इन तीनों की वजह से आ रही है। ये मेरी आदत है जी, मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं बदल सकता। अगर आज संकल्प करें दृढ़ता से, वो चेंज हो जाएगा। फोर्थ, क्योंकि संस्कार ही संस्कार को काटता है,
0: अच्छा,
1: जैसे लोहा लोहे को काटता है, विल पावर से क्रिएट किया हुआ संस्कार हमारे इन तीनों, पहले तीनों प्रकारों के संस्कार को काट सकता है। इट्स वेरी, बहुत शक्तिशाली है ये। एंड पांचवे प्रकार के संस्कार है मुझ आत्मा के अपने ओरिजिनल संस्कार। व्हाट इज माय ओरिजिनल नेचर? व्हेन आई टुक द फर्स्ट कॉस्ट्यूम, व्हाट्स द ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ दिस एनर्जी? यू नो, प्रॉपर्टीज विल कीप
0: changing. That must be same actually for
1: everyone.
0: Huh?
1: That is the beauty.
0: Yes.
1: It's the same for everyone. So jab mujhe pata
0: chalta
1: hai, because
0: when we were pure without anything else, right. We must be similar.
1: Absolutely. So har atma ke jo original sanskar hai, wo hai peace, love, happiness, purity, power, willpower, knowledge, bliss, shanti. ये मुझ आत्मा का अपना संस्कार है, इसलिए हमने उस दिन कहा शांति कहीं चाहिए नहीं, ये तो मेरी अपनी नेचर है। सिर्फ ये है कि उसके ऊपर इतनी सारी लेयर्स जो हो गई है, तो वो मर्ज्ड हो गई है। तो शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, आनंद, खुशी, शक्ति, ये मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार्स हैं। जब हमें अपनी ये पहचान मिल जाती है कि मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप, मैं क्रोध स्वरूप आत्मा नहीं हूँ। इट्स लाइक द साड़ी इज वाइट, बट इफ आई गो इन द ट्रेन फॉर टू डेज, हो सकता है उतरने के बाद इसके ऊपर थोड़े से दाग लगे हो, लेकिन नॉलेज है कि इसका ओरिजिनल कलर वाइट है। अब उस पर थोड़ा सा दाग लगा है, आउट, यू नो। अगर चार लोग सेम वाइट साड़ी पहनकर गए और नीचे उतरे, हर एक का दाग तो अलग अलग होगा। सिमिलरली व्हेन वी बिगैन दिस जर्नी, वी वर ऑल द सेम, वेरी प्योर, लेकिन हर एक की जर्नी अलग अलग रही, तो हर एक पे दाग आज
0: अलग
1: अलग अलग है। लेकिन जब मैं आपसे मिलो, अगर मुझे ये अवेयरनेस रहे कि यू आर अ ब्यूटिफुल बींग, आप भी एक प्योर पवित्र शांत स्वरूप आत्मा हो, मैं आपको वो व्हाइट कलर में देखूं, आपके दाग को नहीं देखूं, तो आपको एक्सेप्ट करना, आपको रिस्पेक्ट करना, आपको ट्रस्ट करना, देयर इज नो एफर्ट।
0: इनफैक्ट ब्यूटीफुल। एंड उससे पहले सबसे बड़ी बात, क्योंकि अपने आप भी तो एक्सेप्ट करूं कि मैं भी होती हूं प्योर।
1: सबसे इम्पोर्टेंट तो जब हम अपने को कर लेंगे ना, तो दूसरे को करना तो
0: आसान,
1: बहुत इजी है।
0: That's what I'm saying,
1: बहुत इजी है,
0: क्योंकि खुद के लिए इतना प्योर सोच पाना,
1: राइट,
0: यू नो, लाइक कि आई एम सो प्योर एंड सो नाइस,
1: एब्सोल्युटली,
0: आई एम सो गुड,
1: एंड इट्स द ट्रूथ। And that's why I like these things. I like peace. I like love. I like happiness. Because this is what I'm made of. This is my nature. It's just that ये जो छोटे-छोटे दाग ऊपर से लग गए हैं, मैंने इसको क्यों अपना original संस्कार समझा?
0: तो somewhere deep within, you know, जब हमें ये एहसास हो जाए कि I'm pure like white, I'm pure like, you know, इतना ये हूँ, तो फिर मेरे अंदर जो अंधेरा था वो भी खत्म हो जाएगा, रोशनी मुझे मिल जाएगी।
1: नॉलेज मिल गई ना, नॉलेज इज लाइट, जैसे ये नॉलेज मिल गई, और इसीलिए सोल कॉन्शियसनेस, मतलब जैसे आत्मा शब्द आपको भी तो पता है, आपने आज पहली बार नहीं सुना, लेकिन हमने स्पिरिचुअलिटी को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा अलग कर दिया था, कि जब हम सत्संग में जाए, हवन कर रहे हैं, तो आत्मा, हाँ जी, आत्मा आत्मा, ऑफिस में गए तो आत्मा, क्या आत्मा का तो कोई रोल नहीं है उसके अंदर, देयर आई एम द सीनियर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर और व्हाटएवर, सो देन इट्स नॉट प्रैक्टिकल। सो व्हाट वी लर्न विद राजयोगा मेडिटेशन इज, स्पिरिचुअलिटी इज फॉर प्रैक्टिकल लाइफ. आप आत्मा हैं तो आप ऑफिस में भी आत्मा ही हैं, आप अपने घर में भी आत्मा ही हैं.
0: एंड दैट एनर्जी व्हिच इज देयर, आई एम कांस्टेंटली दैट.
1: ट्रू. तो मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेज है सोल कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, हु एम आई.
0: वंडरफुल शिवानी, बट राइट नाउ लाइक हमारे पास अब वक्त नहीं है, लेकिन बहुत मतलब इट्स सो मच ऑफ विद सो मच ऑफ क्लैरिटी. एक्चुअली मुझे रियलाइज हो गया है, अभी कितना मेंटेन रहेगा ये देखते हैं. लेकिन यस, यू नो लाइक सही बात है कि मैं जब तक यहाँ बैठी हूँ मैं आत्मा को मान सकती हूँ, लेकिन बाहर निकलते क्या मैं ये मानूंगी कि ये जिस पावर की, जिस एनर्जी की बात कर रही हूँ यही सब कुछ गवर्न कर

माया को तलाश रहे हैं, वो मैं जो कि ऑलरेडी है इतना प्योर, इतना प्यारा, इतना पवित्र, लेकिन कहीं हम भूल चुके थे, तो उससे धूल साफ करके वो सफेद रंग, वो प्योरिटी फिर नजर आ रही है। तो इसी प्योरिटी को मेंटेन करेंगे। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं, फोन नंबर है 9873666555। और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो इसी के साथ आप दीजिए इजाजत, लेकिन याद रखिए अपने मूल को स्वीकारने का, और उसे भूलना नहीं है किसी भी एस्पेक्ट में जब हम जिंदगी जी रहे हैं। अगली कड़ी में क्या मेडिटेशन आसानी से किया जा सकता है और क्यों कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: झटका झटका।
1: दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर दूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटर दूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार

0: शरती मैं हो गए माँ शरती तेरे बिना आयो
1: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मित्रों नमस्कार, आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम वतन का राग। अनेक महापुरुषों की तपोभूमि का साक्षी भारतवर्ष और उसके उत्कर्ष को राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने इस ओजस्वी और प्रेरणादायी गीत के माध्यम से व्यक्त किया है। पौराणिक चरित्रों की शौर्य क्रीड़ा से लेकर बुद्ध और महावीर जैसे ऐतिहासिक महापुरुषों की गौरव गाथा तक भारत भूमि की महानता का चित्रण श्री मैथिली शरण गुप्त ने इस गीत में किया है। भारतवर्ष के धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक महात्म्य के साथ संस्कृति और परंपराओं की महानता का समावेश इतने अद्भुत ढंग से किया है कि हम इस भारत भूमि में जन्म लेकर अपने आप को भाग्यशाली मानकर गौरवान्वित हो जाते हैं।

0: अभी जो गीत आपने सुना उसके रचयिता थे श्री मैथिली शरण गुप्त।
1: ये वतन का
0: भारत की आजादी की लंबी लड़ाई में राम प्रसाद बिस्मिल जैसे जाबाजों का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने खुद को भारत माता के लिए कुर्बान तो किया बल्कि अपने इनकलाबी गीतों से ऐसी अलख जगाई कि आजादी के दीवानों को अंग्रेजी हुकूमत की गोलियां भी नहीं रोक पाई। सरफरोशी की तमन्ना के लिए विख्यात बिस्मिल के ऐसे कई तराने हैं जिनका असर दिल की गहराइयों को छू जाता है। बिस्मिल का ये तराना भी उसी जज्बे का पैगाम है जिसके असर से सारा हिंदुस्तान बसंती रंग में रंग गया था।

0: दोस्तों, ये था रामप्रसाद बिस्मिल का कलाम।
1: ये वतन का
0: अगला गीत श्री रघुवीर शरण द्वारा रचित अवधि रचना है। एक राहगीर बटोही को संबोधित करते हुए इस गीत में अपने देश की माटी की गंध के साथ भारत देश का बखान किया है और साथ ही उन महापुरुषों को भी स्थान दिया है जिनके सद्विचारों से देश का निर्माण हुआ। कवि ने अपने देश की काया सीमा का विवरण देते हुए शस्य श्यामला कृषि भूमि, कामिनी विरह और कोयल की कूक से गुंजित मनोहारी वातावरण का ललित चित्रण करते हुए देश के प्रति अगाध लगाव का प्रमाण दिया है।

0: ये था रघुवीर शरण का लिखा हुआ गीत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायक कलाकार थे तापसी नागराज, श्रीधर, मृदुल, अभिषेक, अजीत और राहुल। संगीत परिकल्पना तापसी नागराज और संगीत निर्देशन श्रीधर नागराज। आलेख डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव का और वाचक स्वर मुरलीधर नागराज। कार्यक्रम परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वयक संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।
1: दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, खतों से हमें जरूर सूचित करें।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर। आप कह रही थी ना उस दिन, हाँ मैंने पूछा था कि अगर मैं नफरत नहीं दूं उसके बदले में या हर्ट नहीं हो, तो आपने बोला खाली भी रहो, न्यूट्रल भी रहो तो काफी है, क्योंकि आप अपने ओरिजिनल सेल्फ में तो आ ही जाओगे।
2: right.
1: क्योंकि आपका ओरिजिनल सेल्फ है प्यार और पीस एंड ऑल दैट।
2: राइट।
1: तो मैं कल ये देख रहा था कंप्यूटर, उस पर सिमिलर लाइन्स मिली मुझे। सिमिलर मतलब अपनी क्वालिटी को इसने ब्यूटिफुल कहा है। टू बी ब्यूटिफुल means to be yourself. You don't need to be accepted by others. You need to accept yourself.
2: So beautiful.
1: Your ke baad main thoda sa gap deke dash self kar do. To mera jo self hai.
2: Yes.
1: Myself.
2: Right.
1: You need to accept yourself.
2: And when you accept yourself, you will be beautiful.
1: Yes.
2: Hai na?
1: एक और पढ़ूंगा फिर हम लोग बात करते हैं। प्लीज। माई हैप्पीनेस ग्रोज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू माई एक्सेप्टेंस एंड इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू माई एक्सपेक्टेशन।
2: कितने दिन से ये कर रहे हैं कि जितना लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते गए, डे बाय डे खुशी घटती गई। जितना लोगों को, कितनी अच्छी लाइन है, इनवर्स प्रोपोर्शन टू माय एक्सपेक्टेशंस एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू माय एक्सेप्टेंस। अब क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस पे ज्यादा और एक्सेप्टेंस के मोड में कम जीते हैं, फिर हैप्पीनेस की क्वांटिटी कितनी होगी, नेचुरली हो गया, इक्वेशन से ही समझ में आ गया। इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। जितनी हम अपेक्षाएं रखेंगे हमारी खुशी उतनी ही घटती जाएगी। जितना हम सबको स्वीकार करते जाएंगे, एक्सेप्ट करते जाएंगे, हमारी खुशी उतनी ही बढ़ती जाएगी। और फिर उसी से वो लाइन कनेक्ट हो जाती है, जितना हम एक्सेप्ट करते जाएंगे उतना हम ब्यूटीफुल बनते जाएंगे। वी डोंट नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर पीपल। यू नो, अदर पीपल शुड एक्सेप्ट मी, उसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। और सारा कुछ जो हम कर रहे हैं वो बाह्य लेवल पे है। आज बहुत सारा, एक ह्यूज नंबर ऑफ यूथ ग्रुप है, स्कूल के बच्चे हैं, जो ऐसी ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हैं एक बहुत यंग एज में, सिर्फ ताकि दे विल बी एक्सेप्टेड बाय देयर फ्रेंड्स। वो चीजें वो हैं जो उनकी फैमिली वैल्यूज मैच नहीं करती, जिससे वो चीजें वो हैं जो उनके प्रिंसिपल्स मैच नहीं करते, वो खुद करना नहीं चाहते, उनको पता है वो गलत है उनके लिए, लेकिन आई वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड बाय माई फ्रेंड्स। चाहे वो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, रिलेशनशिप्स है, सारी चीजों में हम स्कूल में, कॉलेज में, हमारे आसपास के लोग वो कर रहे हैं, इसीलिए हमें भी करना है। और फिर सिर्फ बच्चे ही क्यों, यूथ ही क्यों, आज हम सब भी किसी न किसी चीज में, किसी न किसी बात में भी फील कि मुझे ये करना है, सो दैट पीपल विल एक्सेप्ट मी। इफ पीपल एक्सेप्ट

0: दूर हो
1: दूर हो
0: जाते
1: जाते
0: हैं। कई बार हम बाह्य रीति से सहन करते हैं, अंदर नहीं टॉलरेट कर रहे, हम बाहर टॉलरेट करते हैं कि किसी ने कुछ कहा, हम चुप रहे, हमने जवाब नहीं दिया, हमने ऊपर से कुछ नहीं कहा, इनफैक्ट हमने ऊपर से प्यार से बात की, उन्होंने गलत व्यवहार किया लेकिन हमने तो ऊपर से अच्छी तरह से व्यवहार किया। लेकिन कई बार जो थोड़ा सा सूक्ष्म होता है चेकिंग, कि कई बार हम ये टॉलरेंस अंदर नहीं, अंडरस्टैंडिंग से नहीं, सिर्फ बाह्य रीति से कर लेते हैं कि बोला नहीं, जवाब नहीं दिया, जो उन्होंने कहा मैंने मान लिया, जो उन्होंने चाहा वो मैंने कर दिया, सब कुछ मैंने टॉलरेट किया उनके साथ। लेकिन वो कई बार ये होता है कि अंदर ही अंदर वो बातें फिर दबती जाती हैं और मन बार बार ये भी कहता है कितना सहन किया, कितना सहन किया, कितना सहन किया, मुझे ही सहन करना है, सहन करना है, सहन करना है। लेकिन वो फिर एक प्रेशर कुकर की तरह अंदर दब जाता है। ये हरेक को चेक करना है, कोई प्रेशर कुकर मेरे अंदर तो नहीं क्रिएट हो रहा है, कहीं भी, घर पे, काम पे, किसी फ्रेंड्स के साथ, मेरे अंदर कोई प्रेशर कुकर नहीं क्रिएट होना चाहिए। क्योंकि अगर क्रिएट हो रहा है तो हमारी डेस्टिनी निश्चित है कि वो एक दिन तो फटेगा, एंड वी ऑल नो कि जब प्रेशर कुकर फटता है तो द सीन इज अ वेरी अगली सीन,
1: वेरी अगली सीन।
0: वो अगली सीन मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो जब आता है तो कई बार रिश्ते परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि जब छोटी छोटी बातें आ रही हैं, देन एंड देयर वी हैव टू वर्क ऑन इट, नॉट अक्यूमुलेट। ये सहन शक्ति नहीं है, क्योंकि कई बार हमें सिखाया जाता है कर लो ना, सहन कर लो, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये सहन और एडजस्ट हमें सिखाया गया, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं सिखाया गया। उसका मीनिंग हमें सिर्फ ये दिया गया, चुप रहो,
1: बर्दाश्त करो,
0: बर्दाश्त करो,
1: चाहे कुछ भी हो जाओ,
0: कुछ मत बोलो ऊपर से,
1: जुल्म सहो,
0: जवाब मत दो ऊपर से। ये सहन नहीं था, ये एडजस्ट नहीं था। तो ये हमें अटेंशन रखना पड़ेगा कि टॉलरेंस डजंट मीन के अंदर सहन करके चुप कर गए, क्योंकि यही सिखाया गया, यही हम करते आए हैं और इसको हमने अच्छा समझा, सही समझा कि मैं चुप रहा ना, नो वी टेल आर सेल्फ सी गुड ना, मैं चुप रहा, चुप रहे, लेकिन अंदर से दबा दिया तो वो बात को अंडरस्टैंडिंग से फिनिश नहीं किया। तो एक, वो बात रिपीटेडली याद आती रहेगी, हर बार जब कोई और बात आएगी तो बैक रेफरेंस जरूर होगा, मन में बैक रेफरेंस होगा कि पिछली बार भी ऐसे किया था, तो एवरी टाइम वी विल गो थ्रू ऑल दैट पेन ऑल ओवर अगेन। क्योंकि हर बार हम प्रेजेंट सिचुएशन को, सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं एड्रेस करेंगे, हम हर बार पास्ट की सारी बातों को निकालेंगे, क्योंकि हमने उसको समझ से फिनिश नहीं किया था, अंदर से हमने सिर्फ चुप करके अंदर उस बात को
1: सप्रेस किया,
0: दबा दिया था। तो हर बार जब कोई नई बात होगी, कोई इंसिडेंट फिर होगा, वी विल ब्रिंग आउट एवरीथिंग फ्रॉम द क्लोजेट,
1: क्योंकि जितना सप्रेस किया हुआ है सारा मसाला पूरा फुल हो जाता है, तो बस्ट हो जाता है।
0: लेकिन बर्स्ट भी सपोज 2 साल बाद होगा, सपोज 4 साल, बर्स्ट भी बहुत जल्दी नहीं होता, हमारी ह्यूमन कैपेसिटी टू एडजस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत कैपेसिटी है हमारे अंदर एडजस्ट करने की। लेकिन सिर्फ एडजस्ट की डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन ये समझी थी कि चुप रहना, तो वो हम चुप रहे 2 साल 4 साल, हम सहन करते गए, सहन करते गए, उन्होंने जो किया हमने चुप ले लिया। लेकिन हर बार जब कोई बात आई, हमने पुरानी सारी बातें बाहर निकाली, तो सोचो मन पर कितने घाव बार बार रिपीट होते होंगे।
1: तो निकालते समय बोलते भी है, उस दिन में मैं चुप रहा, उस दिन चुप रहा,
0: yes.
1: तुम्हारे डैडी के सामने चुप रहा, तुम्हारे मम्मी के सामने चुप रहा,
0: yes.
1: वो तुम्हारे भाई ने सब चुप रहा, फलाने से शादी के टाइम पे तुमने ये सब किया, पूरी लिस्ट
0: yes.
1: आती है बाहर, और अब मैं चुप नहीं रहने वाला।
0: वेरी ट्रू, मतलब दैट इज द डे जब वो प्रेशर कुकर बर्स्ट होता है। तो वो सारे साल भी जो हम चुप रहे, वो एक्चुअली हम पावरफुल नहीं, लेकिन डिप्लीट हो रहे थे इतने साल। सप्रेस करना पावर नहीं है, चुप रहना पावर नहीं है, सप्रेस

0: एक्शन डिप्लीशन ही करेगी। अंदर रखा ना, मन में तो रो रहे हैं ऊपर से चुप है, मन में चिल्ला रहे हैं ऊपर से चुप है, मन में गुस्सा कर रहे हैं ऊपर से चुप है, तो वो डिप्लीशन कितनी होगी। और एक इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज रहती है कि हम सुना दें इनको ये सारा कुछ, हम बोल दें इनको ये सारा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज रहती है मन में कि इफ आई गेट अ चांस आई वॉन्ट टू टेल देम एवरीथिंग, मुझे बताना है उन्होंने मेरे साथ ये किया ये किया ये किया ये किया। तो वो एक अर्ज तो है, तो जैसे ही कोई ट्रिगर आएगा एक दिन, और माइंड ने वो अर्ज तो इतने दिनों से क्रिएट की हुई, इतने सालों से क्रिएट की हुई है, तो प्रेशर कुकर तो बर्स्ट होगा ही होगा। और जब वो बर्स्ट होता है तो बहुत सालों का, हम देखो जब घर में प्रेशर कुकर बर्स्ट होता है तो कितने नुकसान होते हैं, किचन की सीलिंग पे भी जाता है,
1: आदमी का मुंह फट जाता है,
0: उनका मुंह फट जाता है, मतलब डैमेज उतना ही होगा हमारे प्रेशर कुकर का भी, कई बार सब कुछ फट जाएगा उससे, कई बार बीमारियां इससे हो जाती है,
1: डेथ हो जाती है प्रेशर कुकर की बर्स्ट।
0: ये अंदर के प्रेशर कुकर से भी हो जाएगी,
1: अंदर के कुकर से तो 100% होती है ना,
0: ब्लॉकेजेस, इसी को कहते हैं इमोशनल ब्लॉकेजेस, जहाँ इमोशनल ब्लॉक करके रखी चीजें, ये भी ब्लॉक्ड ये भी ब्लॉक्ड ये भी ब्लॉक्ड ये भी पकड़ा, तो जहाँ इमोशनल इतनी सारी ब्लॉकेजेस होंगी तो फिर शरीर की एनर्जी में ब्लॉकेजेस तो क्रिएट होनी शुरू हो ही जाएंगे। फिर हम शरीर के ब्लॉकेजेस का इलाज कराएंगे कि यहाँ की ब्लॉकेज को नहीं ठीक करेंगे, तो इसको सहन शक्ति नहीं कहेंगे हम।
1: यूजुअली डॉक्टर्स कहते हैं बस स्किन में से फट के निकलता है
0: डिजीज,
1: हाँ, ऑल दीज केमिकल्स विच आर क्रिएटेड बाय,
0: बिकॉज द सोल डजंट लव इटसेल्फ एनीमोर, द सोल इज इन्फ्लिक्टिंग पेन अपॉन इटसेल्फ इमोशनली, द सोल इज इन्फ्लिक्टिंग पेन अपॉन इटसेल्फ इमोशनली, एंड द सेम इट विल स्टार्ट डूइंग टू द बॉडी, इट्स वेरी, इसी दूसरा हमें दर्द नहीं देता है, हम अपने आप को कितना दर्द देते हैं जब हम ऐसी बातों को सप्रेस करके रखते हैं। इसीलिए साइकाइट्री में या डॉक्टर्स कहते हैं इससे अच्छा बोल दो, अंदर नहीं रखो, सुना दो जाके, यू नो, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट कई बार कहते हैं गुस्सा कर दो, गुस्सा करना चुप रहने से
1: वेंट इट आउट बोलते हैं।
0: लेकिन हमने वो देखा कि वो मेथड यूज करके भी हमारी पावर कम होती गई,
1: हमारे रिश्ते बढ़ते भी,
0: हमारे रिश्ते बिगड़ते गए, तो इसका मतलब ना वेंट इट आउट, उसमें भी नुकसान है, ना सप्रेशन, उसमें भी नुकसान है, लेकिन हर बात जब आएगी
1: लेट गो,
0: अंडरस्टैंडिंग से, अंडरस्टैंडिंग से उसको रिजोल्व करना है, मन में पकड़ के नहीं रखना है, ये बार बार अपने को और अपने आसपास सभी को समझाना है, ये सहन शक्ति नहीं है, ये सप्रेशन की शक्ति है, मिक्स नहीं करना है दोनों बातों को, चुप रहना है, लेकिन मुख ने नहीं चुप रहना है, मन ने चुप रहना है, और मन बोलने से नहीं चुप हो जाएगा, मन को सारी बात समझा के उस दर्द को खत्म करके फिर चुप करना पड़ेगा, ये पावर टू टॉलरेट है। और जो क्वालिटीज हमें यूज जब हम करते हैं, जैसे हमने पिछली बार भी देखा, लव एवरीवन, अपने जीवन का एजेंडा बनाना है कि मुझे सबसे प्यार करना है, मुझे नहीं देखना कि सामने वाला कैसा है, क्या कर रहा है, कैसा व्यवहार मेरे से करता है, कैसा व्यवहार औरों से करता है, अपना मंत्र मुझे सबसे प्यार करना है, आई लव एवरी वन, बिकॉज उसमें ही मेरी हीलिंग है, मेरी हीलिंग है, मेरी प्यार की एनर्जी ब्लॉक हो रही है ना, नहीं तो हर बार फ्लो नहीं हो रही एनर्जी मेरे थ्रू, मुझे सबसे प्यार करना है, लोग मुझे समझे, यू नो वी हैव दिस कॉमन कंप्लेंट, पीपल डोंट अंडरस्टैंड मी, यू डोंट अंडरस्टैंड मी ओनली एट ऑल,
1: हाथ देखने वाले भी बोलते नोबडी विल अंडरस्टैंड,
0: नोबडी विल अंडरस्टैंड यू,
1: आप बहुत, यू आर अ वेरी मिसअंडरस्टूड पर्सन,
0: रियली,
1: और आपकी किस्मत में जो लिखा है ना, आपको मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया, कोई आपका फैमिली मेंबर आपसे जेलस है, ऑल दीज थिंग्स दीज पीपल से ऑल्सो,
0: पावर टू टॉलरेट हमें सिखाते हैं कि नोबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड यू, स्टार्ट योर लाइफ विद द पर्पस, आई विल अंडरस्टैंड अदर पीपल, जब तक हम वेट करते रहेंगे कि लोग मुझे समझे, और मुझे समझे का डेफिनेशन भी हमारा ये है कि लोगों का नजरिया मेरे नजरिए के साथ मैच हो जाए, वो तो होने वाला है ही नहीं, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, इसकी बजाय हम अपनी लाइन को क्या चेंज करेंगे, लेट मी अंडरस्टैंड देम, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेट मी अंडरस्टैंड पीपल, लेट्स नॉट गो इन द वर्ल्ड सेइंग प्लीज अंडरस्टैंड मी विद द बेगिंग बोल लाइक दिस, लेट मी अंडरस्टैंड पीपल। जितना हम करेंगे, जो मेहनत हम करेंगे उसका फल हमें ही मिलेगा ना। सारा दिन मांगते रहेंगे ऐसे तो अपने जीवन की शक्तियों को कैसे बढ़ाएंगे? मांगने से हम कभी भी एम्पावर्ड नहीं होंगे। हम मेहनत करके कमाएंगे ना। दुनिया में भी कहते हैं भीख क्यों मांग रहे, मेहनत करके कमाओ। तो हम भी क्यों नहीं मेहनत करके कमाते?
1: ये लाइन बहुत अच्छी है।
0: हाँ, हम भीख मांग रहे हैं सारे,
1: इसमें भी मेहनत करो,
0: इसी में भी मेहनत करके कमाते हैं ना। अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हम चाहते हैं अदर पीपल शुड अंडरस्टैंड मी, भाई थोड़ी सी मेहनत करते, लेट मी अंडरस्टैंड देम, क्या दर्द है उनको, क्या तकलीफ है, व्हाट डज दैट सोल नीड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड। वो आत्मा क्या चाहती है, वो आत्मा के कौन सा दर्द है जिसकी वजह से वो इस तरह से व्यवहार कर रही है, वो आत्मा की हीलिंग मैं कैसे कर सकती हूँ, लेट मी अंडरस्टैंड पीपल। तो प्यार की शक्ति बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग की शक्ति बढ़ेगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वालिटी, पेशेंस, धैर्यता। आजकल हम थोड़े से फास्ट स्पीड पे चलते हैं, हर चीज हमें चाहिए जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी हो जाए। वो जल्दी जल्दी होने की वजह से भी हम टाइम नहीं देते अपने मन को रुकने का, समझने का, दूसरे को, दूसरे के नजरिए को देखने का समय नहीं है। विच इज गोइंग फास्ट फास्ट, रिएक्टिंग रिएक्टिंग रिएक्ट करते जाना, मेमोरी को यहाँ स्टोर करते जाना और ब्लॉकेज को क्रिएट करते जाना। तो धैर्यता, अपने जीवन को फिर से थोड़ा सा पेशेंस, एवरीथिंग इज हैपनिंग परफेक्ट, हर आत्मा अपना रोल परफेक्ट प्ले कर रही है, ये बार बार बातें जब अपने आप को याद दिलाते जाएंगे तो अपने आप सहन शक्ति
1: बढ़ती
0: जाएगी। नेचुरल है, परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, अगर हम अधैर्य हो जाएंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे, तो हम दूसरे की बात को, व्यवहार को समझेंगे कैसे? हमें थोड़ा सा तो स्लो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, सीन आफ्टर सीन आता जा रहा है, यहाँ से गुजरे एक सीन, वहां से निकले एक सीन। बहुत इम्पोर्टेंट है हर सीन मुझ आत्मा के ऊपर क्या इम्प्रेशन छोड़ के जा रहा है, एक मार्क तो छोड़ के जा रहा है ना।
1: हर सीन का इम्पैक्ट और वो मार्क हमेशा के लिए रहता है और अगले जन्म तक भी रहता है, तो उसके बाद जन्मों तक रहता है। जैसे आपने कहा ग्रूव
0: ग्रूव बन रहा है ना,
1: और उसका फिर दूसरे जन्म में फिर हम बोलते हैं कि मेरी आदत मुझे कहाँ से आ गई है, फिर बोलते नहीं इसके डैडी से इसको गुस्सा मिल गया, नो उसके फलाने से ऐसा आ गया, नहीं इनके दोस्तों ने ऐसा कर दिया।
0: देखो एक सिंपल चीज देखते हैं, अभी हम ये शूटिंग कर रहे हैं, हमारे पेशेंटली करते हैं इसको, बार बार कैमरा को सेट करते हैं, लाइट कैसी है, ठीक है ना, आवाज तो नहीं कोई बीच में आ रही, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा हम रुकते हैं, हम उसको 10 मिनट लगा के उस लाइट को ठीक करते हैं,
1: आदमी को चुप कराते, गाड़ी
0: ये सब हम करते हैं ना,
1: वेट करते कार का बंद होने का, प्लेन चल जाता
0: ये
1: है, सब,
0: ये पेशेंस है, ये पेशेंस है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर एक बार ये रिकॉर्डिंग हो गई, सीडी बन गई, फिर हम इस एपिसोड को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे।
1: इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग,
0: ये हम कभी नहीं ठीक कर पाएंगे।
1: एयरक्राफ्ट जा रही है ऊपर से जोर से आवाज,
0: रिकॉर्ड हो गई,
1: और रिकॉर्ड हो गई तो फिर इसको ठीक कैसे कर पाएंगे?
0: हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे,
1: तो वहाँ पॉज करते हैं।
0: ये एपिसोड हर चैनल पे चलता है, फिर ये एपिसोड इंटरनेट, हम सोचते हैं ना ये सब कुछ, ये एपिसोड फिर लोग इंटरनेट पे देखते हैं, फिर ये एपिसोड की डीवीडी भी बन जाती है, हर चीज में वो डिस्टर्बेंस आ जाएगी, इससे अच्छा तो क्या करें,
1: पॉज
0: पॉज करें
1: एंड लेट दैट गो।
0: यस, दिस इज पेशेंस, दिस इज पेशेंस। अब ये एपिसोड में अगर डिस्टर्बेंस आ गई तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ के एपिसोड में ही रोज डिस्टर्बेंस हो रही है और उसी की रिकॉर्डिंग के साथ चलते जा रहे हैं, और जैसे आपने कहा ये वाली रिकॉर्डिंग तो फिर लंबी चलने वाली है, अनेक जन्म जन्म जन्म हमें इसकी भोगना भोगनी पड़ेगी। We will have to face the consequences of what we are doing today.
1: We are creating our own destiny.
0: ना, तो जब एक फोटो खींचने में इतनी मेहनत करते हैं, अरे वो फोटो खींचने में कितनी देर लगाते, सबको धीरे फिर स्माइल नहीं किया, फिर से क्योंकि कोई फोटो खींच गए,
1: बाल कंघी करके आओ, कॉलर मैला है, दूसरा पहनो, क्या क्या करते रहे,
0: क्योंकि एक फोटो खींच रही है,
1: हमेशा के लिए रहेगी वो,
0: हमेशा के लिए रहेगी। ये सीढ़ी तो जन्म जन्मांतर चलने वाली है, फोटो ठीक नहीं आए फेंक देंगे, सीढ़ी पे ठीक नहीं रिकॉर्ड हुआ, आई विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माय रिकॉर्डिंग। अगर मैं इम्पेशेंट होके फास्ट स्पीड पे, इसको भी गुस्सा, इसको ऐसे, इसके ऊपर चिल्ला दिया, इसके ऊपर गलत, इसको धोखा, उसको चीटिंग, आई विल हैव टू फेस दिस, मैं नहीं बच सकता इससे।
1: मेरी डॉक्टर के पास गया था, मेरी हार्ट सर्जन स्पेशलिस्ट के पास, तो उसने स्टेथोस्कोप में मुझे बोला ब्रीद इन ब्रीद, फिर बोला जोर से ब्रेथ लो, जोर से लो। मैंने बोला क्या हो गया, तो बोले डू यू स्मोक, आई सेड नो आई डोंट स्मोक एट ऑल, मैं तो कोई सिगरेट पिए तो बास है तो भाग जाता हूँ। तो बोले डिड यू एवर स्मोक, बोले हाँ, मतलब 20 साल तक तो पिया मैं। तो बोले कि इतनी जल्दी आसानी से उसके वो नहीं जाते हैं, अभी तक दिखाई दे रहे हो आपके, एंड 20-25 साल के बाद योर लंग्स माइट कम टू
0: देयर ओरिजिनलिटी।
1: हाँ, कि छोड़ के अभी हुआ ना, अभी थोड़ा था जब से आपसे मिला, अभी तो छुट्टी,
0: जस्ट सी दैट पावरफुल थिंग ना, मतलब हमारा हर कर्म का रेपरकशन हमारे साथ कितना लंबा चलने वाला है, इसी तरह हमारा हर रिएक्शन, हमारी हर थॉट, और क्योंकि हम अभी फास्ट स्पीड पे चल रहे हैं ना बहुत, वी जस्ट डोंट सीम टू हैव द टाइम, इतनी फास्ट स्पीड पे चलने से फास्ट रिएक्शंस करते करते इरिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो ना कुछ सालों के बाद हमें भी स्टेथोस्कोप लगाया जाए तो क्या निकल कर आएगा पता नहीं।
1: सेम चीज,
0: यस,
1: निकोटीन के धब्बे भी जैसे के वैसे।
0: वो तो फिर अगर स्मोकिंग की तो ना, लेकिन व्हाट अबाउट सिर्फ थिंकिंग से ही जो कुछ क्रिएट,
1: उनकी भी इमेजेस आते,
0: उन्हीं के तो इमेजेस आएंगे ना इतने ज्यादा, उसका इफेक्ट मन पर और पूरे शरीर पर कितना पड़ेगा, धैर्यता की कितनी जरूरत है इस टाइम, स्लो डाउन लिटिल बिट, डोंट हैव टू टेक आवर लाइफ ऑन द फास्ट फॉरवर्ड मोड, क्यों फास्ट फॉरवर्ड, अचीव करना है बस, जल्दी अपने गोल तक पहुंचना है, गोल तक पहुंचना जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य है उस गोल तक की जर्नी को अपनी वैल्यूज के साथ यूज करते हुए चलना। सिर्फ एक सीन को, एक दिन को देख लेते हैं आज, वन डे टुडे, किसी भी सीन को बहुत जल्दी ना क्रॉस कर लें विद अ रॉन्ग रिएक्शन। ये वो मूवी है जिसमें रीटेक नहीं मिलता है, हर सीन पहली बारी में परफेक्ट करना पड़ेगा, नहीं परफेक्ट किया तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, कर्म का फल तो वापस आएगा ही आएगा, और वो कोई भविष्य जन्म में नहीं आएगा, अभी आ रहा है उसका।
1: लाइफ में जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गोल,
0: जर्नी इज ओनली इम्पोर्टेंट,
1: लाइफ इज अ जर्नी नॉट द गोल,
0: गोल तो आ ही जाएगा, अगर इट्स लाइक हम यहाँ से यहाँ चल के जा रहे हैं, जर्नी इज इम्पोर्टेंट, चलते रहेंगे तो वहां तो पहुंच ही जाएंगे, पहुंच तो जाएंगे ही गोल पे, लेकिन पहुंचने तक की हालत, हर सीन, हर स्टेप, हर कदम जब उठाया उस गोल तक जाने के लिए, उस जर्नी पर हम कैसे हैं, अगर गिरते लटकते दो बार धक्का मारते फिर उस गोल तक पहुंचे तो उस गोल को एंजॉय नहीं करेंगे पहुंचने के बाद। इसलिए आज सारा दिन ये चार क्वालिटीज को हम पकड़ेंगे, लव, आई लव एवरी सोल, लोग मुझे समझे इसका अब इंतजार हम नहीं करेंगे, आई विल अंडरस्टैंड पीपल, मेहनत करके हम अपनी कमाई करेंगे कि वो क्यों ऐसे हैं, आई विल अंडरस्टैंड देम, आई विल एक्सेप्ट देम एज दे आर बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि वो आत्मा का वो संस्कार है।
1: But I also don't have any other choice also, na?
0: Of what? Of doing it another way?
1: Huh? If I don't understand, मैं कितनों को ठीक कर लूंगा?
0: मैं किसी को भी नहीं ठीक कर सकता,
1: मैं खुद को तो कर लू, yeah. खुद को ही नहीं कर पा रहा,
0: यही तो वो जर्नी है।
1: लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि ये अपने आप को ठीक करना इज नॉट एन इजी टास्क, तो आपने बोला कि इतने काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, लेट्स पुट डू द सेम थिंग
0: टू आवरसेल्फ,
1: राइट,
0: तो लेकिन दूसरे के लिए नहीं कर सकते हम ये मेहनत,
1: दूसरे के लिए यही कर सकते कि एक आप ऐसी अच्छी एनर्जी भेजो,
0: yes.
1: कि वो आपकी एनर्जी से ट्रांसफॉर्मेशन उसका थोड़ा,
0: उसकी हीलिंग होती है उससे, दूसरे को चेंज करने के लिए अगर हम वाइब्रेशन उसको प्यार की दे दें, इससे बड़ा गिफ्ट हम किसी को नहीं दे सकते।
1: इन जनरली अगर मैं बैठा हूँ और सिर्फ वाइब्रेशन प्यार की दे रहा हूँ, जैसे आपने कहा था ना संत महात्मा भी देते हैं, तब भी अपने ऑरा में अपने नजदीक जो भी आता है उनका भी तो, उनकी भी तो हीलिंग होती है।
0: अब जो जो लोग आपसे इंटेंगल होंगे उनको अपना बेनिफिट मिल जाएगा ना,
1: थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा,
0: बहुत थोड़ा थोड़ा नहीं मिलता, बहुत बेनिफिट होता है। क्यों हम जाते हैं संत महात्माओं के पास, हमारा बहुत बेनिफिट होता है उसमें। और इसी तरह अगर हम बार बार परमात्मा से कनेक्ट होते रहे, हमारा कितना बेनिफिट होता है उसमें। एनर्जी फील्ड पावरफुल आत्मा की लेना ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो क्यों ना हम अपने परिवार में, अपने काम के क्षेत्र पे, हम वो पावरफुल आत्मा बन जाएं। आज का हमारा होमवर्क, प्रेशर कुकर अंदर कोई क्रिएट नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज सिर्फ चुप करके अंदर नहीं रखनी है, सहन करना है, सप्रेस नहीं करना। ये डिफरेंस को, थिन लाइन को बार बार देखना है। और सप्रेस नहीं करना इसका मतलब ये नहीं है बार बार बोल के शोर मचा के बाहर निकालना है। इट मीन्स बात को समझ के,
1: चुप रहना,
0: रिजॉल्व करके बात को अपने अंदर चित पर से फिनिश करना है, घाव नहीं रखना है, हील करके उस बात को खत्म करना है। रिकॉर्डिंग हो रही है, बहुत ध्यान से इस मूवी को रिकॉर्ड करना है। इसका कॉन्सिक्वेंस किसी और को नहीं, हमारे ही सामने आएगा, हमारी खुशी पर और हमारी हेल्थ पर आने वाला है। एंड इस जर्नी ऑफ लाइफ को थोड़ा सा स्लो डाउन करके चलना है।
1: थैंक यू सो मच सिस्टर।
0: ओम शांति।
1: जरूर स्लो डाउन करेंगे।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू।
2: Our happiness grows in direct proportion to our acceptance and in inverse proportion to our expectations. The longer is our list of expectations from people and situations, the more is the chance of our being unhappy and dissatisfied. The way we live our life, what we eat, what we wear, how we speak and behave, sometimes may not be the right way for us, and yet we do it only to get others' acceptance. We seek acceptance from others because we believe that when others accept us, then we are a nice person. We don't need to be accepted by others. We need to accept ourself. To be beautiful means to be yourself. When we tolerate in relationships externally, we are silent even if someone behaves badly. We are loving to even those who have mistreated us. Tolerance is when we understand and resolve internally. If the pain gets accumulated, then we are causing damage to our mind and body, and the accumulation will burst someday and damage the relationship. If we suppress the pain, the wound will remain on the soul. Each time something happens, we will remember the past and relive the pain repeatedly. The situation each time will be bigger for us because it will have the added baggage of the past. While doing our karma, we need to remember this is getting recorded on the soul. The impression of the karma and the sanskar created is a permanent recording. द कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच वी विल एक्सपीरियंस इन दिस लाइफ एंड इन फ्यूचर लाइव्स.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा आज का विषय है महाभारत रूपी मनोयुद्ध में संपूर्ण विजय कैसे प्राप्त करें। आज हम देखते हैं कि इस घोर कलयुग में मानव जीवन महाभारत युद्ध का रूप ले चुका है। प्रतिदिन व्यक्ति अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए मनोयुद्ध रूपी संघर्ष करते हुए विजय का प्रयास करता नजर आता है, किंतु गलत आधार चुनने के कारण उसे विजय से अधिक हार का सामना करना पड़ता है। यादगार महाभारत युद्ध में दुर्योधन ने कृष्ण से उनकी सेना प्राप्त की और अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण को अपना सारथी बनाया। परिणाम सभी जानते हैं कि निहत्थे होते हुए भी श्री कृष्ण ने पांडवों को जीत दिलाई और दुर्योधन की हार हुई। दुर्योधन की यही भूल थी कि उसने सेना को महत्व देते हुए भगवान का साथ ठुकरा दिया। आज लगभग हर व्यक्ति उसी दुर्योधन के मनोभाव का अनुसरण कर रहा है। ईश्वरीय नियमों मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए वह सांसारिक संपदाओं के बल पर जीवन रूपी संग्राम में विजयी होना चाहता है, लेकिन परमात्मा को अपना साथी, सारथी व खेवैया बनाकर जो जीवन रूपी रण क्षेत्र में उतरता है उसी की विजय होती है। सांसारिक सुखों का भोग करने की लालसा से हम अनेकानेक पाप करते हुए भौतिक संपदाओं का लंबा चौड़ा साम्राज्य स्थापित करने लग जाते हैं। इतिहास साक्षी है कि रावण, सिकंदर आदि अनेक लोगों ने यह मार्ग अपनाने की भूल की और अंत में पछतावे के सिवाय उनके जीवन में कुछ भी नहीं बचा।

तो आज हम देखते हैं कि भौतिक संपदाओं के आकर्षण में अंधे होने के कारण संपूर्ण सृष्टि के संचालक परमात्मा की स्मृति ही बुद्धि से ओझल हो जाती है। अहंकार में डूबे ऐसे लोग जीवन में चाहे कुछ भी करें, किंतु उनकी जो सर्व प्राप्तियां संदिग्ध ही रहती है। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है महाभारत रूपी मनोयुद्ध में संपूर्ण विजय कैसे प्राप्त करें। तो हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। आज जैसा कि हम देखते हैं कि वैभव युक्त जीवन की लालसा ही हमसे ईश्वरीय सत्ता की अपेक्षा करवाती है। जो जीवन पर्यंत दुख कष्ट रोग संताप विलाप आदि का अनुभव कराने वाली परिस्थितियों को जन्म देती है, सांसारिक शक्तियों की ओर आकर्षण से समस्याएं तो समाप्त नहीं होती, किंतु जीवन से उमंग उत्साह मनोबल और आत्मबल अवश्य समाप्त होने लगता है। यदि हम देखें तो संपूर्ण श्रद्धा भाव से जीवन नैया को पतवार जो है जीवन की नैया की पतवार परमात्मा के हाथों में सौंप दी जाए तो मन से भय व संशय समाप्त हो जाएगा। प्रभु पालना से प्रतिदिन आप देखना, दिन प्रतिदिन हमारा चरित्र दिव्य गुणों से भरपूर होता जाएगा। इस

विश्व नाट्य मंच पर समस्त घटनाएं हमारे ही कर्मों के प्रतिफल के रूप में निर्धारित समय पर घटित होती रहती है, जिनके लिए कोई और व्यक्ति दोषी नहीं है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में परमात्म सत्ता पर अटूट व अटल विश्वास ही हमें उनका सामना करने का संबल प्रदान करता है। विश्व में कर्म की प्रधानता, कर्म करना मानव धर्म है। कर्मों के आधार पर ही जीवन यापन के समस्त साधन जुटाए जाते हैं। हम परमात्मा द्वारा निर्मित जो भी वैश्विक आचार संहिता की परिधि में रहकर जो भी ईश्वर इच्छा के अनुरूप ही प्रत्येक कर्म करें, हमारे मन बुद्धि में यह प्रश्न सदा विचरण करता रहे कि परमात्मा मुझसे क्या करवाना चाहता है। क्या मैं परमात्मा की इच्छा अनुरूप ही कर्म करती हूँ या करता हूँ? परमात्मा इच्छा को प्रधानता देने वाला उसके पावन हृदय से स्थान प्राप्त करने के साथ साथ अपना भौतिक जीवन में दिव्य श्रेष्ठ और महान बना सकता है अपने जीवन को। अपने सर्व कर्म यदि परमात्मा को अर्पित कर दिए जाए तो वह हमें सर्व दुखों से पार कर देगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत।

नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है महाभारत रूपी मनोयुद्ध में संपूर्ण विजय कैसे प्राप्त करें। जैसा कि हम देखते हैं आज की विडंबना यह है कि सब कुछ जानते हुए भी हम दुर्योधन की भांति अहंकार का चैतन्य प्रतिरूप बनकर परमात्मा की आज्ञाएं स्वीकार करने को तैयार नहीं, बल्कि अपने मन रूपी बलहीन कंधों पर दुख, अशांति, चिंताओं, रोगों, असफलताओं के अनेकानेक बोझ उठाए हुए जीवन को घसीटते हुए जी रहे हैं। अपने हृदय देश में जन्म जन्मांतर से विराजमान अहंकार वासनाएं, राग द्वेष का जड़ से उन्मूलन कर परमात्म इच्छा श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करनी होगी हमें, तभी जीवन यात्रा सफल हो सकेगी। समस्त स्थल व सूक्ष्म जगत का संचालन करने वाली परमात्म सत्ता के अनुरूप जीवन को श्रद्धा पूर्वक ढालना ही सफल जीवन का मूल मंत्र है। अब हमें यहां पर देखना यह है कि सजगता पूर्वक अपना जीवन रूपी रथ परमात्मा के हाथों में सौंप कर विजय यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाए।

हमारी हर श्वास और धड़कन उसकी याद, उसके प्यार में सराबोर होनी चाहिए। तभी हम पांच विकारों के विरुद्ध महाभारत रूपी मनोयुद्ध में संपूर्ण विजय प्राप्त कर सफल जीवन की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे। तो आपने देखा कि ईश्वरीय सत्ता हमारे लिए कितनी जरूरी है, और अगर हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो इससे हमारा जीवन जो है वो ईश्वर के साथ रहेगी और सुख शांति और वैभव को प्राप्त करेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और हम आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चले, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: प्यार के जमाने
1: आज कहां लगे यानी
0: आए प्यार के जमाने
1: आज कहां लगे यानी
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी
0: ऐसे तो नहीं मैं तेरे दर से हटूंगा गोरी जी न सकूं तो अब मर के रहूंगा गोरी दिल में यही है कुछ करके हटूंगा।

0: मेरी रानी, अरे मैं लेके आया हूं तेरे लिए मोहब्बत की बिरयानी।
1: ओ ओ कौन असरानी?
0: कदर मोरी ना जानी, अरे सरगम तीन तानी, मैं असरानी नहीं फरहाद हूँ फरहाद, आशिक ना मुराद, अपने अब्बा का नाम तो नहीं याद, हाँ मियां मजनू है मेरे उस्ताद, अरे सुन ले मेरी फरियाद, मुझे दे मुझे दे मुझे दे नींबू का अचार और दे तीखा तीखा प्यार।
1: अरे ओ मजनू के चेले, कहीं जाकर बेच केले, तू अपनी लैला को पहाड़ों में ढूंढ, घने झाड़ों में ढूंढ, वीरानों में ढूंढ, रेगिस्तानों में ढूंढ।
0: बट यू आर माई लैला एंड आई एम योर छैला।
1: अरे ओ छैला, ना मैंने तुझे कभी देखा और ना है मेरे हाथ में तेरी रेखा।
0: अच्छा।

0: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
1: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम। ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

0: बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से।
1: जा जा
2: अरे जा जा।

किसी से जीत कर भी हारने वाले कयामत की नजर रखते हैं लेकिन ताड़ने वाले जा अरे जा जा जा रे।

चांद के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे। आ

वाइस मिजरेबल थी उनकी लाइफ ड्रंकड हस्बैंड फाइटर वाइफ बीवी बिगड़े शौहर अकड़े रोज के झगड़े रोज के लफड़े लफड़े झगड़े अरे झगड़े लफड़े लफड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े आ

भोली कुंडी खोली हंस के बोली जाने तमन्ना अंदर आओ पहले तो कुछ खाओ आओ फिर बिस्तर पे होंगी बातें बड़े प्यार से कटेंगी रातें शौहर चौंका भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला तोड़ के भागा शौहर बिस्तर छोड़ के भागा कुंडी ताला तोड़ के भागा भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा बोला देवी माफ कीजिए मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी उस दिन बीवी होश में आई बंद हो गई सारी लड़ाई नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई आई रे आई रे आई रे आई रे आई पीना छूट गया।

कर तेरा दिल उलझाऊं, पागल को पागल पहचाने जाने नहीं अनाड़ी, तो मैं हूँ मस्त मदारी, मैं हूँ मस्त मदारी, बिना तीर दिल घायल कर दूँ ऐसा मैं हूँ शिकारी, तो मैं हूँ मस्त मदारी, मैं हूँ मस्त मदारी।